0: रोज रात 8 बजे सिर्फ CMR 101.3 FM टोरंटो।
1: क्या आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यूनअप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लिए एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिपेयर भी, साथ ही ब्रेक सस्पेंशन फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद ए मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील। कॉल 9046-1000 for Midland and Sears and 416-757-1000 for Midland and Ellesmere or visit mymechanicauto.ca.
2: कैशपॉइंट वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर मनी ट्रांजैक्शन नीड्स। हम प्रोवाइड करते हैं ऑनेस्ट और रिलायबल सर्विसेज फॉर ऑल योर फाइनेंशियल नीड्स, जैसे कि वर्ल्ड वाइड मनी ट्रांसफर, चेक कैशिंग, करेंसी एक्सचेंज एंड बायबैक गोल्ड लोन एट एक्सेप्शनली लो रेट्स। दुनिया के किसी भी कोने से सेंड और रिसीव मनी ट्रांसफर्स, रिलायबल, कन्वीनियंट एंड अफोर्डेबल। दैट्स व्हाट कैशपॉइंट मनी ट्रांसफर सर्विसेज गिव यू। कैशपॉइंट ऑफर करता है टॉप डॉलर्स फॉर योर गोल्ड। अनवांटेड और यूज्ड गोल्ड के लिए कैशपॉइंट देगा फेयर मार्केट वैल्यू। लोकेटेड 3852 Finch Avenue, Eastern Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein 416-284-7000. 416-284-7000.
3: Another Don Clean with the Don Ducks.
4: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
5: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
4: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
5: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
4: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
5: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
4: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
3: Dawn Platinum, the better grease getter.
1: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन? तो जाए एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री। मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट ले। कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स अ केयर it deserves.

गोल्ड खरीदना है तो ये है परफेक्ट टाइम, क्योंकि एशिया गोल्ड पर शुरू हो गया है जून ज्वेलरी सेविंग्स प्रोग्राम। जून 5 से जून 21 तक वहाँ सभी हाई क्वालिटी एंड यूज ब्रांड न्यू ज्वेलरी कलेक्शंस पर स्पेशल डिस्काउंट है। सेलिब्रेट लेजर कट्स 24th एनिवर्सरी विद स्पेशल प्राइजेस ऑन ऑल गोल्ड ज्वेलरी। विजिट एशिया गोल्ड एट 5010 स्टील्स एवेन्यू वेस्ट, इटोबिको नियर किपलिंग एंड स्टील्स, और कॉल 4167463795 4167463795। एशिया गोल्ड, हर चमक में भरोसा, हर खरीद में बचत। विजिट एशिया गोल्डिंग.com।

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
2: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, द लार्जेस्ट इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट चेन इन कनाडा। फाइंड आउट मोर एट rajdhanisweets.ca।
3: Looking for your next ride? Morningside Nissan par ye hai perfect time. Drive away in a brand new Nissan Rogue with an incredible 0% finance for 60 months on all Rogue models. Ji haan, aapne theek suna. 0% financing for 60 months, making it easier than ever to own your dream SUV. Aur fikr na karein, hum sab credit types ke saath kaam karte hain, jisse sabko approve hone ka mauka mil sake. Visit Morningside Nissan today and mile AHA se or call 416-804-2365. Drive home your new Nissan Today at Morningside Nissan.
4: क्या आप भी वही डेली रूटीन में फंसे हैं? चलो एक ब्रेक ले लेते हैं। टोरंटो से जस्ट 2 hours नॉर्थ ऑन हाईवे 400, एक परफेक्ट गेटअवे ग्रैंड टेपाटू रिसॉर्ट नियर फेरी साउंड मुस्कोका। हर सीजन के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन, प्राइवेट बीच, इंडोर स्विमिंग पूल और स्टे इन कोजी सुंदर कॉटेजेस एंड होटल रूम्स। खाना हमारे स्पेशल रेस्टोरेंट में बहुत स्पेशल क्विजीन्स हैं बाय अ ब्रिलियंट इंडियन शेफ। So call today at 705-378-2210, 705-378-2210.
5: You're tuned in to
6: CMR at 8. Dil se. एक घंटा बेहतरीन म्यूजिक, दिलचस्प बातें और आपकी अपनी कम्युनिटी के साथ।
5: हर शाम
6: Monday to Friday, 8 p.m. to 9 p.m. Sirf CMR 101.3 FM Toronto par.

0: रोज रात 8 बजे सिर्फ CMR 101.3 FM टोरंटो।
1: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन? तो जाएं एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहां बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री। मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट लें। कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स अ केयर it deserves.
2: कैशपॉइंट वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर मनी ट्रांजैक्शन नीड्स। हम प्रोवाइड करते हैं ऑनेस्ट और रिलायबल सर्विसेज फॉर ऑल योर फाइनेंशियल नीड्स, जैसे कि वर्ल्ड वाइड मनी ट्रांसफर, चेक कैशिंग, करेंसी एक्सचेंज एंड बायबैक गोल्ड लोन एट एक्सेप्शनली लो रेट्स। दुनिया के किसी भी कोने से सेंड और रिसीव मनी ट्रांसफर्स, रिलायबल, कन्वीनियंट एंड अफोर्डेबल। दैट्स व्हाट कैशपॉइंट मनी ट्रांसफर सर्विसेज गिव यू। कैशपॉइंट ऑफर करता है टॉप डॉलर्स फॉर योर गोल्ड। अनवांटेड और यूज्ड गोल्ड के लिए कैशपॉइंट देगा फेयर मार्केट वैल्यू। लोकेटेड at 3852 Finch Avenue, Easton, Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein 416-284-7000. 416-284-7000.
3: Another Don Clean with the Don Ducks.
4: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
5: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
4: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
5: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
4: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
5: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
4: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
3: Dawn Platinum, the better grease getter.
1: क्या आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यून-अप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लें एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिबेट भी, साथ में ब्रेक, सस्पेंशन, फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद अ मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील। कॉल 9 9461000 for Midland and Sears and 416-757-1000 for Midland and Ellesmere, or visit mymechanicauto.ca.

खरीदना है तो यह परफेक्ट टाइम, क्योंकि एशिया गोल्ड पर शुरू हो गया है जून ज्वेलरी सेविंग्स प्रोग्राम। जून 5 से जून 21 तक वहाँ सभी हाई क्वालिटी एंड यूज ब्रांड न्यू ज्वेलरी कलेक्शंस पर स्पेशल डिस्काउंट्स हैं। सेलिब्रेट लेजर कट 24th एनिवर्सरी विद स्पेशल प्राइजेस ऑन ऑल गोल्ड ज्वेलरी। विजिट एशिया गोल्ड एट 5010 स्टील्स एवेन्यू वेस्ट, इटबिको नियर किपलिंग एंड स्टील्स, और कॉल 4167463795 4167463795। एशिया गोल्ड, हर चमक में भरोसा, हर खरीद में बचत। विजिट asiagolding.com। Looking for your next ride? Morningside Nissan पर ये है perfect time. Drive away in a brand new Nissan Rogue with an incredible 0% finance for 60 months on all Rogue models. जी हाँ, आपने ठीक सुना, 0% financing for 60 months, making it easier than ever to own your dream SUV. अब फिक्र ना करें, हम सब credit types के साथ काम करते हैं जिससे सबको approve होने का मौका मिल सके. Visit Morningside Nissan today and मिले AAJ से, और call 416-804-2365. Drive home your new Nissan today at Morningside Nissan.

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
2: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, द लार्जेस्ट इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट चेन इन कनाडा। फाइंड आउट मोर एट rajdhanisweets.ca।
3: क्या आप भी वही डेली रूटीन में फंसे हैं? चलो एक ब्रेक ले लेते हैं। टोरंटो से जस्ट 2 hours नॉर्थ ऑन हाईवे 400, एक परफेक्ट गेटअवे ग्रैंड टेपाटू रिसॉर्ट नियर फेरी साउंड मुस्कोका। हर सीजन के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन, प्राइवेट बीच, इंडोर स्विमिंग पूल और स्टे इन कोजी सुंदर कॉटेजेस एंड होटल रूम्स। खाना हमारे स्पेशल रेस्टोरेंट में बहुत स्पेशल क्विजीन्स हैं बाय अ ब्रिलियंट इंडियन शेफ। So call today at 705-378-2210, 705-378-2210.
4: You're tuned in to
5: CMR at 8. Dil se. एक घंटा बेहतरीन म्यूजिक, दिलचस्प बातें और आपकी अपनी कम्युनिटी के साथ।
4: हर शाम
5: Monday to Friday, 8 p.m. to 9 p.m. Sirf CMR 101.3 FM Toronto par.

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: Another Don Clean with the Don Ducks.
3: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
4: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
3: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
4: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
3: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
4: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
3: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
2: Dawn Platinum, the better grease getter.

0: रानी राजधानी। राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: क्या आप भी वही डेली रूटीन में फंसे हैं? चलो एक ब्रेक ले लेते हैं। टोरंटो से जस्ट 2 hours नॉर्थ ऑन हाईवे 400, एक परफेक्ट गेटअवे, ग्रैंड टेपाटू रिसॉर्ट नियर फेरी साउंड मस्कोका। हर सीजन के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन, प्राइवेट बीच, इंडोर स्विमिंग पूल और स्टे इन कोजी सुंदर कॉटेजेस एंड होटल रूम्स। खाना हमारे स्पेशल रेस्टोरेंट में बहुत स्पेशल क्विजीन्स हैं बाय अ ब्रिलियंट इंडियन शेफ। So call today at 705-378-2210, 705-378-2210।
3: आप सुन रहे CMRX 9 मंडे टू फ्राइडे 9 AM to 11 AM। Stay tuned।

0: You're listening to CMR at 9. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR at 9. Cashpoint, one-stop shop for all your money transaction needs. Hum provide karte hain honest aur reliable services for all your financial needs. Jaise ki worldwide money transfer, check cashing, currency exchange and buyback gold loan at exceptionally low rates. Duniya ke kisi bhi kone se send or receive money transfers, reliable, convenient and affordable. That's what Cashpoint money transfer services give you. Cashpoint offer karta hai top dollars for your gold. Unwanted or used gold ke liye Cashpoint dega fair market value. Located at 3852 Finch Avenue, Eastern Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein. 416-284-7000. 416-284-7000.
1: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन? तो जाएं एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस. वहाँ बदलवाएं अपनी सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस. साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री. मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर भी. पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही. आज ही अपॉइंटमेंट लें. कॉल रमेश एट 416-990-2462. एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स अ केयर it deserves.

0: You're listening to CMR at 9 on CMR 101.3 FM.
1: Toronto!
2: Kaheen mat jaiye.
0: Don't touch that dial.
2: Hum bas CEO chale hain.
0: After a short break and a few messages from our sponsors. Stay tuned for more hit Bollywood classics, timeless melodies, and non-stop entertainment. CMR 101.3 FM, Toronto! We'll be right back!
3: Looking for your next ride? Morningside Nissan, but ye hai perfect time. Drive away in a brand new Nissan Rogue with an incredible 0% finance for 60 months on all Rogue models. Ji haan, aapne theek suna. 0% financing for 60 months, making it easier than ever to own your dream SUV. Aur fikr na kare, hum sab credit types ke saath kaam karte hain, jisse sabko approve hone ka mauka mil sake. Visit Morningside Nissan today and mile AAG se or call 416-804-2365. Drive home your new Nissan today at Morningside Nissan. क्या आप भी वही डेली रूटीन में फंसे हैं? चलो एक ब्रेक ले लेते हैं. टोरंटो से जस्ट 2 hours नॉर्थ ऑन हाईवे 400, एक परफेक्ट गेटअवे ग्रैंड टेम्पल रिसॉर्ट नियर फेरी साउंड मस्कोका. हर सीजन के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन, प्राइवेट बीच, इंडोर स्विमिंग पूल और स्टे इन कोजी सुंदर कॉटेजेस एंड होटल रूम्स. खाना हमारे स्पेशल रेस्टोरेंट में बहुत स्पेशल क्विजीन्स हैं बाय अ ब्रिलियंट इंडियन शेफ. So call today at 705-378-2210, 705-378-2210.
4: क्या आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यून-अप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें. वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स. नए टायर्स लिए एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिपेयर भी, साथ ही ब्रेक, सस्पेंशन फ्लूइड्स एटसेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी. और हाँ, विद अ मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री. सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील. कॉल 905-946-1000 फॉर मिडलैंड एंड सील्स एंड 416-757-1000 फॉर मिडलैंड एंड एल्समियर और विजिट mymechanicauto.ca.

0: धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: You're listening to CMR at 9. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR at 9.

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: Another Don Clean with the Don Ducks.
3: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
4: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
3: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
4: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
3: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
4: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
3: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
2: Dawn Platinum, the better grease getter.

0: आप सुन रहे हैं CMRF 9 मंडे टू फ्राइडे 9 AM टू 11 AM. स्टे ट्यून्ड. कैश पॉइंट वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर मनी ट्रांजैक्शन नीड्स. हम प्रोवाइड करते हैं ऑनेस्ट और रिलायबल सर्विसेज फॉर ऑल योर फाइनेंशियल नीड्स, जैसे कि वर्ल्ड वाइड मनी ट्रांसफर, चेक कैशिंग, करेंसी एक्सचेंज एंड बायबैक गोल्ड लोन एट एक्सेप्शनली लो रेट्स. दुनिया के किसी भी कोने से सेंड और रिसीव मनी ट्रांसफर, रिलायबल, कन्वीनियंट एंड अफोर्डेबल. दैट्स वॉट कैश पॉइंट मनी ट्रांसफर सर्विसेज गिव यू. कैश पॉइंट ऑफर करता है टॉप डॉलर फॉर योर गोल्ड. अनवॉन्टेड और यूज गोल्ड के लिए कैश पॉइंट देगा फेयर मार्केट वैल्यू. लोकेटेड 3852 Finch Avenue, Eastern Scarborough, Unit GO3. आज ही कॉल करें 416-284-7000, 416-284-7000.
1: क्या आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यून-अप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें. वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स. नए टायर्स लें एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिबेट भी, साथ में ब्रेक, सस्पेंशन, फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी. और हाँ, विद अ मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री. सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील. कॉल 9046-1000 for Midland and Sears and 416-757-1000 for Midland and Ellesmere, or visit mymechanicauto.ca.

0: Right, Morningside Nissan par ye hai perfect time. Drive away in a brand new Nissan Rogue with an incredible 0% finance for 60 months on all Rogue models. Ji haan, aapne theek suna. 0% financing for 60 months, making it easier than ever to own your dream SUV. Aur fikr na kare, hum sab credit types ke saath kaam karte hain, jisse sabko approve hone ka mauka mil sake. Visit Morningside Nissan today and mile AHA se or call 416-804-2365. Drive home your new Nissan today at Morningside Nissan. क्या आप भी वही डेली रूटीन में फंसे हैं? चलो एक ब्रेक ले लेते हैं. टोरंटो से जस्ट 2 hours नॉर्थ ऑन हाईवे 400, एक परफेक्ट गेटअवे, ग्रैंड डिपार्चर रिसॉर्ट, ये पेरी साउंड मुस्कोका, हर सीजन के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन, प्राइवेट बीच, इंडोर स्विमिंग पूल और स्टे इन कोजी सुंदर कॉटेजेस एंड होटल रूम्स. खाना हमारे स्पेशल रेस्टोरेंट में बहुत स्पेशल क्विजीन्स हैं बाय अ ब्रिलियंट इंडियन शेफ. So call today at 705-378-2210, 705-378-2210.
1: You're listening to CMR at 9. For advertising, call 647-220-4834, 647-220-4834. Stay tuned to CMR at 9.

0: You're listening to CMR at 9. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR at 9.
1: प्रकृति की खूबसूरती, आराम और रोमांच का बेहतरीन संगम आपका इंतजार कर रहा है ग्रैंड टापा टू रिजॉर्ट में। टोरंटो से सिर्फ 2 घंटे से भी कम दूरी पर पेरी साउंड एंड मस्कोका एरिया के पास हाईवे 400 नॉर्थ पर स्थित ये हर मौसम के लिए एक परफेक्ट गेटअवे है। हमारे प्राइवेट बीच का आनंद लीजिए, इंडोर स्विमिंग पूल में रिलैक्स कीजिए और हमारे स्पेशलिटी रेस्टोरेंट में हमारे इंडियन शेफ द्वारा तैयार किए गए स्वादिष्ट व्यंजनों का मजा उठाइए। आरामदायक होटल रूम्स और खूबसूरत कॉटेजेस भी उपलब्ध है। कॉल टुडे टू बुक योर स्टे एट 705-378-2210. That's 705-378-2210. Grand Tapa 2 Resort, आपकी अगली यादगार छुट्टियों की मंजिल।

0: रानी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: You're listening to CMR at 9. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR at 9.

0: आप सुन रहे हैं CMRF 9 मंडे टू फ्राइडे 9 AM टू 11 AM. स्टे ट्यून्ड.
1: Another Don Clean with the Don Ducks.
2: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
3: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
2: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
3: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
2: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
3: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
2: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
1: Dawn Platinum, the better grease getter.
4: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन? तो जाए एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस. वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस. साथ ही ले 30-point इंस्पेक्शन फ्री. मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही. आज ही अपॉइंटमेंट ले. कॉल रमेश एट 416-990-2462. एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वेयर योर कार गेट्स अ. It deserves.
0: Cashpoint, one-stop shop for all your money transaction needs. हम प्रोवाइड करते हैं honest और reliable services for all your financial needs, जैसे कि worldwide money transfer, check cashing, currency exchange and buyback gold loan at exceptionally low rates. दुनिया के किसी भी कोने से send और receive money transfers, reliable, convenient and affordable. That's what Cashpoint money transfer services give you. Cashpoint offer करता है top dollars for your gold. Unwanted or used gold के लिए Cashpoint देगा fair market value. Located at 3852 Finch Avenue, Eastern Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein. 416-284-7000. 416-284-7000. You're listening to CMR at 9. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR at 9.

0: next right. Morningside Nissan par ye hai perfect time. Drive away in a brand new Nissan Rogue with an incredible 0% finance for 60 months on all Rogue models. Ji haan, aapne theek suna. 0% financing for 60 months, making it easier than ever to own your dream SUV. Aur fikr na karein, hum sab credit types ke saath kaam karte hain, jisse sabko approve hone ka mauka mil sake. Visit Morningside Nissan today and mile AAG se or call 416-804-2365. Drive home your new Nissan today at Morningside Nissan. क्या आप भी वही डेली रूटीन में फंसे हैं? चलो एक ब्रेक ले लेते हैं. टोरंटो से जस्ट 2 आवर्स नॉर्थ ऑन हाईवे 400, एक परफेक्ट गेटअवे ग्रैंड टेपाटू रिसॉर्ट नियर फेरी साउंड मुस्कोका. हर सीजन के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन, प्राइवेट बीच, इंडोर स्विमिंग पूल और स्टे इन कोजी सुंदर कॉटेजेस एंड होटल रूम्स. खाना हमारे स्पेशल रेस्टोरेंट में बहुत स्पेशल क्विजीन्स हैं बाय अ ब्रिलियंट इंडियन शेफ. So call today at 705-378-2210, 705-378-2210.
1: Another Dawn Clean with the Dawn Ducks.
2: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
3: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
2: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
3: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
2: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
3: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
2: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
1: Dawn Platinum, the better grease getter.
4: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं सीजन? तो जाए एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री। मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट लें। कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स the care it deserves.

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: राजधानी राजधानी राजधानी
0: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: कैश पॉइंट वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर मनी ट्रांजैक्शन नीड्स। हम प्रोवाइड करते हैं ऑनेस्ट और रिलायबल सर्विसेज फॉर ऑल योर फाइनेंशियल नीड्स, जैसे कि वर्ल्ड वाइड मनी ट्रांसफर, चेक कैशिंग, करेंसी एक्सचेंज एंड बायबैक गोल्ड लोन एट एक्सेप्शनली लो रेट्स। दुनिया के किसी भी कोने से सेंड और रिसीव मनी ट्रांसफर्स, रिलायबल, कन्वीनियंट एंड अफोर्डेबल। दैट्स व्हाट कैश पॉइंट मनी ट्रांसफर सर्विसेज गिव यू। कैश पॉइंट ऑफर करता है टॉप डॉलर्स फॉर योर गोल्ड। अनवांटेड और यूज्ड गोल्ड के लिए कैश पॉइंट देगा फेयर मार्केट वैल्यू। लोकेटेड 3852 Finch Avenue, Eastern Scarborough, Unit GO3. आज ही कॉल करें 416-284-7000, 416-284-7000.
3: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील कॉल 9059461000 फॉर मिडलैंड एंड सील्स एंड 4167571000 फॉर मिडलैंड एंड एल्समियर और विजिट mymechanicauto.ca।
1: क्या आप भी वही डेली रूटीन में फंसे हैं? चलो एक ब्रेक ले लेते हैं। टोरंटो से जस्ट 2 hours नॉर्थ ऑन हाईवे 400 एक परफेक्ट गेटअवे ग्रैंड डिपार्चर रिसॉर्ट नियर फेरी साउंड मुस्कोका। हर सीजन के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन, प्राइवेट बीच, इंडोर स्विमिंग पूल और स्टे इन कोजी सुंदर कॉटेजेस एंड होटल रूम्स। खाना हमारे स्पेशल रेस्टोरेंट में बहुत स्पेशल क्विजीन्स हैं बाय अ ब्रिलियंट इंडियन शेफ। So call today at 705-378-2210, 705-378-2210.
2: Listen to us around the universe, www.cmr.fm.

0: भी वही डेली रूटीन में फंसे हैं। चलो एक ब्रेक ले लेते हैं। टोरंटो से जस्ट 2 hours नॉर्थ ऑन हाईवे 400 एक परफेक्ट गेटअवे ग्रैंड टेपाटो रिसोर्ट ये फेरी साउंड मुस्कोका हर सीजन के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन प्राइवेट बीच इंडोर स्विमिंग पूल और स्टे इन कोजी सुंदर कॉटेजेस एंड होटल रूम्स खाना हमारे स्पेशल रेस्टोरेंट में बहुत स्पेशल क्विजीन्स हैं बाय अ ब्रिलियंट इंडियन शेफ So call today at 705-378-2210, 705-378-2210.
1: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं सीजन तो जाए एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस साथ ही ले 30-point इंस्पेक्शन फ्री मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही आज ही अपॉइंटमेंट लें कॉल रमेश एट 416-990-2462 एक्टिव ग्रीन एंड रॉस वे योर कार गेट्स द केयर इट डिजर्व्स

आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यून अप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लें एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिपेयर भी, साथ में ब्रेक, सस्पेंशन, फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद अ मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील। कॉल 905-946-1000 फॉर मिडलैंड एंड सियर्स एंड 416-757-1000 फॉर मिडलैंड एंड एल्समियर और विजिट माय मैकेनिक ऑटो.ca।

0: राजधानी राजधानी
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: कैशपॉइंट वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर मनी ट्रांजैक्शन नीड्स। हम प्रोवाइड करते हैं ऑनेस्ट और रिलायबल सर्विसेज फॉर ऑल योर फाइनेंशियल नीड्स, जैसे कि वर्ल्ड वाइड मनी ट्रांसफर, चेक कैशिंग, करेंसी एक्सचेंज एंड बायबैक गोल्ड लोन एट एक्सेप्शनली लो रेट्स। दुनिया के किसी भी कोने से सेंड और रिसीव मनी ट्रांसफर्स, रिलायबल, कन्वीनियंट एंड अफोर्डेबल। दैट्स व्हाट कैशपॉइंट मनी ट्रांसफर सर्विसेज गिव यू। कैशपॉइंट ऑफर करता है टॉप डॉलर्स फॉर योर गोल्ड। अनवांटेड और यूज्ड गोल्ड के लिए कैशपॉइंट देगा फेयर मार्केट वैल्यू। लोकेटेड 3852 Finch Avenue, Easton Scarborough, Unit GO3. आज ही कॉल करें 416-284-7000, 416-284-7000.
3: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: South Asian Unlimited Radio, Monday to Friday, 12 to 2 p.m. South Asian Unlimited Radio, jahan news, views, sports, entertainment ki khabre hongi bilkul unlimited. Entertainment to bahut hai, lekin yahan par milega aapko bilkul unlimited. News aur views to har jagah milenge, lekin yahan par milega bilkul unlimited.
1: Yahan bhi hoga, wahan bhi hoga, ab to sare jahan mein hoga kya? Mera hi jalwa.
0: जी हाँ, साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो का जलवा मंडे टू फ्राइडे 12 से 2 बजे तक. पापा, ये कौन से शो की बात कर रहे हैं पापा?
2: है आदत, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत.
0: जी हाँ, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत. ये उस शो की बात कर रहे हैं जिसका नाम है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, मंडे टू फ्राइडे 12 टू 2 पीएम.
3: और म्यूजिक म्यूजिक स्टार्ट करो भाई.
0: रोशनी कर खुदा को हो मंजूर, आंधियों में चिराग जलते हैं. साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, मंडे टू फ्राइडे 12 टू 2 पीएम. स्टे ट्यून्ड.

0: The advertisements, views, and opinions expressed in the radio show are that of the sponsors, guests, and callers, and are not necessarily those of the South Asian Unlimited show, host, and its producers. The show is for entertainment purposes only and does not advocate any sponsors' messages. It is solely the responsibility of the advertiser or sponsor. नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सनी जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर, मंडे टू फ्राइडे 12 टू 2 पीएम साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, जहां न्यूज, व्यूज, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट की खबरें होती हैं बिल्कुल अनलिमिटेड। और बाहर का तापमान राइट नाउ पहुंच चुका है 34 डिग्री सेल्सियस, फील्स लाइक 38, एंड सनसेट 8:58 PM। मैक्सिमम टेम्परेचर्स विल हिट 37 डिग्रीज टुडे, इवनिंग भी 30 डिग्री टेम्परेचर्स ही रहने वाले हैं, एंड इल फील लाइक 45। रेकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर्स जीटीए में आज देखने को मिलेंगे। अगेन द हीट वेव कंटिन्यू होगा, कल भी 31 डिग्री है, थर्सडे 32, फ्राइडे से राहत है, 26 डिग्री का टेम्परेचर देखने को मिलेगा, एंड फ्राइडे सैटरडे सम रेन इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड। सो या, ब्यूटिफुल वेदर। ओके, मैंने एक गीत लाइनअप किया हुआ था और कार्तिक साहब हमारे टेक्निकल डायरेक्टर ने एक ट्विस्ट देते हुए इस गीत से शुरुआत की है, क्योंकि कार्तिक सर को ऐसा लगा कि भाई इस तरह के ट्यूसडे के दिन इंस्पायरिंग अमेजिंग मोटिवेशनल गीत से दिन की शुरुआत होनी चाहिए, तो इसी गीत से हमने दिन की शुरुआत की है। इट वॉज अ प्लेजेंट सरप्राइज, और मेरा वैसे फेवरेट भी है ये गीत, बहुत ही ब्यूटीफुल भाग मिल्खा भाग का गीत। 416-593-0055 स्टूडियो का नंबर है। 12:15 हेडलाइंस है, स्पॉन्सर्स के मैसेजेस हैं। बॉनी क्रॉम्बी ऑफिशियली रजिस्टर्स टू रन फॉर मेयर, जो कि हम कल बात कर रहे थे, अब उन्होंने रजिस्टर कर लिया है। येलो हीट वार्निंग जारी है, इन इफेक्ट एज GTHA डील्स विद इंटेंस हीट दिस वीक। यूमेरेक्स 45 डिग्रीज सेल्सियस तक पहुंचेगा। सिटी ऑफ टोरंटो ने ड्रिंकिंग वाटर कूल स्पेसेस एक्सटेंडेड आवर्स एट सम पूल्स जो है इंक्रीज कर दिए एक्सेस, सो दैट पीपल कैन स्टे कूल एंड हाइड्रेटेड। एंड द सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस। बहुत ही अमेजिंग डील्स चल रही हैं, एक चक्कर आप जरूर लगाएं ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंस पर। चाहे बिग स्क्रीन टीवीज आपने लेने हैं, अप्लायंस लॉन्ड्री सेक्शन में कुछ परचेज करना है, सुल्तान जी को शो का रेफरेंस देंगे, absolutely the best deals, पक्की बात है। 905-450-2828, choleBhature.ca, चार लोकेशन से सर्व करते हैं, 2 in Brampton, 1 in Vaughan, 1 in Mississauga, टेक आउट डाइन इन ऑप्शन है। दिल्ली वाले ऑथेंटिक छोले भटूरे मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ choleBhature.ca पर। विन लाइफ टाइम ट्रेडिंग, हर सैटरडे आफ्टरनून सेमिनार होता है, फ्री सेमिनार होता है 12:30 से 3:30 बजे। ऑल यू हैव टू डू इज प्लीज रिजर्व योर सीट, डोंट वॉक इन। कई बार सैटरडे को काफी बिजी होते हैं, तो फिर अगर आप बिना कहे पहुंच जाएंगे तो हो सकता आपको सीट भी ना मिले, तो प्लीज डू दैट। 905-206-1008। 15 जुलाई यानी कल विल बी द अनाउंसमेंट फॉर द बैंक ऑफ कैनेडा इंटरेस्ट रेट, एंड ऐसा लग रहा है जो सूरत हाल है कि इसी तरह से कुछ कहानी रहने वाली है। नथिंग इज गोना रियली चेंज टुमारो, एंड इफ अगर कुछ हो जाता है कुछ समथिंग ड्रास्टिक देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट डजंट लुक एनीथिंग इज चेंजिंग। आज गैस पंप्स पे पहुंच जाइए, क्योंकि ईरान की जो सिचुएशन चल रही है, यूएस ईरान की एक दूसरे पर बिल्कुल स्ट्राइक्स राइट लेफ्ट सेंटर चल रही हैं, सो उस वजह से आप जो है पहुंच जाइए पंप्स पे, बिकॉज टुनाइट दे द इट्स गोइंग टू गो अप 8 सेंट्स अ लीटर, 8 सेंट लीटर जाने वाला है ऊपर। अगर 6 सेंट भी चलेगा तो मुझे मत कहिएगा मैंने 8 कहा था, पॉइंट इज जो मैंने सुना पढ़ा मैंने आपको बता दिया। सो अपने गैस पंप फुल कर लीजिए। आज वर्ल्ड कप फीफा का पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा, सबकी निगाहें इस गेम पर हैं। 3 बजे, व्हाट अ इंटरेस्टिंग गेम, फ्रांस वर्सेस स्पेन। अपनी टीम आज के लिए है फ्रांस, आपकी कौन सी है आप चुन लीजिए, एंड बेस्ट विशेस टू यू एंड योर टीम एज वेल। ऐसे करते हैं छोटी सी ब्रेक लेते हैं, 12:15 की अपनी हेडलाइंस बिल्कुल रेडी है। द सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय गुरविंदर बामरा, ऑल स्टेट इंश्योरेंस के लिए काम करती हैं, ऑटो होम इंश्योरेंस में आपको अमेजिंग रेट्स ऑफर करती हैं। कॉल करें 647-303-3207, 647-303-3207। शॉर्ट ब्रेक, आई बी बैक।
1: हाइब्रिड के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन क्या एक गैस लेक्सस आपके लिए ज्यादा सेंस बनाता है? डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस पर NX350 और RX350 प्रीमियम पैकेजेस इमीडिएट डिलीवरी के लिए अवेलेबल हैं, और वेलकम बैक लॉयल्टी ऑफर के साथ आप सेव कर सकते हैं थाउजेंड्स। लीज स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट $657 पर मंथ फॉर 24 मंथ्स विद एन अमेजिंग 0.4% लीज रेट यूजिंग योर रिफंडेबल डिपॉजिट्स। आज ही विजिट करें डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस.com। A proud member of Wynn's Auto Group.

0: रानी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: क्या आपकी होम और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल ड्यू है? क्या आपको तलाश है गुड रेट्स की फॉर द राइट कवरेजेस? तो आज ही कॉल करें गुरविंदर बामरा को फ्रॉम ऑल स्टेट्स मिसागा साउथ एजेंसी एट 289-891-0296। इट्स 289-891-0296। आज ही कॉल करें एंड यू कैन सेव एन एवरेज ऑफ $2,163 व्हेन इंश्योरिंग टू कार्स एंड अ होम। Remember, you're in good hands with Allstate.
3: हर एक ग्रेट जर्नी शुरू होती है एक सही पार्टनर के साथ। वेन्स ऑटो ग्रुप में हमारे डीलरशिप्स का वाइड नेटवर्क डिवर्स कम्युनिटीज को प्राउडली सर्व करता है। एक्सपर्ट कार बाइंग गाइडेंस, प्रीमियम सर्विस और ऐसा सपोर्ट जो आपकी लैंग्वेज समझे। हर डीलरशिप का प्रॉमिस एक ही है, ट्रस्टेड केयर, कंसिस्टेंट सर्विस और कंप्लीट ऑटोमोटिव सपोर्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइव टू लाइफ टाइम केयर। वेन्स ऑटो ग्रुप इज ऑलवेज देयर। Visit veinsautogroup.com.
4: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
5: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: जी हाँ, यहाँ त्योहार पूजा पाठ और सजावट का सामान, मंदिर, मूर्तियाँ, हवन सामग्री, फेंग शुई वास्तु आइटम्स, रिलीजियस बुक्स,
1: यानी पूरे इंडिया का कल्चर एक ही छत के नीचे।
0: 31 मेलिनी ड्राइव, ब्रैम्पटन। कॉल 905-458-6808
1: और विजिट pujahut.com।
2: इंडिया सजावट एंड पूजा हट।
0: जय श्री राम।
3: गुड आफ्टरनून, शुरू करते हैं साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो की ताजा तरीन हेडलाइंस।

Welcome back, friends. And the headlines are brought to you by Brampton TV and Appliances, Clear Optical by Varun Kanda, Rajdhani Sweets and Restaurant, McVean Dental Care, Kavya Homeo Care, Win Lifetime Trading. Shuru karte hain taza tareen headlines. India ne sailor ki maut ke baad Iranian strikes ko condemn kiya aur kaha cease attacks on ships. POK mein clashes ke dauran Pakistani forces ne firing ki 6 civilian mare gaye. Report ke anusar Donald Trump ki Thursday wali speech ka focus hoga 2020 election interference. Trump ne Congress ko formal notice भेजा कि ईरान कॉन्फ्लिक्ट हैज रिज्यूम्ड. ईरान वॉर में अब तक 400 यूएस पर्सनल जख्मी हुए हैं. डेथ काउंट राइजेस टू 14 फॉर यूएस. मिसाइल अलर्ट के बाद सीरीज ऑफ ब्लास्ट्स हर्ड इन कीव एंड यूएस ने थर्ड कंसेक्यूटिव नाइट के लिए ईरान पर स्ट्राइक्स लॉन्च की. डील टू एंड वॉर फॉल्टर हुआ. US immigration agent ne Colombian man ko kill kiya, second such killing in 1 week. And Yemen ne dawa kiya strike on Sanaa airport. Houthis ne Saudi Arab par kiya hamla. Escalating tensions ke beech, US to resume Iran port blockade. Ukraine aur 9 aur nations ne milkar coalition form kar liya hai to protect Europe from missiles. Aur Iran ne Donald Trump ke Hormuz fee demand ko lekar kaha 20% too much, we will be fair. लोकल समाचारों में रेकॉर्ड ब्रेकिंग हीट पॉसिबल फॉर GTA टुडे. टोरंटो AQI करंटली रैंक्स वर्स्ट इन द वर्ल्ड. स्कारब्रो क्रैश के बाद सीनियर इन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन. मेयर ओलिविया चाओ का कहना है कि रेकलेस क्रिमिनल्स टोरंटो को रोक नहीं सकते फ्रॉम होस्टिंग स्ट्रीट फेस्टिवल्स. स्कारब्रो शूटिंग लीव्स वन पर्सन इंजर्ड एंड ओंटारियो मैन बिकम्स द फर्स्ट कनेडियन बेसबॉल लीग प्लेयर ड्राफ्टेड इन टू MLB. भारतीय समाचारों में जम्मू कश्मीर हिमालयस वार्म्ड बाय नियरली 1 degree Celsius इन 20 years. साइंटिस्ट ने ग्लेशियर रिस्क की दी वार्निंग. और दिल्ली की नई पॉलिसी के हाई राइजेस के लिए नया रास्ता खोला. दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में 4 लड़कों ने वॉचमैन को किल किया, ऑब्जर्वेशन से हुए फरार. वियतनाम बोट ट्रेजेडी में मारे गए 15 इंडियंस की बॉडीज पहुंची मुंबई. ड्रग्स सोल्ड इन चॉकलेट रैपर्स. अहमदाबाद में महिला को हिरासत में लिया गया. मार्टियर्स डे रिस्ट्रिक्शंस को लेकर उमर अब्दुल्ला ने हिट पैक किया. क्लोज एड ऑफ सुखबीर बादल को पेट में गोली मारी गई, रश टू हॉस्पिटल. और असम एक्टिविस्ट को अरेस्ट किया गया. ही अपोज लग्जरी होटल्स इन काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व. मुंबई के एक वॉचमैन ने 7 साल की बच्ची का बलात्कार किया. पब्लिक ने पकड़कर पीटा. टेक्स हिम टू द कॉप्स. हिंदू राष्ट्र कमेंट पर बाबा रामदेव ने कहा, आखिर इसमें गलत क्या कहा मैंने. BRS ने तेलंगाना में कांग्रेस के खिलाफ फ्रेश कैंपेन लॉन्च किया ओवर अनफुलफिल्ड जॉब प्रॉमिसेस. और दिल्ली NCR रैपिड रेल नेटवर्क अब एक्सपैंड करेगा. नमो भारत टू नाउ रन टिल ऋषिकेश. फ्राइडे को पंजाब में प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्च करेंगे 2500 करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट्स. 1200 करोड़ रुपए के हेल्थ प्रोजेक्ट से एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट होगा इन पंजाब. पाकिस्तान की खबरों से वाइल्ड लाइफ रेस्क्यूअर्स ने मदद की फॉर बर्ड्स टू सर्वाइव पाकिस्तान्स हॉटर समर्स. FBI चीफ कैश पटेल ने मोहसिन नकवी से की मुलाकात. पाकिस्तान के सपोर्ट की तारीफ की इन प्रोटेक्टिंग US रीजनल इंटरेस्ट्स. OIC ने अडॉप्ट किया इस्लामाबाद डेक्लेरेशन ऑन वुमेन्स एम्पावरमेंट. डेक्लेरेशन बैक करता है वुमेन्स पोलिटिकल एंड इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने गुहार लगाई ग्रेटर एक्सेस टू एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर वुमेन. महिलाओं के खिलाफ वायलेंस पर स्ट्रॉन्गर एक्शन की आवाज भी उठाई. फॉरेन महिला के असॉल्ट केस में अदालत ने 4 suspects की फिजिकल रिमांड को एक्सटेंड किया. सस्पेक्ट से मोबाइल फोन्स और व्हीकल यूज्ड रिकवर किए गए, लाहौर अदालत में पेश किए गए. मनी की रिकवरी फिलहाल पेंडिंग है. सिक्योरिटी सोर्सेज के अनुसार जुलाई 5 से अब तक बलोचिस्तान में 121 आतंकियों को एलिमिनेट किया गया. कराची डॉक्टर की हुई मौत एज रॉबर्स स्नैच 2.5 million रुपीज नियर 3 तलवार. एंड सस्पेक्टेड रॉबर्स फरार हुए. फैमिली का कहना है कि विक्टिम आकाश वॉज सर्विंग एट जिन्ना हॉस्पिटल. रावलकोट बस टर्मिनल में बैंड JAAC के हमले में एक रेंजर का पर्सनल शहीद हुआ, एक और हुआ जख्मी. पुलिस के अनुसार मास्टरमाइंड बिहाइंड रेंजर्स कैंप अटैक इन कराची हैज बिन अरेस्टेड. स्पोर्ट्स जगत से फीफा वर्ल्ड कप के फर्स्ट सेमीफाइनल्स में फ्रांस टू प्ले स्पेन टुडे एट 3 PM. फीफा वर्ल्ड कप के सेकंड सेमीफाइनल्स में इंग्लैंड एंड अर्जेंटीना होंगे आमने सामने. टू बी प्लेड ऑन वेंसडे यानी कल. और रिपोर्ट के अनुसार इंग्लैंड ODI सीरीज के बाद इंडिया के असिस्टेंट कोच करेंगे रिजाइन, इन्फॉर्म्स BCCI ऑफ हिज डिसीजन. बॉलीवुड खबरों से अजय देवगन की धमाल 4 ने 4 दिनों के बाद 100 करोड़ रुपया
ग्लोबली क्रॉस कर लिया है। आलिया भट्ट की अल्फा बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई, लाइफ टाइम कलेक्शन अराउंड 55-60 करोड़ रुपीज ओनली। सलमान खान की फिल्म मातृभूमि शायद 2027 में अब रिलीज होगी। सलमान माइट हैव टू रिलीजेस नेक्स्ट ईयर। रणवीर सिंह अपनी अगली फिल्म प्रलय की शूटिंग अगले महीने से शुरू करेंगे टू टेक पटर्निटी लीव आफ्टर सेकेंड चाइल्ड्स बर्थ। रणबीर कपूर ने पुणे के पास 25 एकड़ ऑफ लैंड बाय की फॉर 16.42 करोड़ रुपीस। और यशराज फिल्म्स ने अर्जुन बैनर्जी को अपॉइंट किया एज द हेड ऑफ वायरएफ टैलेंट। सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन को डिसमिस किया दैट चैलेंज शाहरुख खान मन्नत रेनोवेशन। महानायक अमिताभ बच्चन ने फीफा 2026 में अनफेयर डिसीजन को कॉल आउट करते हुए कहा, स्ट्रेंज सिचुएशन बट द गेम गोज ऑन। ये थी साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो की ताजा तरीन हेडलाइन। स्टूडियो का नंबर 416-593-0055 स्टूडियो का नंबर है। एंड आपकी सॉन्ग रिक्वेस्ट प्ले करेंगे एक के बाद एक। गलती से कई बार मिस्टेक हो जाती है लाइफ में, और इस गीत में अरिजीत सिंह से भी कुछ ऐसा ही हुआ है। साथ दे रहे अमित मिश्रा, फिल्म आया रणबीर कपूर, और ये फिल्म भी गलती से मिस्टेक ही थी, जग्गा जासूस विद कैटरीना कैफ। बनाना कुछ चाहते थे अनुराग बासु आफ्टर बर्फी, और बर्फी के बाद ये क्या पेड़ा बना है, ये बिल्कुल गलती से मिस्टेक ही हुई है। एंजॉय द सॉन्ग, आई विल बी बैक।

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940, 6478631940।
1: जेनेसिस मार्कम पर लग्जरी मिलती है एक एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा। लीज कीजिए ब्यूटिफुली डिजाइन्ड 2026 G70 सिर्फ 1.9% से अप टू 39 मंथ्स, या लीज कीजिए 2026 GV70 सिर्फ 2.9% से। बुक योर टेस्ट ड्राइव टुडे। विजिट genesismarkham.ca, लोकेटेड एट वुडबाइन एवेन्यू एंड जॉन स्ट्रीट, मार्कम। जेनेसिस मार्कम, डूइंग लग्जरी योर वे। अ प्राउड मेंबर ऑफ वेन्स ऑटो ग्रुप।
2: हाय अंजू, कैसी हो? हाउ इज योर सन डूइंग?
3: निशा पूछ मत, सारा दिन कंप्यूटर टीवी फोन पर लगा रहता है, आंखें तो खराब होंगी ही, होमवर्क के टाइम बैटरी गुल।
2: मैं समझ गई, उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले

0: $1,000. Plus, receive kare one-on-one EV delivery session at your home or $500 credit for any protection package valued at $2,500. Aaj hi visit kare DonValleyNorthLexus.com. A proud member of Wings Auto Group.
1: एक और कहानी मेरी जुबानी आशीर्वाद। एक बार एक राजा के दरबार में राजकवि ने प्रवेश किया। राजा ने उन्हें प्रणाम करते हुए उनका स्वागत किया। राजकवि ने राजा को आशीर्वाद देते हुए उनसे कहा, आपके शत्रु चिरंजीव हों। इतना सुनते ही पूरी सभा दंग रह गई। ये विचित्र सा आशीर्वाद सुनकर राजा भी राजकवि से नाराज हो गए, पर उन्होंने अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लिया। राजकवि को भी इस बात का भान हो गया कि राजा उनकी बात सुनकर नाराज हो गए हैं। उन्होंने तुरंत कहा, महाराज क्षमा करें, मैंने आपको आशीर्वाद दिया पर आपने लिया नहीं। राजा ने कहा, कैसे लूं मैं आपका आशीर्वाद, आप मेरे शत्रुओं को मंगल कामना दे रहे हैं। इस पर राजकवि ने समझाया, राजन मैंने ये आशीर्वाद देकर आपका हित ही तो चाहा है। आपके शत्रु जीवित रहेंगे तो आप में बल बुद्धि पराक्रम और सावधानी बनी रहेगी। सावधानी तभी बनी रह सकती है जब शत्रु का भय हो। शत्रु का भय होने पर ही होशियारी आती है, उसके ना रहने पर हम निश्चिंत और लापरवाह हो जाते हैं। हे राजन मैंने आपके शत्रुओं की नहीं आपकी ही मंगल कामना की है। राजकवि के आशीर्वाद का मर्म जानकर राजा संतुष्ट हो गए और उनके आशीर्वाद को स्वीकार किया। विजय होने के लिए डर का होना चाहिए, यह हमें सचेत रहना सिखाता है। स्टे ब्लेस्ड लाइफ आई रिफ्यूज टू गिव अप।
2: You're listening to the Sunny Joshi Show on South Asian Unlimited Radio, CMR 101.3 FM.
3: मस्कोका अंदर 1.5 एकड़ ते 2600 स्क्वायर फुट दी कॉटेज सेल ते आई है। 3 bedroom, 2.5 वॉशरूम हैं। हाई एंड दे फर्नीचर ना फुली फर्निश्ड है। 2 साल दी नमी कॉटेज $100,000 दी इनकम जनरेट कर दी है। 12x30 फुट दा डेक है, प्लस वॉकआउट बेसमेंट भी है। मस्कोका रूम भी फर्निश कीता गया है। पिछे पानी है अते खूबसूरत है। क्लब हाउस बन रहा है जिथे स्विमिंग पूल भी होवेगा। जानकारी लिए कॉल जितेंद्र गंदम 416-265-2222 416-265-2222 4162652 22। जुलाई 25 ओपन हाउस लगन जा रहा है 1 to 3 बजे तक।

0: Joshi.
1: This part of the program is brought to you by Win Lifetime Trading. पिछले 15 सालों से successfully online trading से बहुत से परिवारों को side income provide करते आ रहे हैं, जिसमें आप हर महीने 2000 से 6000 डॉलर US कमा सकते हैं. Flexible schedule है, surety with full confidence के साथ, minimum 2000 to 6000 डॉलर आप कमा सकते हैं. Free seminars attend करें हर Saturday afternoon. Make sure please make your appointment. Walk in ना करें. 12:30 PM to 3:30 PM होता है seminar, and call करके अपनी seat reserve करवा लें. 905-206-1008 905-206-1008. Mittal CPA Professional Corporation, for all your tax related matters, 289-748-4040 289-748-4040.

0: You're listening to South Asian Unlimited Radio. For advertising, call 647-863-1940. 647-863-1940.
1: Hyundai ka Next Starts Now sales event chal raha hai Don Valley North Hyundai par. Ab secure karein saal ke lowest rates. Har customer qualify karta hai up to 1% rate reduction ke liye ya cash purchase per $500 ka benefit. Offer sirf July 31st tak hai. At Don Valley North Hyundai, we speak your language. Visit donvalleynorthhyundai.com ya Woodbine Avenue and Denison Street, Markham par.
2: Don Valley North Hyundai,
3: a proud member of Wayne's Auto Group.
4: काव्या होम्यो केयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस, हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है. काव्या होम्यो केयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर. 10 कोट्रेल बुलेवार्ड, Unit 104 in Brampton, 647-760-2779, 647-760-2779.
0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है. हम पहुंच चुके हैं काव्या होम्यो केयर, गोल्ड मेडलिस्ट होम्योपैथ मीता ओजा, पिनाक ओजा जी, 10 कोट्रेल बुलेवार्ड, यूनिट 104, ब्रैम्पटन से आपको सर्व करते हैं. द मेजर इंटरसेक्शन इज नॉर्थ पार्क एंड एयरपोर्ट रोड. द क्लिनिक फॉर योर कन्वीनियंस इज ओपन 6 डेज अ वीक, मंडे टू सैटरडे, 10 AM इन द मॉर्निंग टू 6 PM इन द इवनिंग. वॉक इन करें, अपॉइंटमेंट बनाएं एंड आप फोन पर कंसल्टेशन भी कर सकते हैं. दवाई शिप कर दी जाती है ऑल अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका. इट्स डन. 647-760-2779. मीता जी, आपका स्वागत है.
5: थैंक यू सो मच सनी जी. गुड आफ्टरनून एवरीवन, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो
0: जी, मजामा, गुड आफ्टरनून मीता जी. आज मीता जी स्पेशल हेल्थ सेगमेंट में किस बीमारी को लेकर करेंगे बातचीत?
5: जी सनी जी, आज हम देखेंगे थायराइड डिसऑर्डर के बारे में.
0: जी,
5: सो थायराइड ग्लैंड जो हमारी नेक में फ्रंट पार्ट में थायराइड कार्टिलेज जिसको कहते हैं, उसके आसपास बटरफ्लाई शेप की ये ग्लैंड होती है जो कि हार्मोन रिलीज करती है. अब ये हार्मोन हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, जिस करके क्या होगा कि प्रॉपर एनर्जी में कन्वर्ट होना, जो कुछ भी आप खाना पीना लेते हैं उसके थ्रू कन्वर्ट होता है. एंड देन जो भी बॉडी में एनर्जी यूज होनी चाहिए तो वो इस ग्लैंड से होता है. हमारे बालों का ग्रोथ है, हमारे नेल्स का ग्रोथ है, तो ये सारा कुछ थायराइड ग्लैंड रेगुलेट करती है. अब ऐसे में जब थायराइड हार्मोन ये प्रोड्यूस करती है, उसमें जब ऊपर नीचे कुछ हो जाता है तो उसके साथ थायराइड डिजीज जिसको कहते हैं ये प्रोड्यूस हो सकता है, जिसमें मोस्ट कॉमन है हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म. हाइपोथायरॉयडिज्म मींस के जब ये अंडर एक्टिव हो जाता है, हार्मोन का जो अमाउंट है वो TSH लेवल आपका हाई जाने लगता है, तो उसके साथ अंडर एक्टिव थायराइड यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म डेवलप होगा बॉडी में. अब ऐसे में बॉडी में आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाएगा, जिस करके ये पेशेंट्स जो है वो वेट गेन करते हैं. उनको काफी सारी भूख लगती है, सो ज्यादा एपेटाइट होना एंड इसके साथ वेट गेन कर जाते हैं. बॉडी में जैसे ठंड ज्यादा लगना, गर्मी ज्यादा लगना, स्पेशली ज्यादा चिल्स आते रहते हैं, कोल्ड सेंसिटिविटी बढ़ जाती है ऐसे में, और फिर कॉन्सेंट्रेशन में प्रॉब्लम, फोकस करने में प्रॉब्लम आ जाती है. और ज्यादातर हाइपोथायरॉयडिज्म के केसेस जो होते हैं स्पेशली लेडीज में ये ज्यादा पाया जाता है, और उन लेडीज को, यंग गर्ल्स को कंसीव करने में प्रॉब्लम, प्रेगनेंसी रुकने में काफी हद तक ये इंटरफियर कर सकती है कंडीशन, और उस करके इनफर्टिलिटी होने की पॉसिबिलिटीज भी बढ़ जाती है. अब ये सारी चीजें जो है इसकी ओपोजिट कंडीशन जो होती है जिसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं. तो हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होगा कि वेट लूज करना, खाना पीना अच्छा है, भूख सही लग रही है, उसके बावजूद आप वेट लूज कर देते हैं, ज्यादा हीट लगना, स्वेटिंग होती है, हीट ज्यादा है, पेशेंट को पॉल्पिटेशन फील होता है, एंग्जाइटी सी फील होती है, और ऑलरेडी जिनको एंग्जाइटी इश्यूज हैं तो उनके सिम्टम्स ट्रिगर हो जाते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म करके, और फिर उनको पैनिक होना, हर छोटी छोटी बातों में एंग्जाइटी फील करते हैं, नर्वसनेस है, बॉडी शेक करने लगता है, सो ये ट्रैम्बलिंग वगैरह जैसी कंडीशन पाई जाती है. और काफी बार थायराइड ग्लैंड के अंदर नोड्यूल्स बन जाते हैं जिसको थायराइड नोड्यूल्स कहा जाता है. के फ्लूइड या सॉलिड से भरे लम्स बन जाते हैं, और उस करके जब ये साइज में बड़े होने लगते हैं तो आपको स्वॉलो करने में ट्रबल आती है, ब्रीथ करने में ट्रबल आती है। और वैसे रूटीन चेकअप में जब आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जाते हैं, उनको कुछ डाउट जाता है थ्रोट में स्वेलिंग या कोई लम्प सा फील होता है, तो वो आपको स्कैन कराने को कहेंगे, और ये स्कैन कराने से पता चलता है कि आपके थायरॉयड ग्लैंड में नोड्यूल्स बने हुए हैं। तो ऐसे में चाहे हाइपोथायरॉयडिज्म अभी डायग्नोस हुआ है, हाइपरथायरॉयडिज्म है, या फिर ये नोड्यूल्स बने हुए हैं, तो ऑटोइम्यून थायरॉयडाइटिस या फिर हाशिमोटोस डिजीज के नाम से जिसको जाना जाता है, तो ये कंडीशन के लिए ये हमारा ट्रीटमेंट है आपको काफी हेल्प करेगा। एंड स्टार्ट करने के साथ ही आपके सिम्टम्स में इंप्रूवमेंट, एंड कपल ऑफ मंथ्स में आप देखोगे कि आपके ब्लड वर्क में इंप्रूवमेंट स्टार्ट हो गई है, एंड थोड़ा ये कंटिन्यू लेना पड़ेगा जिस करके फिर इस कंडीशन को आप रिवर्ट कर सकते हैं। सो फील फ्री टू कॉल अस कोई भी हॉर्मोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, थायराइड डिसऑर्डर है, PCOS की प्रॉब्लम है यंग गर्ल्स में, पीरियड्स रिलेटेड इरेगुलरिटीज हैं, लेट पीरियड्स आना या फिर कंटिन्यूअस फ्लो है, हेवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, या कोई भी एक्यूट क्रोनिक डिजीज के लिए काव्या होम्यो केयर से आप मेरा कॉन्टेक्ट जरूर कर सकते हैं।
0: बिल्कुल दोस्तों, काव्या होम्यो केयर गोल्ड मेडलिस्ट होम्योपैथ मीता ओझा पिनाक ओझा जी, 10 कॉटरेल बुलेवार्ड यूनिट 104 ब्रैम्पटन से सर्व करते हैं। नॉर्थ पार्क एयरपोर्ट रोड का मेजर इंटरसेक्शन है। मंडे टू सैटरडे द क्लिनिक इज ओपन 10 AM इन द मॉर्निंग टू 6 PM। द नंबर टू कॉल इज 6477602779 6477602779 इज द नंबर टू कॉल। अपॉइंटमेंट बनाएं, वॉक इन करें, या फोन पर कंसल्टेशन भी की जा सकती है। मीता जी बहुत बहुत शुक्रिया।
5: थैंक यू सनी जी।
0: थैंक यू जी। 6477602779। ऑटो होम इंश्योरेंस में जबरदस्त रेट्स आपको ऑफर कर रही है गुरविंदर बामरा फ्रॉम ऑल स्टेट इंश्योरेंस। आज ही कॉल करें, गेट द बेस्ट रेट्स। 6473033207 6473033207। बहुत ही ब्यूटीफुल सा गीत है मोहम्मद रफी साहब की आवाज में, आपकी रिक्वेस्ट है, लाइन अप कर दिया है, एंजॉय करें, आते हैं वापस।

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940, 6478631940।
1: Family travel को बनाइए effortless with the Lexus TX350 at Don Valley North Lexus. Spacious, refined और हर drive के लिए ready. Quick refueling के साथ बिना charging delays के. Welcome back offer और 10 MSDs का advantage लीजिए और lease कीजिए TX350 luxury package for $799 plus taxes per month with a 1.4% lease rate. Only at Don Valley North Lexus. Luxury का experience लीजिए बिना wait के. A proud member of Wayne's Auto Group.
0: मॉर्गेज का कोई भी काम याद रखें एक ही नाम, मॉर्गेज आर्किटेक्ट्स के सनी जोशी। फर्स्ट मॉर्गेज, सेकंड मॉर्गेज, होम इक्विटी, रिन्यूअल्स, बैड क्रेडिट, इनकम इश्यूज के लिए लेट्स टॉक। बेस्ट रेट्स, बेस्ट सर्विस एंड बेस्ट मॉर्गेज प्रोफेशनल सनी जोशी। 6478631940, 6478631940।

0: Wow, Mom. Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: अपने करीबी को खोने से बड़ा कोई गम नहीं। Brampton Crematorium and Visitation Center and Ajax Crematorium and Visitation Center में आप और आपके परिवार को शांति से इस अवसर पर अफसोस करने का वक्त मिलता है। 8 साल का लंबा तजुर्बा, हर फेथ और हर धर्म और कल्चर के लिए यहाँ कंप्लीट रेंज ऑफ क्रिमेशन एंड मेमोरियल आपके चॉइस की एक्सक्लूसिव फैसिलिटीज भी उपलब्ध है। हर कदम हम आपके साथ। 30 Brampton Court in Brampton, 905-458-2222 or log on to bcbc.info or 384 Finley Ave in Ajax, 289-372-3330 or acvc.info.
4: समर ड्राइव का एक्साइटमेंट बढ़ाएं विद टंड्रा एट डॉन वैली नॉर्थ टोयोटा। आपके नेक्स्ट एडवेंचर के लिए बिल्ट और फाइनेंसिंग सिर्फ 3.99% से। बिग सिलेक्शन, बिग समर मोमेंटम, टोयोटा करोला भी इन स्टॉक है आपकी रोजाना ड्राइव के लिए। बुक अ टेस्ट ड्राइव टुडे, वी पे टॉप डॉलर फॉर योर ट्री। इट्स टाइम टू टोयोटा एट डॉन वैली नॉर्थ टोयोटा.com। लोकेटेड है 3300 स्टील्स एवेन्यू ईस्ट मार्कम पर। अ प्राउड मेंबर ऑफ वेन्स ऑटो ग्रुप।
3: दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई, जैसे एहसान उतारता है कोई। आईना देख के तसल्ली हुई, हमको इस घर में जानता है कोई। पक गया है शजर पे फल शायद, फिर से पत्थर उछालता है कोई। फिर नजर में लहू के छींटे हैं, तुमको शायद मुघालता है कोई। देर से गूंजते हैं सन्नाटे, जैसे हमको पुकारता है कोई।
5: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर। बाहर का तापमान हो चुका है 34 डिग्री सेल्सियस एंड इट फील्स लाइक 43 डिग्री सेल्सियस एंड इट्स हॉट आउट देयर। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। और स्टूडियो के अंदर भी काफ़ी हॉट इन्फॉर्मेशन लेकर हमारे साथ पहुंच चुके हैं तविश भंडारी जी, जो कि फाउंडर है ऑफ ओमकल, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है दैट ऑल्सो वर्क्स विद कॉलेजेस अक्रॉस ओंटारियो। और स्टूडेंट्स की मदद की जाती है एक्सेस पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन। तो ऐसे करते हैं, तविश साहब का जो है हम स्वागत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं व्हाट एग्जैक्टली तविश आज किस चीज की जानकारी लेकर पहुंचे हैं। नंबर प्लीज नोट करें 416-505-2735। तविश आपका स्वागत है।
6: गुड आफ्टरनून सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर द लवली इंट्रोडक्शन, इट रियली मींस अ लॉट।
5: थैंक यू तविश।
6: यहाँ पर आए हैं उस ऐप के बारे में डिस्कस करने के लिए, लिस्नर को थोड़ा एजुकेट करने के, गाइड करने के लिए
5: जी,
6: कि उस ऐप क्या चीज है एंड हाउ एवरीवन विल गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट।
5: जी, तो ऐसे करते हैं तविश, शुरू करते हैं बेसिक से कि व्हाट एग्जैक्टली ओ सैप है क्या।
6: ओके, ओ सैप इज बेसिकली अ प्रोग्राम बाय द ओंटारियो गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा। It's called Ontario Student Assistance Program. As the name suggests, it helps people in order to do their higher secondary education.
5: जी.
6: So, अगर कोई आगे पढ़ना चाहता है and they need assistance, maybe assistance with tuition, assistance in their living expense, तो ये एक ऐसा program है जिसका benefit ले सकते हैं।
5: जी, इस कौन इसमें eligible होते हैं तविश, जो apply कर सकते हैं, who exactly are eligible to apply?
6: एलिजिबिलिटी के लिए इसमें जो कैनेडियन सिटीजन है, परमानेंट रेजिडेंट है और वो रिफ्यूजीज जो एक्सेप्टेड रिफ्यूजीज के टैग से हैं, ऑल ऑफ देम आर एलिजिबल।
5: जी, एंड जब हम बात करते हैं हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस कैन समवन रिसीव, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब ओसैप की हम बात कर रहे हैं तो दिमाग में ये आता है कि यार व्हाट डू आई क्वालिफाई फॉर, मुझे कितना ओसैप में पैसा मिल सकता है।
6: तो सर इस केस में ऐसा है कि एवरी स्टूडेंट रिसीव अ डिफरेंट अमाउंट। अब मैं अगर एक एग्जांपल लेके चलते हैं, हम लेट टेक एग्जांपल ऑफ अ फैमिली, हस्बैंड वाइफ एंड दे हैव टू किड्स डिपेंडेंट, And their household income, let's say, is around $45,000.
5: Okay.
6: So if they go for a one-year-long program, let's say they want to learn accounting program, they will approximately get loan plus grant approximately $50,000. If in this, let's say the tuition fees is like $10,000. So generally the grant goes $30,000. Grant is the money jo aapne apne paas rakhna hai.
5: Ji.
6: And loan is the money $20,000 jo aapko as a loan money milega aapke ke account mein.
5: Ji.
6: But jo loan wala money hai wo aap after 6 months of your study end वापस करना है दैट तो आप इसको EMI से वापस कर सकते हैं एट अ वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज अराउंड 2.5%.
5: जी, जो मुझे समझ आ रहा है तविश की जो ग्रांट का हिस्सा होता है वो लौटाना नहीं पड़ता.
6: हाँ जी सर.
5: ठीक है, मैं नंबर आपका एक बार यहाँ पे फिर से देना चाहूंगा 416-505-2735. दोस्तों, जो जिस हालात से हम गुजर रहे हैं, मतलब जो ग्लोबल स्थिति है, सिनारियो है, जो कैनेडियन नॉर्थ अमेरिकन स्थिति देख रहे हैं हम, वी डू नीड टू सॉर्ट ऑफ एजुकेट आवरसेल्व्स, गो बैक टू स्कूल. एजुकेशन को कंटिन्यू करना चाहिए. बाकी जो बच्चे भी अप्लाई भी कर रहे हैं कॉलेजेस में, दे रियली नीड टू नो अबाउट द फाइन डिटेल्स ऑफ हाउ दिस थिंग एग्जैक्टली वर्क्स. इस सेगमेंट के बाद आप तविश जी से 416-505-2735 पर जो है कॉल करके बाकी की जानकारी ले सकते हैं. एंड व्हाट काइंड ऑफ कोर्सेज आर अवेलेबल थ्रू योर जो पार्टनर कॉलेजेस हैं तविश?
6: सो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ कोर्सेज अवेलेबल एंड यू नो लाइक ऑफ एनी पर्सन ऑफ एनी एज एंड एनी ऑक्यूपेशन कैन अप्लाई. लेट्स से इवन इफ यू आर अ 40 ईयर ओल्ड उबर ड्राइवर, यू कैन स्टिल एलिजिबल एंड अप्लाई फॉर कोर्सेज लाइक इंटरनेशनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. We have community support worker, accounting, business, payroll and taxes, hospitality and tourism, hair styling, construction management, medical office administration, medical aesthetics. So there are a wide number of courses which are available and you can select any one of it.
5: Right now, Tavish, jo log aapko hamare listeners sun rahe hain, who should really be paying attention to this segment jo hamari interview chal rahi hai, aapke hisab se?
6: I think इस टाइम पर सभी को जो थोड़ा बहुत फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हैं या जो चाहते हैं हाउस वाइफ होगी, अगर वो कुछ अपस्केल करना चाहते हैं तो ऑनलाइन कोर्सेज है सारे. यू डोंट नीड टू गो टू द स्कूल एंड एक्चुअली डू इट.
5: अच्छा,
6: आप ऑनलाइन घर बैठ के ही सब कुछ कर सकते हैं. तो जैसे कोई ऊबर ड्राइवर है, एक्चुअली ऊबर ड्राइवर बहुत सारे हैं जो खुद को अपस्केल करते हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और अकाउंटिंग में. हाउस वाइफ बहुत सारी हैं जो हेयर स्टाइलिंग करती हैं, मेडिकल एस्थेटिक्स करती हैं, उससे उनका स्मॉल बिजनेस शुरू हो सकता है. तो आई थिंक एनी वन एंड एवरी वन जो सीनियर सिटीजन भी हैं, लेट्स से लाइक अराउंड 65 इयर्स के, क्योंकि 65 इयर्स तक मिल जाता है, दे कैन सो यू नो लाइक लर्निंग पर्पसेस वो आ सकते हैं. तो आई थिंक इस टाइम पे एनी वन एंड एवरी वन शुड बी कंसिडरिंग बिकॉज देयर आर ओनली 10 डेज लेफ्ट फॉर दिस. आफ्टर 10 डेज हमारा जो ग्रांट वाला पोर्शन है वो अप्रोक्सीमेटली नेग्लिजिबल हो जाएगा
5: 10 दिन बाद.
6: एडमिटर शुरू हो रहा है.
5: ठीक है, कई लोगों को तविश लगता है कि एप्लीकेशन प्रोसेस काफी कंफ्यूजिंग है, आप किस तरह से मदद कर सकते हैं?
6: ओके, एप्लीकेशन वैसे काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है एंड हियर आई कैन डू इट, लाइक आई कैन असिस्ट एनीवन एंड एवरीवन फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट. अगर आपको एस्टिमेट जानना है, अपना नंबर ऑफ कोर्सेज पूछने हैं, एप्लीकेशन भी करवानी है, आप हमें कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक कीजिए एंड विदाउट एनी चार्जेस फ्री ऑफ कॉस्ट वी विल असिस्ट यू ऑल्सो डू इट.
5: जी, सवाल ये उठता है कि आप एक अच्छी खासी सॉफ्टवेयर कंपनी को चला रहे हैं, यू बीन रनिंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, आप ये क्यों कर रहे हैं, व्हाई आर यू डूइंग दिस?
6: सो बेसिकली दिस कोर्स स्कूल्स आर ऑलरेडी माय क्लाइंट्स एंड दे गिव मी अ लॉट ऑफ बिजनेस. And I came across this opportunity. सबका फायदा हो रहा है, स्कूल का फायदा हो रहा है, they are getting admissions and people are also getting benefit because they are getting money for tuition as well as for their living expenses. Assistant as well, $20,000-$30,000 is a lot of money for in grant. So you know, like it's a good deed which we are doing and it's just 10 days.
5: बिल्कुल 10 दिन बच गए हैं दोस्तों. अगर आपको भी ग्रांट चाहिए, इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो बैक टू स्कूल, कोई भी आपकी उम्र है, आप स्कूल वापस जाना चाहते हैं. कई बार ऑड जॉब्स कर करके हम थक जाते हैं और बंदे को ऐसा लगता है कि यार अभी मेरा घर का खर्चा तो चल रहा है लेकिन फ्यूचर नहीं दिख रहा है, फ्यूचर इज ब्लीक. तो तविश जी से ज़रूर आप संपर्क करें. एंड ये ग्रांट जो है आपको मिलती है पढ़ाई के लिए, ये रिटर्न भी नहीं करनी पड़ती. तो 416-505-2735. People qualify according to what they've made in, for example, this is 2026, so 2025 में जो आपने earn किया है उसके बुनियाद पर आपको जो है grant मिलती है. If someone listening right now, Tavish, ज़्यादा जानकारी के लिए क्या करना चाहिए उनको, please आप number अपना share करें.
6: And sir, 2024 के इनकम के बेसिस पे हमारा डिसाइड होता है इंस्टेड ऑफ 2025.
5: अच्छा, 2024 की इनकम पे
6: हमारा हुआ है.
5: ठीक है.
6: बाकी यू गाइस कैन रीच आउट टू मी एट 416-505-2735.
5: 416-505-2735. 416-505-2735. तविश होल्ड करें लाइन को क्योंकि मेरे पास शायद एक कॉलर है, अशोक जी. अगर अशोक जी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं. अशोक जी आप ऑन एयर हैं. डिड यू हैव एनी क्वेश्चन इन रिगार्ड्स टू व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट?
7: औसत के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी, पर क्या ये सीनियर पर्सन के लिए भी अवेलेबल होगा?
5: तविश, व्हाट इज द एज? अब आपने 65 कहा था शायद.
6: कॉलेजेस एक्सेप्ट टिल 68 इयर्स. आप 68 इयर्स तक ओसेप अप्लाई कर सकते हैं एंड कॉलेजेस आर एक्सेप्टिंग बिकॉज़ इट्स एन ऑनलाइन कोर्स एंड यू कैन स्टार्ट स्मॉल बिजनेस फ्रॉम योर होम. दैट्स व्हाई.
5: सो अप टू 68.
6: हां जी सर.
5: ठीक है अशोक जी, बाकी जानकारी के लिए मेरी गुजारिश होगी अशोक जी आप तविश भंडारी साहब को कॉल करें 416-505-2735. 416-505-2735. तविश थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड शेयरिंग दिस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपका.
6: थैंक यू सो मच सर फॉर दिस ऑपर्चुनिटी.
5: थैंक यू ब्रदर. नंबर एक बार फिर से मैं दे दूं, 416-505-2735. अगर आप भी कंटिन्यू करना चाहते हैं एजुकेशन तो गवर्नमेंट आपको ये ग्रांट दे रही है जो कि तविश जी आपकी मदद करेंगे. बिकॉज टेक्निकली तविश भंडारी जो हैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी रन करते हैं एंड उनके जो क्लाइंट्स हैं प्राइवेट कॉलेजेस हैं. सो देयर इज ओनली 10 डेज लेफ्ट. इफ यू आर लुकिंग इनटू समथिंग लाइक दिस, टॉक टू तविश 416-505-2735. इवन जो kids going, you know, sometimes kids bhi thoda sa break le lete from school and then they want to go back. Talk to Tavish. Grant ke liye aap qualify karenge. 416-505-2735. And Clear Optical by Varun Kanda, Brampton, Georgetown, do locations se serve karte hain. Name brand sunglasses par bahut zabardast deals chal rahi hai, jiske liye ek bar visit zarur karein. Rajdhani Sweets and Restaurant, 100% pure vegetarian food, zabardast mithaiyon ka dusra naam, Rajdhani Sweets and Restaurant, serving in GTA, beyond GTA. राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट. राजधानी की तरफ से एक प्यारा सा गीत है, ये मौसम आया है, किशोर कुमार एंड लता जी की आवाज में ब्यूटीफुल सॉन्ग लाइनअप कर दिया है. फिर आगे चलकर हमारी बात होगी अतीक खान साहब से एज वेल, और एक खास मेहमान 1:30 बजे हमारे साथ होंगी, उनसे बातचीत होगी. गुरविंदर जी आज की हमारी खास मेहमान हैं और क्यों वो ऑन एयर आ रही हैं एंड व्हाट इज शी गोना टॉक अबाउट, देयर इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग जो कि एक इवेंट हो रहा है जिसमें वो पार्टिसिपेट करने वाली हैं, जिसको लेकर हमारे साथ उनकी बातचीत होगी. और मिसेस कनाडा, एन इवेंट इज हैपनिंग इन वैंकूवर एंड जिसकी वजह से गुरविंदर जी विल बी विद अस, विल टॉक टू हर अबाउट इन रिगार्ड्स टू दैट इवेंट एज वेल. शॉर्ट ब्रेक, एंजॉय द सॉन्ग, आई विल बी बैक.

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940, 6478631940।
1: हर एक ग्रेट जर्नी शुरू होती है एक सही पार्टनर के साथ। वेन्स ऑटो ग्रुप में हमारे डीलरशिप्स का वाइड नेटवर्क डिवर्स कम्युनिटीज को प्राउडली सर्व करता है। एक्सपर्ट कार बाइंग गाइडेंस, प्रीमियम सर्विस और ऐसा सपोर्ट जो आपकी लैंग्वेज समझे। हर डीलरशिप का प्रॉमिस एक ही है, ट्रस्टेड केयर, कंसिस्टेंट सर्विस और कंप्लीट ऑटोमोटिव सपोर्ट। फ्रॉम फर्स्ट ड्राइव टू लाइफ टाइम केयर, वेन्स ऑटो ग्रुप इज ऑलवेज देयर। विजिट veinsautogroup.com।
2: McQueen Dental Care, Dr. Raj Gill, 9960 McQueen Drive, Unit 6 in Brampton. For all your dental needs, insurance ho ya na ho, McQueen Dental Care ke paas aapke liye special packages available hain. Talk to Sirat 905-794-8883. Chahe braces lagwane hain, ya phir dentures, ya partial dentures, root canal cleaning, ya checkups. Call McQueen Dental Care, 905-794-8883.
3: काव्या होम्यो केयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है। काव्या होम्यो केयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर। 10 कोट्रेल बुलेवार्ड, यूनिट 104 in Brampton, 6477602779.
4: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
5: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: की राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: मन तू सुन जरा, ए मन तू सुन जरा, मत किसी से बहस किया कर। जब तुझे कोई समझता ही नहीं, तू मत किसी को राय दिया कर। इस वहम में ना रहा कर कि तुझसे करते लोग प्यार हैं। तू कहता अपनी एक है, मगर सुनाते तुझे हजार हैं। कितनी बार ठोकर लगी है तुझको, फिर भी तू संभलता नहीं। कितनी बार ठोकर लगी है तुझको, फिर भी तू संभलता नहीं। अपनों के मोजाल में फंसा है इस कदर, क्यों चाहकर भी निकलता नहीं, क्यों चाहकर भी निकलता नहीं।
3: कॉन्डो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर 5 साल किसको रुकना है। बन जाइए डेवलपर एंड बिल्डर और बनाइए पैसे डे 1 से। कॉन्टेक्ट कीजिए अतीक खान एंड बिकम अ ब्रांड टू ग्रो योर ओन वेल्थ। 416-666-2745।
4: Welcome back, friends. एक बार फिर से आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर, मंडे टू फ्राइडे 12 टू 2 पीएम साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, जहां पर हमारे अतीक खान साहब वीकली बेसिस पर ऑन एयर आते हैं, क्योंकि लोकल डेवलपर और बिल्डर हैं और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के साथ इंगेज रहे हैं इन साउथर्न ओंटारियो सिंस 2000। इट्स बिन 26 लॉन्ग ईयर्स, स्टिल इंगेज्ड विद अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स। और एक बिजनेस कॉन्सेप्ट है जिसको लेकर आए हैं। आज हम उस बिजनेस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डाइसेक्ट करेंगे, हमारे लिसनर्स के कुछ सवाल पूछेंगे कि भाई इस बिजनेस कॉन्सेप्ट में मैं किस तरह से अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मेरी क्या सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, क्योंकि व्हेन टाइम्स आर टफ, यू नो, एंड इवन व्हेन टाइम्स आर नॉट टफ, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि मेहनत से पैसे जो कमाए हैं वो किस तरह से हम हर तरफ से उसे सिक्योर करें। स्टॉक मार्केट में डालकर डर होता है कि भैया स्टॉक कल पता नहीं ट्रंप की क्या अनाउंसमेंट आएगी, पता चले स्टॉक गिर गए, फिर क्या अनाउंसमेंट आएगी ऊपर चले गए। कई बार हम कॉन्डो खरीद लेते हैं, अब जिन्होंने बेचारों ने खरीदे हैं, आई डू मॉर्गेजेस माई सेल्फ, आई नो हाउ इट इज़ व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। क्रेजी क्रेजी, एब्सोल्युटली क्रेजी सिचुएशन से लोग फंस गए। अब यहाँ पर ये लैंड खरीदने की बात हो रही है, जोनिंग बदलने की बात हो रही है, जिसमें अतीक भाई इज़ एन एक्सपर्ट। 416-666-2745 इज़ द नंबर। अतीक भाई, आपका स्वागत है।
5: थैंक यू सो मच सनी साहब, आपको, आपके लिसनर्स को बहुत सारा प्यार, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब।
4: जी आपको भी आदाब, गुड आफ्टरनून।
5: थैंक यू।
4: एंड अतीक भाई, हाइपोथेटिकल सिचुएशन में अपनी डाल देता हूं, पर वैसे लिसनर्स के अक्सर इसी लाइन पर जो है सवाल आते हैं कि भाई किसी ने कहा है कि मेरे पास $150,000 है जो कि मैंने बड़े मेहनत से मुशक्कत से पहले बनाया है, फिर सेव किया है, और अब मैं उसकी ग्रोथ की तरफ कदम रख रहा हूँ। मैंने वेरियस चीज़ों में उस पैसे को पहले इस्तेमाल किया, फिर ऐसा लगा कि यार यू नो वी डोंट गेट द काइंड ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द बैंक्स जो बैक होम हमें मिलता है, जो हम सुनते हैं, यू नो 7-9% एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। यहाँ पर आपके इस बिजनेस कॉन्सेप्ट में मैं किस तरह से अपना एक्स अमाउंट ऑफ डॉलर्स यूज कर सकता हूँ, इन्वेस्ट कर सकता हूँ, एंड रेस्ट अश्योर्ड हो सकता हूँ कि भाई मेरा पैसा जो है अब ग्रो ही ग्रो करेगा विदाउट एनी रिस्क।
5: 100% सही बात है, आपका सवाल बिल्कुल सही है, वो आप अपने ऊपर रखो या लिसनर के ऊपर रखो, और मैं आपको और आपके लिसनर्स को वो टिप देता हूँ जिससे आप समझ जाओगे कि अतीक साहब ने आके बात बिल्कुल ठीक कही थी। आज की तारीख में, और मैं सिर्फ कनाडा की बात नहीं कर रहा हूँ सनी साहब, पूरी वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, पूरी वर्ल्ड में इस वक्त तीन, अगर मैं आपसे ऐसे बोलूं कि तीन बड़े कोई बिजनेसेस बता दीजिए या दुनिया में इस वक्त तीन बड़ी न्यूज क्या है, तो क्या आप अपने तौर पे गिना सकते हो? अदर देन वॉर, मैं वॉर की बात नहीं कर रहा, इसकी बात कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बात कर रहा हूं।
4: देखिए, मुझे लैंड के अलावा तो कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट दिमाग में ट्रूथफुली आती नहीं है। इट्स जैसे लैंड लैंड लैंड ही है जो हमने बचपने से छोटे होते हुए बुजुर्गों से सुना है कि भाई कोई ज़मीन खरीद लो, ये ज़मीन जो है सोने की तरह होती है, ये आपको 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25-30 साल बाद ये बढ़ेगी बढ़ेगी, आज तक सुना नहीं है कि किसी ने कोई खेत खरीदा हो और फिर उसकी वैल्यू जो डी वैल्यू हो गया हो 10 साल बाद। सो
5: आपने बिल्कुल मेरे मुंह की बात छीनी कि लैंड वो वाहिद चीज है जो जितनी ऊपर वाले ने बना दी इस धरती पे उतनी रहेगी।
4: Exactly.
5: अच्छा, और मजे की बात क्या है, जो मेरा क्वेश्चन था इसी लैंड से रिलेटेड के तीन बड़े काम कहाँ हो रहे हैं, वो तीन बड़े काम भी लैंड से रिलेटेड ही हो रहे हैं। एक बहुत बड़ी जो पिछली पूरी दुनिया में इस वक्त चल रही है वो स्पेसएक्स की बात हो रही है कि जी हम मार्स पे जाएंगे, मार्स पे कॉलोनी बनाएंगे, लोगों को मार्स पे मूव करेंगे। वो भले मेरी आपकी लाइफ में हो ना हो, 100 साल बाद हो, इवेंचुअली वहां भी झगड़ा लैंड का ही होगा।
4: Exactly.
5: उसके बाद आप दूसरा बड़ा ले लीजिए, ईवी प्लांट्स अब आ गए हैं, वेदर यू लाइक इट और नॉट, आने वाले 10-15-20 सालों में हर दूसरे चौथे आदमी के पास गाड़ियां होंगी, या तो वो चाइनीज मेक होंगी या अमेरिकन मेक होंगी या इंडियन मेक होंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, ईवी अब आपकी लाइफ का पार्ट बन चुका है, उसके लिए भी आपको लैंड चाहिए। और नंबर तीसरी चीज जो आजकल नंबर वन उस पे चल रही है, वो आ गए हैं AI डेटा सेंटर। AI के लिए जैसे जैसे AI बढ़ता जा रहा है, आता जा रहा है, आपको डेटा सेंटर बनाएंगे। डेटा सेंटर हो, ईवी हो या SpaceX हो, तीनों जगहों को अगर आप नोट करोगे, पानी की जरूरत इनको पड़ती है, क्योंकि एनर्जी जो मिलती है आपको वो पानी से मिलती है। डेटा सेंटर भी पानी यूज करते हैं, प्रोसेसिंग के उनके बड़े हाई वो लग रहे होते हैं, कंप्यूटर्स वगैरह लगे हुए होते हैं। इसी तरीके से ईवी को पानी चाहिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और SpaceX को तो पानी चाहिए ही चाहिए। मेरा पॉइंट क्या था, जो मैंने इतना लंबा आपको ये बात बताई कि लैंड में अगर आपने पैसा लगाया, वो भी अगर ऐसी जगह जहां डेटा सेंटर आ सकता हो, ईवी प्लांट आ सकता हो, तो आज की तारीख में इंडस्ट्रियल लैंड में पैसा लगा दीजिए। दुआ देंगे कि अतीक जी ने आके सनी साहब के रेडियो पे बिल्कुल सही बात की थी, हमने लेट उस पर रिएक्ट किया लेकिन उन्होंने बात सही की थी। तो वो जो आपका 1 लाख है या 50,000 है, अगर आप GEC जोन में लगाते हैं, सर GEC कहलाता है गेटवे इकोनॉमिक जोन या गेटवे इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये नॉर्मली पानी के पास की लैंड होती है या हाईवे की पास की लैंड होती है। मेरे पास इस वक्त 3 एकड़ से लेके 50 एकड़ तक ऐसी लैंड है जो ईवी प्लांट में भी यूज हो सकती है, जो डेटा सेंटर में भी यूज हो सकती है, या स्पेस टेक्नोलॉजी में भी आप उसको यूज कर सकते हैं। बट इन तीनों चीजों के लिए वो आपका 50,000 और 1 लाख आपको मल्टीपल टाइम पैसे बना के देगा, टेक माई वर्ड फॉर इट। 416-666-2745।
4: जी, अभी जो अतीक भाई ने कहा, एक्सपर्ट तो अतीक भाई हैं भाई, मैं तो ऐड ऑन करता हूँ चीज़ें, जितना छोटा मोटा रिसर्च मैं अतीक भाई की बातों पे आगे करता हूँ और बताता हूँ। जो अभी अतीक भाई ने कहा, ओंटारियो में GEC गेटवे इकोनॉमिक सेंटर है और ये स्पेशलाइज्ड है म्यूनिसिपल लैंड यूज डेजिग्नेशन, मोस्ट नोटेबल वेलिंड एक सिटी है जिसके बारे में कुछ टाइम पहले अतीक भाई ने बात भी की थी, जो परमिट करता है ब्रॉड रेंज ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल हैवी इक्विपमेंट एंड कमर्शियल यूजेस टू सपोर्ट क्रॉस बॉर्डर ट्रेड एंड लॉजिस्टिक्स। सो दिस इज व्हाट अतीक भाई इज ट्राइंग टू गेट एट। 416-666-2745, 416-666-2745। अभी भी आपके जाने से पहले वेरी क्विकली मैं रैप इट अप, बट एक क्विक सा सवाल है कि डाउट आना किसी के दिमाग में भी, क्योंकि जब पैसा हमारा होता है तो फिर डाउट कुछ वजह से भी आते हैं और बेवजह तो ज्यादा डाउट्स दिमाग में आते रहते हैं, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो आपको सुन रहे हैं एंड आर अ बिट स्केप्टिकल? You blame them being skeptical after so long, या नहीं?
5: नहीं सर, मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ, और मेरे साथ सबसे बड़ा अगर आपको कोई एडवांटेज मिलेगा तो वो ये मिलेगा, जस्ट बिकॉज कि मैं खुद अकाउंटेंट हूँ, आई एम अ CPA, नंबर्स मेरी स्ट्रेंथ होती है। और सनी साहब, जिस वक्त आप लैंड को अप्रूव करा रहे होते, चलिए एक मिनट को मान लीजिए जितनी बात मैंने भी पीछे की थी, मान लीजिए वो सारे फेल हो रहे हैं, यानी डेटा सेंटर भी फेल हो रहा है, ईवी प्लांट भी फेल हो रहे हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी भी फेल हो रही है, जो आप स्पेस को कन्वर्ट करते हो उस पर कहीं नहीं लिखा हुआ होता ये इस पर्पस के लिए अप्रूव की गई है, आप उसको पर्पस चेंज, फॉर एग्जाम्पल हमने डेटा सेंटर की जगह बनाई थी, डेटा सेंटर सेंटर नहीं चल पा रहा, आप उसको स्टोरेज प्लेस में कन्वर्ट कर दें, आप उसको बैंक्वेट हॉल में कन्वर्ट कर दें। तो जब मल्टीपल जोनिंग की आप अप्रूवल लेते हो, आपको सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिलता है कि देन यू हैव मल्टीपल एग्जिट प्लान्स। सो पैसे के बारे में तो आप एक मिनट को इस बात को अपने दिमाग से निकाल ही दो कि मुझे कहीं से लॉस हो सकता है, क्योंकि मल्टीपल यूजेस में आपको लॉस हो ही नहीं सकता। कान यूं पकड़ो या कान यूं पकड़ो, अप्रूवल कराएं, बनाएं और बाहर आ जाए
4: जी। एंड अतीक भाई का नंबर प्लीज नोट कर लीजिए, 416-666-2745, 416-666-2745। अब रेडियो पर ऑन एयर इतनी ही जानकारी हम दे सकते हैं आपको, बाकी फिर वही बात है, हाफ एन आवर टू वन आवर टाइम निकालिए, अतीक भाई से मुलाकात करें, आस्क हिम ऑल द क्वेश्चंस दैट यू वांट रादर देन यू नो थिंकिंग अबाउट इट कि ऐसा है वैसा है, क्योंकि जिस चीज़ की हमें पूरी नॉलेज ही नहीं होती, नेगेटिव चीज़ें दिमाग में पहले आती हैं, नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी को आने में टाइम लगता है, बट आपको ज़्यादा वक्त अब ना बर्बाद करते हुए यू नो कॉल अतीक भाई, मेक एन अपॉइंटमेंट एंड देन डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू, 416-666-2745। अतीक भाई बहुत बहुत शुक्रिया,
5: आपका शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच,
4: थैंक यू सर। 416-666-2745, 416-666-2745 अतीक भाई का नंबर है जिस पर आप कर सकते हैं कॉल। एंड ओके, एक प्यारा सा गीत है, बाहर का तापमान भी 35 डिग्री सेल्सियस हो चुका है, फील्स लाइक 45, तो अगर 37 पहुंचता है तो इसका मतलब इल फील लाइक ओवर 45 डिग्री सेल्सियस। सो या एनीवेज, चलिए धाकड़ रफ्तार की आवाज में फ्रॉम द मूवी दंगल इंजॉय करें, आते हैं बहुत ही जल्द वापस।

0: करते हैं 100% प्योर वेजिटेरियन फूड, जबरदस्त मिठाइयों का दूसरा नाम राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट।
1: की तुहानू इलेक्ट्रिशियन की लोड है सर, हाई रिस्क इलेक्ट्रिकल ते कॉल करो। हाई रिस्क क्यों? क्योंकि साडे कोल लाइसेंस नहीं है ते सी इलेक्ट्रिकल परमिट नहीं लेंदे। जाने की तुसी पक्का नहीं कह सकते कि साडा काम किन्ना कु सुरक्षित जां कानूनी है, पर एक गल पक्की है कि जदों भी असीं आवांगे असीं तुहाडा टॉयलेट जरूर वरतांगे। इसलिए हुणे कॉल करो, असीं वादा करदे हां कि तुहाडे घर नूं आग नहीं लगेगी। शायद
2: अपने परिवार की रक्षा करो, सिर्फ लाइसेंस्ड इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर ही वरतो अते यकीनी बनाओ कि वो ईएसए परमिट हासिल करन। होर जानन लई hirelicense.ca ते जाओ। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी अथॉरिटी वल्लों एक सुनेहा।
3: समर ड्राइव का एक्साइटमेंट बढ़ाएं विद टंड्रा एट डॉन वैली नॉर्थ टोयोटा। आपके नेक्स्ट एडवेंचर के लिए बिल्ट और फाइनेंसिंग सिर्फ 3.99% से। बिग सिलेक्शन, बिग समर मोमेंटम, टोयोटा करोला भी इन स्टॉक है आपकी रोजाना ड्राइव के लिए। बुक अ टेस्ट ड्राइव टुडे, वी पे टॉप डॉलर फॉर योर ट्रेड। इट्स टाइम टू टोयोटा एट डॉन वैली नॉर्थ टोयोटा.com। लोकेटेड है 3300 स्टील्स एवेन्यू ईस्ट मार्कम पर। A proud member of Vane's Auto Group.
0: Welcome back friends and you're listening to South Asian Unlimited Radio. जिंदगी में always याद रखें दोस्तों, न्यूटन का जो थर्ड लॉ है जहां पर कहते हैं कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, जिंदगी में भी कुछ इसी तरह से हमारी जिंदगी चलती है और चलेगी और चलती आई है। कर्मों के साथ ये कनेक्टेड है, जैसे हमारे कर्म होंगे, बिलीव मी व्हेन आई से दिस, वैसे ही इक्वल एंड ऑपोजिट आपके कर्मों के रिएक्शन आपको मिलेंगे। बुरा करेंगे तो बुरा ही मिलेगा। कई बार ऐसा जरूर हो जाता है कि बुरा करने वाला काफी अरसे तक बुरा करता है और उसको ऐसा लगता है कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा, मेरे साथ तो आज तक कुछ गलत नहीं हुआ तो आगे चलकर कैसे होगा। और जो बेचारा अच्छे कर्म कर रहा होता है उसको ये लगता है कि यार मुझे अच्छे कर्मों का क्या फल मिल रहा है। आई एम सफरिंग एंड द सफरिंग इज गोइंग ऑन एंड ऑन। बिलीव मी व्हेन आई से दिस, ये सेल्फ एक्सपीरियंस है और मुझे लगता है कई हम में से लोगों ने इस चीज को एक्सपीरियंस किया होगा। देर आए दुरुस्त आए, अच्छे कर्मों का फल आपको जरूर जरूर मिलेगा। बिलीव इन गॉड एंड बिलीव इन द गुड डीड्स, दे विल नॉट गो अनसीन और कहीं ना कहीं ऊपर वाला किसी ना किसी तरीके से आपकी झोली भर देगा। स्टे ब्लेस्ड।

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940, 6478631940।
1: समर ड्राइव का एक्साइटमेंट बढ़ाएं विद टंड्रा एट डॉन वैली नॉर्थ टोयोटा। आपके नेक्स्ट एडवेंचर के लिए बिल्ट और फाइनेंसिंग सिर्फ 3.99% से। बिग सिलेक्शन, बिग समर मोमेंटम, टोयोटा करोला भी इन स्टॉक है आपकी रोजाना ड्राइव के लिए। बुक अ टेस्ट ड्राइव टुडे, वी पे टॉप डॉलर फॉर योर ट्रेन। इट्स टाइम टू टोयोटा एट डॉन वैली नॉर्थ टोयोटा.com। लोकेटेड है 3300 स्टील्स एवेन्यू, ईस्ट मार्केम पर। अ प्राउड मेंबर ऑफ वेन्स ऑटो ग्रुप।
2: क्या आपकी होम और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल ड्यू है? क्या आपको तलाश है गुड रेट्स की फॉर द राइट कवरेजेस? तो आज ही कॉल करें गुरविंदर बामरा को फ्रॉम ऑल स्टेट्स मिस्सागा साउथ एजेंसी एट 289-891-0296। इट्स 289-891-0296। आज ही कॉल करें एंड यू कैन सेव एन एवरेज ऑफ $2,163 व्हेन इंश्योरिंग टू कार्स एंड अ होम। Remember, you're in good hands with Allstate.
3: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैंने आपसे कहा था अबाउट 1:30 वील हैव खास मेहमान हमारे साथ होंगी। गुरविंदर बामरा जी हमारे साथ हैं जो कि ऑल स्टेट इंश्योरेंस के साथ काम करती हैं। हम रेगुलर आपको मैसेज देते आए हैं होम एंड ऑटो इंश्योरेंस में, अगर आपकी रिन्यूअल आ रही है, यू आर लुकिंग फॉर सम ग्रेट रेट्स एंड कवरेजेस, कॉल गुरविंदर जी। शी वर्क्स विद ऑल स्टेट इंश्योरेंस एंड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स की आपकी बचत हो सकती है जब आप दो गाड़ियाँ इंश्योर करते हैं एज वेल एज अ होम। अगर आप नए ड्राइवर हैं, नए इमिग्रेंट, जस्ट गॉट योर लाइसेंस, आफ्टर द सेगमेंट टॉक टू गुरविंदर बामरा 6473032076437332307। हमारे स्पॉन्सर्स नॉट ओनली अपने अपने प्रोफेशंस को लेकर पैशनेट हैं, दे आर ऑल्सो समटाइम्स पैशनेट अबाउट थिंग्स अननोन टू अस। और फिर आपको पता चलता है कि भाई कुछ हमारे जो गुरविंदर जी की यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, शी इज स्टेपिंग इनटू अ न्यू अरीना ऑफ जिंदगी में। कई बार हम किसी चीज़ को लेकर बड़े पैशनेट होते हैं शुरुआत से और हम चाहते हैं कि भाई हमने कुछ करना है। एक बहुत बड़ा मिसेस कैनेडा का पैजेंट हो रहा है, उसको लेकर आज बातचीत करेंगे। ध्यान से सुनिए, अगर आप गुरविंदर जी को सपोर्ट करना चाहते हैं इन रिगार्ड्स टू दिस, यू कैन कॉल हर राइट आफ्टर द सेगमेंट एट 6473033207। गुरविंदर जी, आपका स्वागत है ऑन साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो।
4: थैंक यू सो मच मनी जी फॉर हैविंग मी हियर एंड गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू योर ऑडियंस। रियली अप्रिशिएट इट।
3: रियली अप्रिशिएट। और पहले तो मैं पहले ही कंग्रेचुलेशंस आपको कह दूं, बिकॉज बड़ी हिम्मत चाहिए होती है व्हेन यू डिसाइड यू वांट टू डू समथिंग दैट यू आर वेरी पैशनेट अबाउट। इस पेजेंट में आप हिस्सा ले रही हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। व्हाट इंस्पायर्ड यू गुरविंदर जी टू एंटर मिसेस कैनेडा?
4: हाँ जी, सबसे पहले तो लाइक व्हेन एट दिस एज व्हेन यू आर अ प्रोफेशनल, अ मदर एंड you know married, you have so many responsibilities, but kai baar hum apne sapne pura karna bhool jate hain. So the reason was like to motivate others as I motivated myself, that apne sapne pure karne ki koi age limit nahi hoti. So I wanted to show that dreams don't have any age limit. As a wife, mother and working professional, at any age you can fulfill your dream.
3: और इस सपने को इस सपने को पूरा करने के लिए आपने ये कदम उठाया है।
4: बिल्कुल बिल्कुल। और इस दिस इज अ बिगर प्लेटफॉर्म, तो जो भी आप करना चाहते हैं, इफ यू हैव एनी मोटिव, जो भी आप लाइफ में करना चाहते हैं, यू समटाइम्स यू नो आप बिना क्राउन के भी कर सकते हैं, बट इफ यू हैव अ प्लेटफॉर्म इट बिकम्स इजियर एंड यू कैन स्प्रेड योर वॉइस टू मोर ऑडियंस।
3: क्या बात है, दैट्स सो इंस्पायरिंग। दोस्तों, बात कर रहे हैं गुरविंदर बामरा जी से जो कि ऑल स्टेट इंश्योरेंस के साथ काम करती हैं और अक्सर आप उनकी उनके मैसेज ऑन एयर सुनते हैं जहां पर यू नो शी ऑफर्स यू ग्रेट रेट्स फॉर होम एंड ऑटो इंश्योरेंस, बट दिस इज अनदर फैसेट ऑफ अ पर्सनैलिटी, अ पर्सन दैट वी नो थ्रू रेडियो। एंड हाउ हैज योर जर्नी बिन सो फार गुरविंदर जी इन रिगार्ड्स टू ये जो आपने कदम उठाया है?
4: आई वुड would say this journey has been life changing. So this includes like some challenges physically, emotionally, and mentally, but it's a growth and it's a beautiful growth we can get at this age. So this is giving me more confidence. You know, aapka networking bahut ho jata hai. You meet different people, right? And you build meaningful friendship, I would say. So this is like a life-changing journey. So main kahungi agar if you have any dreams, you should fulfill them.
3: Bilkul.
4: Nobody can stop you.
3: Yeah, you're a living example of somebody who's a mother, who is a insurance professional, and on top of it, आपने इस जर्नी में मतलब इतनी हिम्मत दिखाई है कि उस पैशन को पूरा करने के लिए. What is your advocacy, गुरविंदर जी?
4: हाँ जी, तो इसमें हम लोगों को एक एडवोकेसी चाहिए होती है, जो मेरे पर्सनली इट्स वेरी क्लोज टू मी, इट्स लिविंग. So because it's inspired by my own experience, I had some physical injury. At time, I was not able to walk at all. It was hard for me to walk.
3: Gee.
4: I was limping. So this inspired me that maine apni advocacy choose ki hai, which is known as RISE. So I'm empowering youth to stay active and spend time outdoors. Aur abhi to और ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि यू नो डिवाइसेस, स्क्रीन एंड टेक्नोलॉजी सो एडवांस, हम कोई भी उसके बगैर नहीं रह सकता, जस्ट नॉट किड्स, राइट? सो आई हैव चोजन दैट सो आई कैन इंस्पायर किड्स टू स्टे आउटडोर. वो कुछ भी हो सकता है. आई एम अ सॉकर कोच, सो सिंस 2010 आई एम कोचिंग चिल्ड्रन. बीच में थोड़ा गैप आया ड्यू टू इंजरी, बट बिकॉज ऑफ माई हेल्दी लाइफ स्टाइल आई वॉज एबल टू ओवरकम फास्टर.
3: आप एक इंश्योरेंस प्रोफेशनल हैं, आप एक मदर हैं, एंड उसके ऊपर से आप एक प्रोफेशनल सॉकर कोच हैं, एंड इसके ऊपर से ये मिसेस कनाडा जिसमें आपने पैजन में कदम रखा है. व्हाट एडवाइस वुड यू गिव वुमेन हु थिंक इट्स टू लेट टू फॉलो देयर ड्रीम्स, जो कि अक्सर ऐसा होता है, जो हमारी बहनें हैं आपको सुन रही हैं, शायद उनको कभी ऐसा लगा होगा कि यार सिंगर बन जाते हैं, कुछ किसी ब्यूटी पैजेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, बट दे थिंक यार टू लेट हो गया, मे बी आई एम 35, मे बी आई एम 45, मे बी आई एम 50 और समथिंग, आई कैन रियली डू इट. क्या मैसेज उनको देना चाहेंगी आप?
4: बिल्कुल. तो मैं आई वुड स्टार्ट विद दिस कोट दैट इट्स नेवर टू लेट टू अचीव योर ड्रीम, नो मैटर व्हाट. अभी मैं अपनी एज तो नहीं बताने वाली, बट यस, आई एम ऑल्सो 40 प्लस, सो एज इज जस्ट अ नंबर.
3: जी,
4: राइट. आई अंडरस्टैंड एट दिस एज यू हैव योर हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट आई वुड सजेस्ट यू गो चेज योर ड्रीम्स, एंड every new chapter begins with courage, and just you have to take one step forward, and trust me, believe in yourself and you can achieve whatever you dream of.
3: Bilkul sahi baat hai, aapko sunkar
4: not let fear stop you at any time. If you start something, you know kehte hai na ki wo fir kainat bhi usko aapse milane ke liye apna pura zor laga deti hai.
3: Hum Gurvinder ji, hum pray karte hain at CMR 101.3 FM South Asian Unlimited Radio, hamare listeners, we pray ki kainat आपको आपका साथ दे और ये ब्यूटी पैजेंट आप जीत कर आए. और व्हेन एग्जैक्टली इज द डेट एंड वेयर इज इट हैपनिंग बिफोर यू लीव?
4: हाँ जी, सो हमारा जो फिनाले है दैट इज इन वैंकूवर फ्रॉम जुलाई 22nd टू जुलाई 26th.
3: वंडरफुल. एंड इफ
4: इवेंट
3: जी, अगर कोई हिस्सा बनना चाहता है इसका एज अ स्पॉन्सर, अगर कोई स्पॉन्सरशिप में इंटरेस्टेड हो, हमारे लिसनर्स आपको सुन रहे हैं राइट नाउ, दे कैन कॉन्टेक्ट यू ऑन
4: 6474033207. आई वुड बी रियली ग्रेटफुल अगर कोई इस जर्नी में मेरे को सपोर्ट करना चाहता है या इन्वॉल्व होना चाहता है, सो डेफिनेटली दे कैन कॉन्टेक्ट मी एट 303-3207.
3: जी दोस्तों, ये मौका है आपका कि आप भी गुरविंदर बामरा जी की इस मिसेस कनाडा पेजेंट वाली जर्नी का हिस्सा बन सकते हैं. यू कैन स्पॉन्सर हर एंड अपने बिजनेस को भी आप उस जरिए जो है प्रमोट करेंगे. वैंकूवर में ये पेजेंट होने वाला है एंड इट्स अ ग्रेट कॉज, यू नो, इंस्पायरिंग पीपल, मोटिवेटिंग पीपल, एंड नॉट ओनली यंग पीपल बट पीपल जिनको ऐसा लगता है कि भाई I'm past my prime, because some people might think, oh, I'm 62, you know, toh ab toh main kuch nahin kar sakta ya kar sakti. But this is a prime example. Age is no limit for something that you really, truly want to, you aspire to get and want to be a part of. Ya aap chahte hain ki aapki zindagi mein aap wo cheez ko hasil kare. Gurvinder ji, 647-303-3207, and auto and home insurance bhi agar aapne leni hai, Gurvinder ji is the person to call with Allstate Insurance. 647-303-3207. Gurvinder ji, best of luck, best wishes, God bless you, and ab jab next time baat hogi to God willing you'll be the winner.
4: Thank you so much, Sunny ji, for your wishes. And जाते जाते मैं जरूर कहना चाहूंगी आप सारे ऑडियंस को कि please never stop believing in yourself.
3: Absolutely. Thank you. God bless you. Take care.
4: Thank you. Thank you so much.
3: Thank you, ji. 647-303-3207. देखिए, हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं अपनी अपनी जिंदगी की जर्नी में कुछ ना कुछ नया करते हैं, और गुरविंदर बामरा जी एक इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट होते हुए ऑटो होम इंश्योरेंस करते करते उन्होंने अपनी, एंड शी इज़ ऑल्सो प्रोफेशनल सॉकर कोच सिंस 2010, ये करते करते उन्होंने मिसेस कनाडा के पेजेंट में जाने का सोचा, हिस्सा लेने का सोचा. सो इट्स अ ग्रेट मोटिवेशनल, आई एम ऑलवेज फॉर, यू नो, हियरिंग सम इंस्पायरिंग एंड मोटिवेशनल स्टोरीज. इट्स ऑलवेज गुड, खासकर जब हम इस ग्लोबल वक्त से गुजर रहे हैं जहां पर इतनी टेंशन्स हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं. लेट्स टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक. ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस सुल्तान जी भी आगे चलकर हमारे साथ होंगे. स्पॉन्सर्स के कुछ मैसेजेस हैं आपके लिए. बाहर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस, फील्स लाइक 45, और वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल की गेम 3 बजे शुरू होगी. सबकी निगाहें अब उस गेम पर ही हैं.
1: जेनेसिस मार्कम पर लग्जरी मिलती है एक एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा. Lease कीजिए beautifully designed 2026 G70 सिर्फ 1.9% से अप टू 39 months. या lease कीजिए 2026 GV70 सिर्फ 2.9% से. Book your test drive today. Visit genesismarkham.ca, located at Woodbine Avenue and John Street, Markham. Genesis Markham, doing luxury your way. A proud member of Vane's Auto Group.

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940, 6478631940।
1: हर एक ग्रेट जर्नी शुरू होती है एक सही पार्टनर के साथ। वेन्स ऑटो ग्रुप में हमारे डीलरशिप्स का वाइड नेटवर्क डिवर्स कम्युनिटीज को प्राउडली सर्व करता है। एक्सपर्ट कार बाइंग गाइडेंस, प्रीमियम सर्विस और ऐसा सपोर्ट जो आपकी लैंग्वेज समझे। हर डीलरशिप का प्रॉमिस एक ही है, ट्रस्टेड केयर, कंसिस्टेंट सर्विस और कंप्लीट ऑटोमोटिव सपोर्ट। फ्रॉम फर्स्ट ड्राइव टू लाइफ टाइम केयर, वेन्स ऑटो ग्रुप इज ऑलवेज देयर। विजिट veinsautogroup.com।
2: एक घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, एक घर सिर्फ सपनों से नहीं बनता, एक घर बनता है इरादों से, जी जान मेहनत से। अपने इरादों को एक नया मुकाम दें, अपनी मेहनत को अंजाम दें। कॉल करें रॉयल लेपेज क्रेडिट वैली रियल्टी के राज जोशी को, जो काम करते हैं आपके लिए विद अटमोस्ट ट्रांसपेरेंसी एंड डेडिकेशन। 6478661086, 6478661086, राज जोशी, नाम ही काफी।
3: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर। और हम पहुंच चुके हैं ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट ऑफ द कॉर्नर ऑफ बोवेड एंड चिंकूसी इन ब्रैम्पटन। 905-450-2828 इज द नंबर। टीवी अप्लायंस लॉन्ड्री के सुल्तान जी हमारे साथ हैं। स्टोर इज ओपन 7 days a week, 11 AM to 7 PM। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन की ओर रुख करते हैं, एंड दैट इज द टीवी सेक्शन। वो इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट आई फील इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सुल्तान जी आपका स्वागत है।
4: थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया सनी भाई। और इम्पोर्टेंट मैसेज आपने इसलिए कहा है या सेक्शन की बात की है क्योंकि टीवीज में बहुत सारे टीवीज ऐसे हैं जो कि इस वक्त डिमांड में है, खासतौर पे बिग स्क्रीन टीवी की अगर बात करें या लेटेस्ट अपडेटेड टेक्नोलॉजी की बात करें। मिनी एलईडी के साथ अगर लेटेस्ट अपडेटेड टेक्नोलॉजी आपको मिले और वो भी डिस्काउंटेड प्राइसेस पे, तो फिर डेफिनेटली दिल करता है कि अपने टीवी को बिग स्क्रीन टीवी के साथ अपग्रेड किया जाए, और वो भी $2300 वाला 85 इंच मिनी एलईडी आपको मिले ओनली 1599 में। तो 1599 भी कस्टमर 6 मंथ में पे करेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं है, $700 की सेविंग भी हो गई और 6 मंथ इजी पेमेंट प्लान भी मिल गया। इसी तरह 75 इंच $1200-1300 वाला सिर्फ 899 में मिलेगा, इसमें $400-500 की सेविंग भी हो गई और 899 6 मंथ में पे करेंगे जी। 65 इंच 699 में मिलेगा और 55 इंच ओनली 399 में ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस बोवेड एंड चिंकूजी वाली लोकेशन पे। फिर जब बिग स्क्रीन की बात करते हैं तो 98 इंच, ये भी सैमसंग का 98 इंच है जो कि $3500 वाला 1999 में मिलेगा, इसमें $1500 कस्टमर सेव भी करेंगे और 1999 6 मंथ में पे करेंगे जी। फ्री होम डिलीवरी है, इसके लिए आपको विजिट करना है BramptonAppliances.com या हमारी वेबसाइट पे, या फिर 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट जस्ट ईस्ट ऑफ चिंकूजी ऑन बोवेड है ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, 905-450-2828, 905-450-2828 जी।
3: 905-450-2828 ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंस पर। टीवीज पर अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग डील्स चल रही हैं, फायदा उठाइए, पहुंच जाइए जल्द से जल्द। सुल्तान जी साथ ही साथ टीवीज के साथ साथ हम अप्लायंस लॉन्ड्री सेक्शंस की भी बात करना चाहेंगे जहां पर आपने अमेजिंग डील्स लगाई हैं। कुछ रेंटल प्रॉपर्टीज के लिए कई बार पीपल आर लुकिंग आउट फॉर सम बेस्ट डील्स, और कई बार ऐसा होता है हम अपने घर के लिए सबसे बेस्ट टीवी अप्लायंस लॉन्ड्री में चीजें चाहते हैं, तो मैं चाहूंगा कि ओवरऑल आप इस पे रोशनी डालें।
4: बिल्कुल जी, अगर तो बंडल पैकेज लेने हैं, किसी के घर की क्लोजिंग आ रही है तो उन्हें तो ऑलमोस्ट $2000 की सेविंग किचन अप्लायंसेस में होगी, क्योंकि $5000 वाला 36 इंच वाइड फ्रेंच डोर फ्रिज है, स्मूथ टॉप इलेक्ट्रिक स्टोव है, टॉल टॉप की डिशवाशर है, 3 पीस का बंडल पैकेज स्टेनलेस स्टील $2999 में मिलेगा, $2000 कस्टमर सेव भी करेंगे और 2999 6 मंथ में पे करेंगे जी, कोई इंटरेस्ट नहीं है। बंडल पैकेज लेना है जी, जिसमें आपको बिल्ट इन कुकटॉप, बिल्ट इन वॉल ओवन, बिल्ट इन माइक्रोवेव, बिल्ट इन डिशवाशर और बिल्ट इन काउंटर डेप्थ फ्रिज चाहिए, तो पूरे का पूरा बिल्ट इन किचन $12,000 वाला $6,900 में लेके आप ऑलमोस्ट मोर देन $5,000 की सेविंग करेंगे बिल्ट इन किचन में। इसी तरह हमारे पास लॉन्ड्री में जी, जहां टॉप लोड वॉशर एंड ड्रायर $16,1700 वाला $1099 में पेयर मिलेगा आपको, वॉशर ड्रायर दोनों $1099 में, वहां फ्रंट लोड वॉशर एंड ड्रायर, वॉशर भी स्टीम और ड्रायर भी स्टीम फीचर के साथ, प्लैटिनम सीरीज प्लैटिनम कलर में $2500 वाला $1799 में लेके आप $800 फ्रंट लोड वॉशर एंड ड्रायर पे सेव करेंगे, और $1799 भी 6 मंथ में पे करना है, कोई इंटरेस्ट नहीं है जी। इसके लिए विजिट करें जी 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट, जस्ट ईस्ट ऑफ चंकूजी ऑन बोवेड है, ब्रैम्पटन अप्लाइंसेस डॉट कॉम हमारी वेबसाइट है जी, 9054502828 हमारा नंबर है। सिंगल पीस फ्रिज लेना है 30 इंच अपराइट फ्रीजर के साथ फ्रिज $1400 वाला $799 में मिल जाएगा। सिंगल पीस वॉशर चाहिए आपको $1000 वाली $599 में मिल जाएगी। सिंगल पीस ड्रायर चाहिए आपको $900 वाला $499 में मिल जाएगा। फ्री होम डिलीवरी 6 मंथ नो इंटरेस्ट पेमेंट प्लान है जी। पहुंचना है आपको 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट, जस्ट ईस्ट ऑफ चंकूजी ऑन बोवेड, ब्रैम्पटन अप्लाइंसेस डॉट कॉम हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करें, वहां आपको वेयरहाउस क्लियरेंस सेल का आइकॉन मिलेगा, जब आप उसे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ एक आइटम 40% और कुछ एक 50% डिस्काउंट पे मिलेंगी। फॉर एग्जांपल डिशवॉशर चाहिए स्टेनलेस स्टील का $1000 वाला डिशवॉशर, वहां आपको 50% डिस्काउंट पे $499 में मिलेगा। ब्रैम्पटन अप्लाइंसेस डॉट कॉम 9054502828 905-450-2828 जी।
3: बिल्कुल जी, 905-450-2828 ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस। सुल्तान जी बहुत बहुत शुक्रिया।
4: थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया
3: जी। 9054502828।
5: Hyundai का नेक्स्ट स्टार्ट्स नाउ सेल्स इवेंट चल रहा है डॉन वैली नॉर्थ Hyundai पर। अब सिक्योर करें साल के लोएस्ट रेट्स। हर कस्टमर क्वालिफाई करता है अप टू 1% रेट रिडक्शन के लिए या कैश परचेस पर $500 का बेनिफिट। ऑफर सिर्फ July 31st तक है। एट डॉन वैली नॉर्थ Hyundai वी स्पीक योर लैंग्वेज। विजिट डॉन वैली नॉर्थ Hyundai.com या वुडबाइन एवेन्यू एंड डेनिसन स्ट्रीट मार्कम पर।
6: डॉन वैली नॉर्थ Hyundai,
5: a proud member of Wayne's Auto Group.

0: इमिग्रेशन
1: कम्युनिटी का जाना बचाना और भरोसेमंद नाम मनन गुप्ता आपके लिए लाए हैं कैनेडियन इमिग्रेशन की प्रोफेशनल सर्विसेज। कॉल मनन गुप्ता 416-451-0040 दैट इज 416-451-0040 और विजिट skylakeimmigration.com
0: skylakeimmigration।
2: You're listening to the Sunny Joshi Show on South Asian Unlimited Radio, CMR 101.3 FM.

मुलाकात आपसे होगी कल। बाहर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस, फील्स लाइक 45। ब्यूटीफुल सॉन्ग बेनी दयाल की आवाज में, लोचाई उल्फत। आई विल सी यू टुमारो एट 12। टिल देन गुड बाय एंड गॉड ब्लेस लेडीज एंड जेंटलमैन।

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm. The Lovey Dovey Show, driving you home. A melody above and beyond. Brought to you by Radio Toronto, Canada. Monday to Friday.
2: क्या आप सुन रहे हैं?
3: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह जीटीए में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
3: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवर्टाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए।
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
4: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639। जब हम

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
3: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
4: ख्वाब पूरा हो सकता है, आपका बच्चा भी अब डॉक्टर बन सकता है।
5: अपने बेटे या बेटी को मोस्ट अफोर्डेबल रिकॉग्नाइज्ड ऑल सेंट्स यूनिवर्सिटी डोमिनिका में इनरोल करवाएं,
4: उसे डॉक्टर बनाएं। 20 इयर्स ऑफ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, नो एमकैट रिक्वायर्ड,
5: 90% पास रेट।
4: कॉल नाउ 416-743-9222।
5: 416-743-9222।
4: और विजिट allsaintsuniversity.org। All Saints University से डॉक्टर बनने के बाद आपका बच्चा अमेरिका, कनाडा, यूरोप और किसी भी मुल्क में एज अ डॉक्टर काम कर सकेगा।
6: मम्मा, व्हाई डोंट यू गो टू वर्क नाउ?
7: बेटा, तुझे क्या बताऊं कि मेरी जिंदगी ही रुक गई है। एक महीने से काम पर नहीं गई और अब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम डिनाई कर रही है।
8: जिंदगी रुकती नहीं, बस रास्ता बदलना पड़ता है। कॉल सैयद एम रजा, आर कम्युनिटी इंजरी लॉयर, इंजरी लॉ के एक्सपर्ट लॉयर।
7: क्या वो मदद करेंगे?
8: मदद करेंगे, उन्होंने एक क्लाइंट को $2 मिलियन की एग्रीगेट सेटलमेंट दिलवाई। तुम्हारे लिए भी लड़ेंगे। इनके पास 12 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है एंड नो फी अंटिल विक्ट्री।
9: कार एक्सीडेंट या स्लिप एंड फॉल, डोंट कॉल एनी थर्ड पार्टी एजेंट, डायरेक्टली कॉल सैयद एम रजा ऑफ सैयद लॉ। सैयद लॉ से सैयद एम रजा,
8: जहां सिर्फ वादे नहीं रिजल्ट मिले।
9: कॉल सैयद एम रजा 416-937-5046, दैट इज 416-937-5046।
10: ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਸਨਗਲਾਸਿਸ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਸਟੋਰ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ।
11: ਸੋਹਣੇ ਫੇਸ ਵਾਲੀਏ, ਉੱਚੀ ਹੀਲ ਵਾਲੀਏ, ਗੁੱਚੀ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਪਾਵੇਂ ਦਿਲ ਤੇ ਥਵਾਰੀਏ।
12: ਫੋਰ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮਸ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸਨਗਲਾਸਿਸ, ਵਿਜ਼ਿਟ kandaoptical.com ਔਰ ਕਾਲ 416-922-5263। ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ, ਦ ਨੇਮ ਯੂ ਕੈਨ ਟਰਸਟ।
13: The Lovey Dovey Show, driving you home, a melody above and beyond. Brought to you by Radio Toronto Canada, Monday to Friday,

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह जीटीए में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
3: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
4: सहज आयुर्वेदिक हर्बल कंसल्टेशन सेंटर। हम हमारे खानदान से नब्ज देखकर सारी बीमारियों का इलाज जड़ी बूटियों के द्वारा करते हैं। हमारे क्लाइंट्स को हमारे इलाज से बहुत फायदा हुआ है। अस्थमा, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम, कमर या घुटनों में दर्द, ऑर्थराइटिस, हेयर प्रॉब्लम, गैस प्रॉब्लम, अल्सर, लेडीज प्रॉब्लम, वेट लॉस, सोराइसिस और बहुत सी बीमारियों का इलाज जड़ से करते हैं। कॉल वैतिरत्ना पीवी राज ब्रैम्पटन। कॉल 647-327-8188। इट्स 647-327-8111।
5: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
6: कल किसने देखा है जी, लाइफ कभी भी बदल सकती है, इसलिए आज प्लानिंग कीजिए ताकि कल आप टेंशन फ्री रहें। जॉब लॉस, डिसेबिलिटी या फिर लाइफ की कोई भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, शबाना की फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्लान इज द सॉल्यूशन। लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस, RESP, RDSP, सब कुछ एक ही जगह। शबाना,
7: अवार्ड विनिंग इंश्योरेंस प्रोफेशनल शबाना के लंबे एक्सपीरियंस से अब होगी आपकी फैमिली की कंप्लीट केयर, क्योंकि शबाना इज ऑलवेज देयर। 6474-6479977224।
8: शगन का दिन चढ़ेगा, सजना घर आएंगे, टोली लेकर जाएंगे, दुल्हन सजेगी, शहनाई भी बजेगी, लम्हा के संग हर घड़ी यादगार बनेगी। शादी हो या थीम शो, कॉर्पोरेट पार्टी हो या कोई खास इवेंट, ये पल तभी यादगार बनते हैं जब प्लानिंग हो परफेक्ट और एग्जीक्यूशन हो बेस्ट। और ये सब आपको मिलता है लम्हा इवेंट्स के साथ। डेकोरेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक, लाइट से लेकर मेहमानों की मुस्कान तक, सब कुछ बेमिसाल सेलिब्रेशन जो याद रहे सालों साल। तो इवेंट की डेट आप फिक्स कीजिए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। लम्हा इवेंट्स, हर पल मुस्कुराइए, जिंदगी मनाइए। कॉल 416-522-0543।
9: Another Don Clean with the Don Dux.
10: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
11: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
10: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
11: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
10: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
11: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
10: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
9: Dawn Platinum, the better grease getter.
12: The Lovey Dovey Show, driving you home, a melody above and beyond. Brought to you by Radio Toronto Canada, Monday to Friday,

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
3: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा, कॉल 416-303-3000।

0: रजाव सैयद लॉ, सैयद लॉ से सैयद एम रजाव,
1: जहां सिर्फ वादे नहीं रिजल्ट मिले।
0: कॉल सैयद एम रजा 416-937-5046, दैट इज 416-937-5046।
2: लवी डवी सॉन्ग ऑफ द डे इज ब्रॉट टू यू बाय रूहानी कॉलेज। आंखों में बसा है डॉक्टर बनने का सपना या सोच रहे हैं मसाज थेरेपिस्ट का शानदार करियर हो अपना, तो बस आपको है रूहानी कॉलेज ही चुनना। बेहतरीन पढ़ाई से शानदार कमाई वाले करियर के सफर में आपका हम सफर रूहानी कॉलेज। रूहानी कॉलेज, यहाँ सपने सच में सच होते हैं। 905-731-2555, 905-731-2555, रूहानी कॉलेज।

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
3: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। It's 416-303-3639.
4: Another Don Clean with the Don Ducks.
5: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
6: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
5: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
6: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
5: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
6: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
5: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
4: Dawn Platinum, the better grease getter.
1: ख्वाब पूरा हो सकता है, आपका बच्चा भी अब डॉक्टर बन सकता है।
2: अपने बेटे या बेटी को मोस्ट अफोर्डेबल रिकॉग्नाइज्ड ऑल सेंट्स यूनिवर्सिटी डोमिनिका में इनरोल करवाएं,
1: उसे डॉक्टर बनाएं। 20 इयर्स ऑफ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, नो एमकैट रिक्वायर्ड,
2: 90% पास रेट।
1: कॉल नाउ 416-743-9222
2: 416-743-9222
1: और विजिट allsaintsuniversity.org। All Saints University से डॉक्टर बनने के बाद आपका बच्चा अमेरिका, कनाडा, यूरोप और किसी भी मुल्क में एज अ डॉक्टर काम कर सकेगा।
7: सहज आयुर्वेदिक हर्बल कंसल्टेशन सेंटर। हम हमारे खानदान से नब्ज देखकर सारी बीमारियों का इलाज जड़ी बूटियों के द्वारा करते हैं। हमारे क्लाइंट्स को हमारे इलाज से बहुत फायदा हुआ है। अस्थमा, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम, कमर या घुटनों में दर्द, ऑर्थराइटिस, हेयर प्रॉब्लम, गैस प्रॉब्लम, अल्सर, लेडीज प्रॉब्लम, वेट लॉस, सोराइसिस और बहुत सी बीमारियों का इलाज जड़ से करते हैं। कॉल वैतिरत्ना पीवी राज ब्रैम्पटन। कॉल 647-327-8188। इट्स 647-327-8111।
8: The Lovey Dovey Show, driving you home, a melody above and beyond. Brought to you by Radio Toronto Canada, Monday to Friday,

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह जीटीए में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
3: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
4: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
5: कल किसने देखा है जी, लाइफ कभी भी बदल सकती है, इसलिए आज प्लानिंग कीजिए ताकि कल आप टेंशन फ्री रहें। जॉब लॉस, डिसेबिलिटी या फिर लाइफ की कोई भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, शबाना की फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्लान इज द सॉल्यूशन। लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस, RESP, RDSP, सब कुछ एक ही जगह। शबाना
6: अवार्ड विनिंग इंश्योरेंस प्रोफेशनल शबाना के लंबे एक्सपीरियंस से अब होगी आपकी फैमिली की कंप्लीट केयर, क्योंकि शबाना इज ऑलवेज देयर।
7: 4-7-9-9-7-7-2-2-4-6-4-7-9-9-7-7-2-2-4 पर जिन्नी वैरायटी कांडा ऑप्टिकल दे कोल है, ओ दाता जवाब है नहीं।
8: सोने फेस वाली है, उच्ची हील वाली है, गुच्ची वाला सच पावे दिल ते थवारी है।
7: फॉर अमेजिंग डिजाइनर फ्रेम्स एंड डिजाइनर सनग्लासेस विजिट kandaoptical.com और कॉल 416-922-5263। कांडा ऑप्टिकल, द नेम यू कैन ट्रस्ट।
9: The Lovey Dovey Show, driving you home, a melody above and beyond. Brought to you by Radio Toronto Canada, Monday to Friday,

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
0: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
0: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
2: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
3: शगन का दिन चढ़ेगा, सजना घर आएंगे, टोली लेकर जाएंगे, दुल्हन सजेगी, शहनाई भी बजेगी, लम्हा के संग हर घड़ी यादगार बनेगी। शादी हो या थीम शो, कॉर्पोरेट पार्टी हो या कोई खास इवेंट, ये पल तभी यादगार बनते हैं जब प्लानिंग हो परफेक्ट और एग्जीक्यूशन हो बेस्ट। और ये सब आपको मिलता है लम्हा इवेंट्स के साथ। डेकोरेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक, लाइट से लेकर मेहमानों की मुस्कान तक, सब कुछ बेमिसाल सेलिब्रेशन जो याद रहे सालों साल। तो इवेंट की डेट आप फिक्स कीजिए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। लम्हा इवेंट्स, हर पल मुस्कुराइए, जिंदगी मनाइए। कॉल 416-522-0543।
4: सहज आयुर्वेदिक हर्बल कंसल्टेशन सेंटर। हम हमारे खानदान से नब्ज देखकर सारी बीमारियों का इलाज जड़ी बूटियों के द्वारा करते हैं। हमारे क्लाइंट्स को हमारे इलाज से बहुत फायदा हुआ है। अस्थमा, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम, कमर या घुटनों में दर्द, ऑर्थराइटिस, हेयर प्रॉब्लम, गैस प्रॉब्लम, अल्सर, लेडीज प्रॉब्लम, वेट लॉस, सोराइसिस और बहुत सी बीमारियों का इलाज जड़ से करते हैं। कॉल वैतिरत्ना पीवी राज ब्रैम्पटन। कॉल 647-327-8188। इट्स 647-327-8111।
5: Lovey Dovey Show, driving you home, a melody above and beyond. Brought to you by Radio Toronto Canada, Monday to Friday,

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
0: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
0: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
2: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
2: The opinions stated by the various contributors to Sean Express are not to be considered as endorsed by Sean Express or CMR. They represent the opinions of the individual or business in question. All information given on this radio show is for education and entertainment purpose only. Moreover, the health tips given on this radio show should be cleared with a physician or nutritionist. We make no guarantee about the accuracy of information presented on this show.
3: Attention please, Sean Express, Masiki Rail Gari, CMRP Station, 101.3 FM par aaj hi hai.
4: जन में सुनाने आई, सुबह मनाने आई, चटपटे गॉसिप के साथ मस्ती लुटाने आई. आई Sean Express, मस्ती की रेल गाड़ी. आई Sean Express, मस्ती की रेल गाड़ी.
5: Sean Express, मस्ती की रेलगाड़ी.
6: एक ड्राइव इन मस्ती शो जिसमें है आज के जमाने के टॉप सॉन्ग्स, ताजा तरीन खबरें और चटपटी गॉसिप्स जो आप ड्राइव को बनाएंगे पावर ड्राइव. Sean Express, मस्ती की रेलगाड़ी. ड्राइव टाइम शो विद शालिनी.
5: ब्रॉट टू यू बाय Sean Media.

पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812।

0: जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 9052061008, दैट इज 9052061008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम।
1: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
2: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: Hum honge aapke saath hamesha.
2: हैशटैग होम्स एंड राहुल कश्यप आपके लिए लेकर आए हैं ब्रैम्पटन एंड कैलेडन बॉर्डर पर एट मेफील्ड एंड गोर फ्री होल्ड टाउन्स फ्रॉम मिड 700s, सेमीज फ्रॉम मिड 800s एंड डिटैच्ड होम्स फ्रॉम मिड 900s. मास्टर प्लान कम्युनिटी ऑफ 2500 होम्स विद क्रिकेट पिच, टेनिस, बास्केटबॉल एंड पिकलबॉल कोर्ट्स, डॉग पार्क एंड किड्स स्प्लैश पैड्स एज नेबरहुड अमेनिटीज. ओनली 10% डिपॉजिट ओवर 365 डेज एंड क्लोजिंग लेटर 2027 टू अर्ली 2028. To book your lots, call Rahul Kashyap 647-993-4844. 647-993-4844.
3: Another Don Clean with the Don Ducks.
4: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
5: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
4: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
5: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
4: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
5: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
4: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
3: Dawn Platinum, the better grease getter.
6: संजीव पुरी ऑफ स्टार लाइफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंक एक ब्रोकर है और डील करते हैं सारे मेजर कंपनीज के साथ. ही कैन शॉप अराउंड फॉर यू फॉर द बेस्ट प्लान्स ऑफ इंश्योरेंस दैट विल सूट योर बजट एंड नीड्स. संजीव पुरी इंश्योरेंस प्लान्स में तो माहिर है ही, लेकिन हाई रिस्क इंश्योरेंस प्लान्स के बेस्ट रेट दिलाने में बहुत ही माहिर है. तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, बाईपास सर्जरी, लिवर या किडनी के इश्यूज हो या इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी इंश्योरेंस डिक्लाइन की है, तो संजीव पुरी को आप कॉल करेंगे फ्री कोट के लिए. और अगर आपको लगता है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी के बहुत हाई प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो पॉलिसी रिव्यू करवाने के लिए भी संजीव पुरी 416-890-3232, 416-890-3232.
7: घर या बिजनेस के लिए चाहिए पैटियो कवर, परगोला, बेसमेंट कैनोपी या रिट्रैक्टेबल ऑनिंग्स,
8: तो कॉल करें कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, ब्रैम्पटन का ट्रस्टेड नाम फॉर रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स.
7: बेस्ट क्वालिटी, स्टाइलिश डिजाइन और ग्रेट प्राइसिंग, चाहे सनरूम हो या हो कस्टम कैनोपी, सब कुछ मिलेगा यहाँ.
8: फ्री कोटेशन के लिए अभी कॉल करें 416-831-4790, दैट्स 416-831-4790, या पहुँचो 24 रीगन रोड ब्रैम्पटन.
7: कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, बनाए आपकी स्पेस सुंदर और फंक्शनल.
9: TD Mosaic Festival is back for 21st year, July 31st and August 1st at Celebration Square, Mississauga, the biggest South Asian artist lineup of the year. Sufi Queen Sanam Marvi from Pakistan, Indian Idol Season 14 winner Vaibhav Gupta from India, Danny to Dublin from Vancouver, Shalom Xavier's Fusion, Ali Kazmi, Bollywood Dance School Canada, Jadu Entertainment, Rising Star Finalists, and the 2026 Star. Popular South Asian restaurants and food trucks, Vendors Bazaar, Visual Arts, Media Arts, Free Children Arts and Balloon Making Workshops, Children's Mardi Gras Parade with Marching Band. Completely free admission for the whole family. For more information, visit mosaicfest.com.
2: ध्यान से सुनिए, आपके लिए एक अच्छी खबर है. गवर्नमेंट आपको स्टडी करने के लिए फंडिंग प्रोवाइड कर रही है जो ग्रांट और लोन के कॉम्बिनेशन में मिलेगी. अगर आप पीआर या कनेडियन सिटीजन हैं, आपकी मिनिमम एजुकेशन ग्रेड 12 है, नो बैंक्रप्सी और क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो आप एलिजिबल हो सकते हैं. नो क्रेडिट चेक, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली आप ऑनलाइन स्टडी भी कर सकते हैं. ग्रांट और लोन का कॉम्बिनेशन 31 जुलाई तक अवेलेबल है. देर ना करें, आज ही कॉल करें 416-315-2020. That's 416-315-2020.
10: Sean Express, yani aap aur hum, aur is gaane mein hai kuch dum.
2: This part of the show is brought to you by Win Lifetime. Earn consistent money by working for only 90 minutes a day. Duniya bhar mein kahin se bhi kaam kijiye with basic computer knowledge. Attend kijiye free no obligation seminar this Saturday at 1:30 and change your life. Call 905 905-206-1008, 905-206-1008 or visit winlifetime.com.

0: जी हाँ, यहाँ त्योहार पूजा पाठ और सजावट का सामान, मंदिर, मूर्तियाँ, हवन सामग्री, फेंग शुई वास्तु आइटम्स, रिलीजियस बुक्स,
1: यानी पूरे इंडिया का कल्चर एक ही छत के नीचे।
0: 31 मेलेनी ड्राइव, ब्रैम्पटन। कॉल 905-458-6808
1: और विजिट पूजा हट.com।
2: इंडिया सजावट एंड पूजा हट।
0: जय श्री राम।

0: जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 905-206-1008, दैट इज 905-206-1008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम।
1: ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਸਨਗਲਾਸਿਸ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਸਟੋਰ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ।
2: ਸੋਹਣੇ ਫੇਸ ਵਾਲੀਏ, ਉੱਚੀ ਹੀਲ ਵਾਲੀਏ, ਗੁੱਚੀ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਪਾਵੇ ਦਿਲ ਤੇ ਥਵਾਰੀਏ।
1: ਫॉर ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮਸ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸਨਗਲਾਸਿਸ, ਵਿਜ਼ਿਟ kandaoptical.com ਔਰ ਕਾਲ 416-922-5263। ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ, ਦਿ ਨੇਮ ਯੂ ਕੈਨ ਟਰਸਟ।
3: अगर आप लंबे वक्त से किसी हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान हैं और एक नेचुरल आयुर्वेदिक सॉल्यूशन की तलाश में हैं, तो आइए सहज आयुर्वेदिक हर्बल कंसल्टेशन सेंटर पर। यहाँ खानदानी परंपरा के अनुसार नब्ज देखकर कई तरह की बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से किया जाता है। इलाज से बहुत सारे लोगों को राहत और फायदा मिला है, चाहे एस्मा, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम्स, कमर या घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, हेयर प्रॉब्लम्स, गैस, अल्सर, लेडीज प्रॉब्लम्स, वेट लॉस, सोराइसिस या फिर किसी अन्य हेल्थ इश्यू की बात हो, बीमारियों का जड़ से इलाज करने में मदद मिलती है। आज ही कॉल करें वैद्य रत्न पीवी राज को, लोकेटेड इन ब्रैम्पटन, 6473278111, 6473278111। ध्यान से सुनिए, आपके लिए एक अच्छी खबर है। गवर्नमेंट आपको स्टडी करने के लिए फंडिंग प्रोवाइड कर रही है, जो ग्रांट और लोन के कॉम्बिनेशन में मिलेगी। अगर आप PR या कनेडियन सिटीजन हैं, आपकी मिनिमम एजुकेशन ग्रेड 12 है, नो बैंक्रप्सी और क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो आप एलिजिबल हो सकते हैं। नो क्रेडिट चेक, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली आप ऑनलाइन स्टडी भी कर सकते हैं। ग्रांट और लोन का कॉम्बिनेशन 31 जुलाई तक अवेलेबल है। देर ना करें, आज ही कॉल करें 416-315-2020, that's 416-315-2020।
4: Sean Express, गानों की स्वीट डिश।
3: ये सेगमेंट आप तक पहुंचा रहे हैं यश विंडोज एंड डोर्स। दोस्तों, अगर आप ढूंढ रहे हैं वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के विंडोज एंड डोर्स रीजनेबल प्राइस में, तो यश विंडोज एंड डोर्स सर्विसेज देते हैं ऑल ओवर ऑन्टारियो। खुद ही विंडोज एंड डोर्स मैन्युफैक्चर करते हैं और उनके एक्सपर्ट इंस्टॉलर टीम ही प्रोफेशनली इंस्टॉल करती है। नो मिडल मैन, नो कॉम्प्रोमाइज, सीधे फैक्ट्री से आपकी प्रॉपर्टी तक। स्टाइल, लुक्स, क्वालिटी, सिक्योरिटी, ड्यूरेबिलिटी, एनर्जी एफिशिएंसी, सब कुछ माइंड ब्लोइंग। स्टाइल, सेफ्टी, सेविंग एक साथ। और अब सुनिए बड़ी खबर, फ्रेंचाइज ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, ज्वाइन द ग्रोइंग टीम ऑफ यश विंडोज एंड डोर्स, 416-732-3600, दैट्स 416-732-3600।

0: विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812। इस तेज रफ्तार जिंदगी में लीजिए एक लवली ब्रेक। चाहे बैक होम जाना हो या करनी हो दुनिया भर की सैर, अपने ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस को बनाइए लवली विद लवली फेयर्स। वेकेशन पैकेजेस, टूर्स या फ्लाइट्स, लवली ट्रैवल्स इज ऑलवेज रेडी टू मेक योर ट्रिप मेमोरेबल एंड अफोर्डेबल। कहीं और से टिकट बुक करने से पहले एक बार लवली फेयर जरूर चेक करें। लवली ट्रैवल्स, 80 मैरिटाइम बुलेवार्ड, यूनिट नंबर 54 इन ब्रैम्पटन। कॉल 905-458-5300, 905-458-5300.
1: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
2: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165. Hum honge aapke
1: saath hamesha. वीरे वधिया फर्नीचर ली किथे जावां
2: भाई चार लोकेशन तो देन सेवावां बस ऐसे करके ही मैं ता मिड्डा फर्नीचर ते ही जावां
3: लेटेस्ट डिजाइन एंड हाई एंड फर्नीचर विद बेस्ट सर्विसेज मार्केट दे प्राइस नालो 10-30% सस्ती प्राइस दा दावा कर देने
2: मिड्डा फर्नीचर आओ घर दफ्तर नु सजाओ ब्रैम्पटन स्कारब्रो मिसिसागा ते कैम्ब्रिज लोकेशन ते आओ ता सही
3: आजमाओ ता सही अपना बनाओ ता सही मिड्डा फर्नीचर कॉल करो 416-901-2810 416-901-2810 10 Midda Furniture
4: Shagan ka din chadhega Sajna ghar aayenge Doli lekar jayenge Dulhan sajegi Shehnai bhi bajegi Lamha ke sang Har ghadi yaadgar banegi Shaadi ho ya theme show Corporate party ho ya koi khas event Ye pal tabhi yaadgar bante hain Jab planning ho perfect Aur execution ho best Aur ye sab aapko milta hai Lamha events ke saath Decoration se lekar entertainment tak Lights se lekar mehmano ki muskaan tak Sab kuch bemisaal Celebration jo yaad rahe saalon saal To event ki date aap fix kijiye Baaki sab hum par chhod dijiye Lamha events हर पल मुस्कुराइए जिंदगी मनाइए कॉल 416-522-0543
5: आप रिश्ते को चलाना चाहते हैं या फिर घर बसाना चाहते हैं लेना है कोई बहुत बड़ा फैसला या करना है कारोबार स्ट्रेस और एंजाइटी ने जिंदगी को हिला के रख दिया है या फिर शादीशुदा लाइफ में बहुत सी परेशानियों का सामना है तो ये सब सितारों की वजह से भी हो सकता है आप सबसे बात करके डिसअपॉइंट हो गए हैं तो अब घबराने की जरूरत नहीं बात कीजिए फिफ्थ जनरेशन एस्ट्रोलॉजर मास्टर धनिक महाराज से 437-829-6023 इट्स 437-829-6023 मास्टर धनिक महाराज

0: जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 9052061008, दैट इज 9052061008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम।
1: हैशटैग होम्स एंड राहुल कश्यप आपके लिए लेकर आए हैं ब्रैम्पटन एंड कैलेडन बॉर्डर पर एट मेफील्ड एंड गोर

0: freehold towns from mid-700s, semis from mid-800s and detached homes from mid-900s. Master plan community of 2,500 homes with cricket pitch, tennis, basketball and pickleball courts, dog park and kids splash pads as neighborhood amenities. Only 10% deposit over 365 days and closing later 2027 to early 2028. To book your lots, call Rahul Kashyap 647-993-4844. 647-993-4844. ध्यान से सुनिए, आपके लिए एक अच्छी खबर है। गवर्नमेंट आपको स्टडी करने के लिए फंडिंग प्रोवाइड कर रही है जो ग्रांट और लोन के कॉम्बिनेशन में मिलेगी। अगर आप पीआर या कनेडियन सिटीजन हैं, आपकी मिनिमम एजुकेशन ग्रेड 12 है, नो बैंक्रप्सी और क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो आप एलिजिबल हो सकते हैं। नो क्रेडिट चेक, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली आप ऑनलाइन स्टडी भी कर सकते हैं। ग्रांट और लोन का कॉम्बिनेशन 31 जुलाई तक अवेलेबल है। देर ना करें, आज ही कॉल करें 416-315-2020. That's 416-315-2020.
1: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMRFM 101.3. शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस।
0: This part of the show is brought to you by Win Lifetime. Earn consistent money by working for only 90 minutes a day. Duniya bhar mein kahin se bhi kaam kijiye with the basic computer knowledge. Attend kijiye free no obligation seminar this Saturday at 1:30 and change your life. Call 905-206-1008, 905-206-1008 or visit winlifetime.com.

0: टाइम। जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 9052061008, दैट इज 9052061008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम।
1: मेडिकल इंश्योरेंस फॉर न्यू इमिग्रेंट्स, विजिटर्स इंश्योरेंस एंड सुपर वीजा इंश्योरेंस के बेस्ट रेट एंड बेस्ट प्लान के लिए एक ही नाम, संजीव पुरी।
2: संजीव शॉप अराउंड करके आपको बेहतरीन रेट और प्लान की गारंटी देते हैं, जिसमें खांसी, जुखाम, बुखार, स्लिप एंड फॉल, वॉकिंग क्लिनिक डॉक्टर के फीस, मेडिसिन एंड टेस्ट के खर्चे से लेकर एम्बुलेंस, हॉस्पिटलाइजेशन एंड फ्यूनरल तक सब कवर्ड होता है।
1: यू विल गेट फुल रिफंड इफ सुपर वीजा इज डिक्लाइंड।
2: इसके अलावा बच्चों की RESP, लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, फ्यूनरल इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस के लिए भी कॉल करें संजीव पुरी 416-890-3232, 890-3232। अगर आप लंबे वक्त से किसी हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान हैं और एक नेचुरल आयुर्वेदिक सॉल्यूशन की तलाश में हैं, तो आइए सहज आयुर्वेदिक हर्बल कंसल्टेशन सेंटर पर। यहाँ खानदानी परंपरा के अनुसार नब्ज देखकर कई तरह की बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से किया जाता है। इलाज से बहुत सारे लोगों को राहत और फायदा मिला है, चाहे एस्मा, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम्स, कमर या घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, हेयर प्रॉब्लम्स, गैस, अल्सर, लेडीज प्रॉब्लम्स, वेट लॉस, सोराइसिस या फिर किसी अन्य हेल्थ इश्यू की बात हो, बीमारियों का जड़ से इलाज करने में मदद मिलती है। आज ही कॉल करें वैद्य रत्न पीवी राज को, लोकेटेड इन ब्रैम्पटन, 6473278111, 6473278111।
3: Another Don Clean with the Don Dux.
4: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
5: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
4: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
5: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
4: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
5: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
4: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
3: Dawn Platinum, the better grease getter.
6: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMR FM 101.3। शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस।

0: कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812।
1: Great investment opportunities available. Oshawa mein 4 bedrooms and 4 washrooms ka town home. Brampton mein Chingozi aur Wanderers ke paas 3 bedrooms ka semi-detached home with 1 bedroom ki basement apartment with separate entrance. And dusra ghar 5 bedrooms ka detached home with 3 bedrooms ki legal basement with separate entrance. All the properties are rented. For more information, call 647-309-5100. 647-309-5100. ध्यान से सुनिए, आपके लिए एक अच्छी खबर है। गवर्नमेंट आपको स्टडी करने के लिए फंडिंग प्रोवाइड कर रही है, जो ग्रांट और लोन के कॉम्बिनेशन में मिलेगी। अगर आप पीआर या कनेडियन सिटीजन हैं, आपकी मिनिमम एजुकेशन ग्रेड 12 है, नो बैंक्रप्सी और क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो आप एलिजिबल हो सकते हैं। नो क्रेडिट चेक, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली आप ऑनलाइन स्टडी भी कर सकते हैं। ग्रांट और लोन का कॉम्बिनेशन 31 जुलाई तक अवेलेबल है। देर ना करें, आज ही कॉल करें 416-315-2020. That's 416-315-2020.
2: TD Mosaic Festival is back for 21st year, July 31st and August 1st at Celebration Square, Mississauga, the biggest South Asian artist lineup of the year. Sufi Queen Sanam Marvi from Pakistan, Indian Idol Season 14 winner Vaibhav Gupta from India, Danny to Dublin from Vancouver, Shalom Xavier's Fusion, Ali Kazmi, Bollywood Dance School Canada, Jadoo Entertainment, Rising Star Finalists, and the 2026 Star. Popular South Asian restaurants and food trucks, Vendors Bazaar, Visual Arts, Media Arts, Free Children Arts and Balloon Making Workshops, Children's Mardi Gras Parade with Marching Band. Completely free admission for the whole family. For more information, visit mosaicfest.com.
1: कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी लार्जेस्ट ऑनिंग सप्लायर हैं कैनेडा वाइड। घर या बिजनेस के लिए पैटियो कवर, परगोला, बेसमेंट कैनोपी, रिट्रैक्टेबल ऑनिंग्स अगर आपको चाहिए तो आज ही कांटेक्ट कीजिए। ब्रैम्पटन का बड़ा ट्रस्टेड नाम है रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी। फ्री बारबेक्यू मिल रहा है विद एनी कैनोपी और ऑनिंग इंस्टॉल्ड। टॉप क्वालिटी मटीरियल, स्टाइलिश मॉडर्न डिजाइन, कम्पेटिटिव प्राइसिंग। चाहे सनरूम हो या हो कस्टम कैनोपी, हर सोल्यूशन मिलता है बड़े प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन के साथ। 24 रीगन रोड, ब्रैम्पटन। कॉल कीजिए 416-831-4790, 416-831-4790।
3: ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਸਨਗਲਾਸਿਸ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਸਟੋਰ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ।
4: ਸੋਹਣੇ ਫੇਸ ਵਾਲੀਏ, ਉੱਚੀ ਹੀਲ ਵਾਲੀਏ, ਗੁੱਚੀ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਪਾਵੇ ਦਿਲ ਤੇ ਥਵਾਰੀਏ।
5: ਫੋਰ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮਸ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸਨਗਲਾਸਿਸ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ ਡੋਟ ਕਾਮ ਔਰ ਕਾਲ 416-922-5263। ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ, ਦ ਨੇਮ ਯੂ ਕੈਨ ਟਰਸਟ।
6: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMRFM 101.3। शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस।
1: ये सेगमेंट आप तक पहुंचा रहे हैं यश विंडोज एंड डोर्स। दोस्तों, अगर आप ढूंढ रहे हैं वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के विंडोज एंड डोर्स रीजनेबल प्राइस में, तो यश विंडोज एंड डोर्स सर्विसेज देते हैं ऑल ओवर ऑन्टारियो। खुद ही विंडोज एंड डोर्स मैन्युफैक्चर करते हैं और उनकी एक्सपर्ट इंस्टॉलर टीम ही प्रोफेशनली इंस्टॉल करती है। नो मिडल मैन, नो कॉम्प्रोमाइज, सीधे फैक्ट्री से आपकी प्रॉपर्टी तक। स्टाइल, लुक्स, क्वालिटी, सिक्योरिटी, ड्यूरेबिलिटी, एनर्जी एफिशिएंसी, सब कुछ माइंड ब्लोइंग। स्टाइल, सेफ्टी, सेविंग एक साथ। और अब सुनिए बड़ी खबर, फ्रेंचाइज ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, ज्वाइन द ग्रोइंग टीम ऑफ यश विंडोज एंड डोर्स 416-732-3600। दैट्स 416-732-3600।

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
2: रेडियो वॉइस एक ऐसा रेडियो शो जो सुने आपकी बात,
3: जो हो आपके दिल के करीब,
2: जो मनाए आपके त्योहार,
3: रखे चुटकुले तैयार,
2: जहाँ पर मिले आपके सवालों के जवाब,
3: जहाँ मचे शायरी की धूम,
2: जो दे खबरें अप टू डेट
3: और दे ढेरों इनाम,
2: आपका अपना रेडियो शो रेडियो वॉइस
3: जतिन के संग
2: ऑन CMR 101.3 FM. ट्यून इन मंडे टू फ्राइडे और लॉग ऑन टू CMR.FM.
4: The views and information shared by the guests and their ads are their own and shall not be construed as advice from Radio Voice hosts. We make no recommendations or endorsements for radio show programs, products or experiences mentioned on air. Personal views expressed by the guests, ads, interviews will always be presented as such. No liability, explicit or implied, shall be extended to Radio Voice or the show hosts whose words and or opinions appear on the show.

0: क्या बात है, उलझन में लग रही हो?
1: उलझन ही तो है, एक तरफ चिंटू के दांतों में कीड़ लग गई है, चॉकलेट इतने खाता रहता है, और दूसरी तरफ माँ जी के दांतों में दर्द हो रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
0: समझना क्या, डॉक्टर नील गज्जर को फोन करो, बहुत ही रिनाउंड डेंटिस्ट है, और उन दोनों के साथ साथ तुम्हारा और मेरा भी अपॉइंटमेंट बना लो दांत की सफाई करने के लिए। ये लीजिए फोन नंबर 289-401-0009 289-401-0009।
1: डॉक्टर नील गज्जर, 735 ट्वीन एवेन्यू स्वीट 16 मिसिसागा, कॉल 289-401-0009।

0: Learn to earn at Win Lifetime. Call 905-206-1008.
1: Imagine over 1,000 exotic birds and animals roaming wild. Come face to face with lions and nature's most amazing creatures, all closer than you'd ever imagined. African Lion Safari, Canada's original safari adventure. African
2: Lion Safari. Get closer and begin your adventure today at lionsafari.com.
3: नॉर्थ अमेरिका का सब तो वड्डा माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर।
4: यहाँ से आपको ढाका चुन्नी मेहंदी जागो मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 मेलेनी ड्राइव यूनिट 9 और 10 ब्रैम्पटन। टेलीफोन 905-799-9400। माझा मालवा दुआबा वेडिंग
5: स्टोर। रिट्स फर्नीचर का मैसेज जरा ध्यान।

0: Wow, Mom. Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo fettis, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: वक्त जो है वो बदल चुका था। रामाधीर ने उस गाने को नहीं पहचाना पर वो रेडियो वॉइस को पहचान गया था। ये वो जमाना था जब लोग अपना ईमेल का पासवर्ड भूल जाया करते थे पर रेडियो वॉइस सुनना नहीं। और उसके बाद रेडियो वॉइस पर जो एडवर्टाइजर्स का ताता शुरू हुआ उससे पूरे एफएम रेडियो का समीकरण ही बदल गया। एडवर्टाइजिंग जो है उसके लिए आज ही कॉल करें 416-660-8545।

0: डॉक्टर नील गज्जर एसोसिएट्स एंड स्पेशलिस्ट्स फैमिली डेंटिस्ट केयरिंग फॉर ऑल योर डेंटल नीड्स एक्सेप्ट कर रहे हैं पेशेंट्स जिनके पास CDCP यानी कि कैनेडियन डेंटल केयर प्लान है। अगर आपने ये प्लान रिसीव नहीं किया है और आप एलिजिबल है तो इस प्लान में एनरोल होने के लिए विजिट करें CDCP वेबसाइट। CDCP की वेबसाइट विजिट करके एनरोल हो जाइए और कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर नील गज्जर एसोसिएट्स एंड स्पेशलिस्ट का। बेंद्र भाइयों आपकी अपॉइंटमेंट अभी से बुक करवा ले 905-564-2021 डॉक्टर नील गज्जर एसोसिएट्स एंड स्पेशलिस्ट्स आपके फैमिली डेंटिस्ट।
1: Another Don Clean with the Don Ducks.
2: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
3: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
2: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
3: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
2: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
3: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
2: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
1: Dawn Platinum, the better grease getter.
4: Craving something truly authentic? Mumbai Grill in Ajax has been delighting taste buds for 18 years. Jo specialized hai in mouth-watering momos plus tandoori and butter chicken momos. Jahan milenge best of South Asian cuisine. Miss out mat karna unka famous lunch and dinner buffet. Signature dishes like butter chicken and shahi paneer. Agar food aapko karta hai excite, to zarur pahunche Mumbai Grill at 619 Kingston Road, Ajax. Call kare at 905-239-4077 ya visit kare MumbaiGrill.com. Available for small and very large group catering services. Mumbai Grill, yummy food that thrills.
5: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
6: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
7: Medical insurance for new immigrants, the visitors insurance and super visa insurance ke best rate and best plan ke liye ek hi naam.
8: Sanjeev shop around karke aapko behtareen rate aur plan ki guarantee dete hain jisme khansi, zukham, bukhar, slip and fall, walk-in clinic doctor ke fees, medicine and test ke kharche se lekar ambulance hospitalization and funeral tak sab covered hota hai. Iske ilawa bachcho ki RESP, life insurance, mortgage insurance, funeral insurance, critical illness insurance, disability insurance ke liye bhi call kare Sanjeev Puri 416-890-3232
9: प्रतिष्ठा, परंपरा और अनुशासन, इन तीन स्तंभों के अलावा रेडियो वॉइस खड़ा है अपने लिसनर्स और अपने एडवर्टाइजर्स के दम पर। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 416-660-8545।

0: आप शेरों, हाथियों और चीतों को बिल्कुल करीब से देखना चाहते हैं तो पहुंचिए अफ्रीकन लायन सफारी बिंदर भाइयों कनाडा के सबसे बड़े वाइल्ड लाइफ एडवेंचर पर। पहुंचना होगा 1386 कूपर रोड कैम्ब्रिज। आज ही टिकट बुक करें lionsafari.com पर। ये हिड वॉइस, हम हैं आपके दोस्त जतीन।
1: रेड्स फर्नीचर दा मैसेज जरा ध्यान।

0: Meet Rohit the Yes Man at Ritz Furniture Planet, 5200 Dixie Road, Mississauga. Telephone 905-232-RITZ. That is 232-7489. Visit ritzfurnitureplanet.ca.
1: Sasta saman sasta nahi. High end the saman mile sasta.
2: डोसा खाने का मन है तो चलिए गुरु लक्ष्मी 7070 सेंट बारबरा बुलेवर्ड यूनिट नंबर 44-50 मिसिसागा। मंडे और ट्यूसडे को लंच 12-3 डिनर 5-10 थर्सडे से संडे लंच 12-3 डिनर 5-10 वेनसडे को बंद लेकिन लॉन्ग वीकेंड्स पर खुले रहेंगे। कॉल करें 905-795-2299 905-795-2299 या विजिट करें gurulakshmi.com। गुरुलक्ष्मी स्वाद सेवा और साउथ इंडियन का असली तड़का।

0: Wow, Mom. Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effect of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: प्रतिष्ठा, परंपरा और अनुशासन, इन तीन स्तंभों के अलावा रेडियो वॉइस खड़ा है अपने लिसनर्स और अपने एडवर्टाइजर्स के दम पर। एडवर्टाइजिंग, इंटरव्यूज, टॉक शोज, इन तीन स्तंभों के लिए आज ही कॉल करें 416-660-8545।

0: देख रहे हैं।
1: तो देखने दो।
0: जल भी रहे हैं।
1: अरे तो चलने दो।
0: खुली सड़क है बाबा।
1: तो क्या हुआ पाई?
0: हाँ तो हो जाए
1: हो जाए।

0: Imagine over 1,000 exotic birds and animals roaming wild. Come face to face with lions and nature's most amazing creatures, all closer than you'd ever imagined. African Lion Safari, Canada's original safari adventure. African Lion
1: Safari. Get closer and begin your adventure today at lionsafari.com.
2: अपना पहला घर खरीदना है या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, इस सेमिनार में होंगे मॉर्गेज स्पेशलिस्ट, लीगल एक्सपर्ट्स एंड पीके सबरवाल. एंजॉय एक्सक्लूसिव इंसेंटिव्स, कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट एंड लंच. 26 जुलाई 2026 को होने जा रहा है.
3: बहुत सारे इंसेंटिव्स जिनके बारे में आपने सुना भी नहीं है.
2: लिमिटेड सीट्स हैं, आज ही रजिस्टर कीजिए विद न्यू जेन रियल्टी एक्सपर्ट. 6472994757, 6472994757, teamsabarwal.com.
4: Real estate का कोई सवाल, टीम सबरवाल.
5: संजीव पुरी ऑफ स्टार लाइफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंक एक ब्रोकर है और डील करते हैं सारे मेजर कंपनीज के साथ. ही कैन शॉप अराउंड फॉर यू फॉर द बेस्ट प्लान्स ऑफ इंश्योरेंस दैट विल सूट योर बजट एंड नीड्स. संजीव पुरी इंश्योरेंस प्लान्स में तो माहिर है ही, लेकिन हाई रिस्क इंश्योरेंस प्लान्स के बेस्ट रेट्स दिलाने में बहुत ही माहिर है. तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, बाईपास सर्जरी, लिवर या किडनी के इश्यूज हो, या इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी इंश्योरेंस डिक्लाइन की है, तो संजीव पुरी को आप कॉल करेंगे फ्री कोट के लिए. और अगर आपको लगता है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी के बहुत हाई प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो पॉलिसी रिव्यू करवाने के लिए भी संजीव पुरी 416-890-3232, 416-890-3232.
6: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
7: Hum honge aapke saath hamesha.
8: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.

0: त्योहार पूजा पाठ और सजावट का सामान, मंदिर मूर्तियाँ हवन सामग्री, फेंगशुई वास्तु आइटम्स, रिलीजियस बुक्स,
1: यानी पूरे इंडिया का कल्चर एक ही छत के नीचे।
0: 31 मेलिनी ड्राइव, ब्रैम्पटन। कॉल 9054586808
1: और विजिट pujahut.com।
0: जय श्री राम।
2: Another Don Clean with the Don Ducks.
3: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
4: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
3: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
4: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
3: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
4: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
3: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
2: Dawn Platinum, the better grease getter.
5: वक्त जो है वो बदल चुका था। रामाधीर ने उस गाने को नहीं पहचाना, पर वो रेडियो वॉइस को पहचान गया था। ये वो जमाना था जब लोग अपना ईमेल का पासवर्ड भूल जाया करते थे, पर रेडियो वॉइस सुनना नहीं। और उसके बाद रेडियो वॉइस पर जो एडवर्टाइजर्स का ताता शुरू हुआ, उससे पूरे एफएम रेडियो का समीकरण ही बदल गया। एडवर्टाइजिंग जो है उसके लिए आज ही कॉल करें 416-660-8545।

0: डोसा खाने का मन है तो चलिए गुरु लक्ष्मी, 7070 सेंट बारबरा बुलेवर्ड, यूनिट नंबर 44-50, मिसिसागा। मंडे और ट्यूसडे को लंच 12-3, डिनर 5-10। थर्सडे से संडे लंच 12-3, डिनर 5-10। वेनसडे को बंद लेकिन लॉन्ग वीकेंड्स पर खुले रहेंगे। कॉल करें 905-795-2299, 905-795-2299, या विजिट करें gurulakshmi.com। गुरु लक्ष्मी, स्वाद, सेवा और साउथ इंडियन का असली तड़का।
1: रेड्स फर्नीचर दा ये मैसेज जरा ध्यान।

0: Meet Rohit the Yes Man at Ritz Furniture Planet, 5200 Dixie Road, Mississauga. Telephone 905-232-RITZ. That is 232-7489. Visit ritzfurnitureplanet.ca.
1: Sasta saman sasta nahi, high end da saman mile sasta.
2: क्या बात है, उलझन में लग रही हो?
3: उलझन ही तो है, एक तरफ चिंटू के दांतों में कीड़ लग गई है, चॉकलेट इतने खाता रहता है, और दूसरी तरफ माँ जी के दांतों में दर्द हो रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: समझना क्या, डॉक्टर नील गज्जर को फोन करो, बहुत ही रिनाउंड डेंटिस्ट है, और उन दोनों के साथ साथ तुम्हारा और मेरा भी अपॉइंटमेंट बना लो दांत की सफाई करने के लिए। ये लीजिए फोन नंबर 289-401-0009 289-401-0009.
3: Dr. Neil Gajar, 735 Tween Avenue, Suite 16, Mississauga. Call 289-401-0009.
4: Pratishtha, Parampara aur Anushasan, in teen stambhon ke alawa रेडियो वॉइस खड़ा है अपने लिसनर्स और अपने एडवर्टाइजर्स के दम पर। एडवर्टाइजिंग, इंटरव्यूज, टॉक शोज, इन तीन स्तंभों के लिए आज ही कॉल करें 416-660-8545।

And here we meet again on the day जो खिला खिला है मस्त मस्त रूप से. तापमान बहुत बहुत अच्छा रहा इस दिन भर में और तड़पा गया कहीं कहीं हमें कि झूमती बरसात दर्शन दे दे कि बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे और सूरज को दिखा दो भाई ठेंगा रे. अपना भी क्या होता है ना वैसे कि तसल्ली ही नहीं होती. गर्मी होती है तो बारिश चाहिए होती है, बारिश होती है तो धूप चाहिए होती है ना. वी आर ऑलवेज ऑलवेज लुकिंग फॉर वट वी आर लैकिंग, राइट. सो ऑन दिस लर्न टू लव एंड अप्रिशिएट भाई वट वी हैव वाली नोट. दिस इज स्वाति एंड वेदांत ऑन फिल्मी नुक्कड़ सीएमआर 101.3 एफएम पर सेइंग कि ना मानो तो जिंदगी एक लंबी कठिन एंड समटाइम्स मे बी बोरिंग सी रह गुजर सी, और मानो और जियो तो जिंदगी खूबसूरत खुशनुमा दो पल की.

0: बनाइए effortless with the Lexus TX 350 at Don Valley North Lexus. Spacious, refined और hard drive के लिए ready. Quick refueling के साथ बिना charging delays के. Welcome back offer और 10 MSDs का advantage लीजिए और lease कीजिए TX 350 luxury package for $799 plus taxes per month with a 1.4% lease rate. Only at Don Valley North Lexus. Luxury का experience लीजिए बिना wait के. A proud member of Wayne's Auto Group.
1: ऑटो एंड होम इंश्योरेंस के बिना तो काम चलता नहीं इफ यू हैव अ कार एंड अ हाउस, है ना। अब ऐसे में सोचिए, अगर आपके पास एक कार और एक घर है और इंश्योरेंस पर सालाना आपके $400 to $500 की बचत हो जाती है, या आपके पास दो कार और एक घर है और ऑटो एंड होम इंश्योरेंस पर आपकी बचत हो सकती है अप टू $2,029, तो कितना अच्छा हो, है ना। यानी कि रेट्स भी सही मिल जाए, कवरेज कॉम्प्रोमाइज ना हो एंड सेविंग्स ही सेविंग्स। तो भाई ये पॉसिबल है। कॉल सिमरन बेस फ्रॉम ऑल स्टेट की मिसिसागा साउथ एजेंसी एट 6474535353। उनको कॉल करेंगे तो आपको और ऑप्शंस भी पता चल सकते हैं। 6474535353।

0: देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: हर एक ग्रेट जर्नी शुरू होती है एक सही पार्टनर के साथ। वेन्स ऑटो ग्रुप में हमारे डीलरशिप्स का वाइड नेटवर्क डिवर्स कम्युनिटीज को प्राउडली सर्व करता है। एक्सपर्ट कार बाइंग गाइडेंस, प्रीमियम सर्विस और ऐसा सपोर्ट जो आपकी लैंग्वेज समझे। हर डीलरशिप का प्रॉमिस एक ही है, ट्रस्टेड केयर, कंसिस्टेंट सर्विस और कंप्लीट ऑटोमोटिव सपोर्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइव टू लाइफ टाइम केयर। वेन्स ऑटो ग्रुप इज ऑलवेज देयर। विजिट veinsautogroup.com।
2: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
3: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव, ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888। दैट्स 9054608888।
2: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
4: अब फायदा उठाएं जून के हॉट ट्रेड्स का विद अमित खुराना। 3 years fixed 4.19%, 5 years fixed 4.24%, 5 years variable 3.55%। साथ ही मिले $5,100 तक का हॉट और कैश बैक भी, और इतना ही नहीं एक गिफ्ट कार्ड भी अप टू $1,500। है ना आइसिंग ऑन द टॉप। कॉल अमित खुराना एट 6473412785, 6473412785, और विजिट amitkhurana.com।
5: Another Don Clean with the Don Ducks.
6: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
7: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
6: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
7: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
6: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
7: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
6: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
5: Dawn Platinum, the better grease getter.
8: Let's turn it up.
9: Let's kick it up.
10: Let's shake it up.

0: It's time to Toyota at Markville Toyota. Corolla L lease kijiye from $84 weekly for 60 months with zero down. Ya Corolla Cross L front wheel drive lease kijiye from $98 weekly for 60 months with zero down. Or up Tundra 4x4 Crew Max Limited Nightshade lease kijiye from $208 weekly for 60 months. Great offers. Sirf Markville Toyota per. More details ke liye visit kare markville.com. Markville Toyota, a proud member of Vane's Auto Group.
1: Sports पर या उससे related biopics आजकल is one of the hottest and box office पर बिकाऊ trend in Hindi films. And ऐसे ही athlete Mika Singh पर भी बनी थी film भाग मिल्खा भाग, which has completed release recently. कहते हैं मिल्खा सिंह ने इस film में contribution के लिए सिर्फ एक रुपया लिया था. And when he met with Farhan Akhtar for the first time for the film, he challenged him कि चलो दोनों race लगाते हैं and no points for guessing कि जीता कौन था. बाकी सोनम कपूर ने भी कहते हैं इस film के लिए सिर्फ 11 रुपए लिए थे काम करने के लिए, बट अब ये मत कहना कि इतने भी लेने नहीं बनते थे. मैं नहीं कह रही. वेल, इस फिल्म को स्पोर्ट्स फिल्म कहना थोड़ा सा गलत होगा क्योंकि इट वाज अबाउट एन अनडाइंग ह्यूमन स्पिरिट. फिल्म हिट थी और शंकर एहसान लॉय का म्यूजिक सुपर हिट.

0: अच्छी लाइफ के लिए एक सक्सेसफुल करियर होना बहुत जरूरी है और उसके लिए रूहानी कॉलेज ऑफ हेल्थ बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी। वहाँ से सिर्फ एक साल का RMT हाइब्रिड कोर्स करने पर आप $15,000 पर मंथ तक कमा सकते हो। एलिजिबिलिटी 12th पास ओनली। इसके अलावा एक साल की ऑस्टियोपैथिक मैनुअल प्रैक्टिस, एक्यूपंक्चर एंड नेचुरल हीलिंग साइंसेज का कोर्स भी है जिसे करके $300 पर आवर तक आप कमा सकते हो। कोर्सेज तो और भी बहुत है यहाँ, बस आप अपना करियर बनाने का करो पक्का इरादा। विजिट 239 क्वीन स्ट्रीट ईस्ट यूनिट 21 ब्रैम्पटन और कॉल 905-731-2555। विजिट ruhanicollege.com।
1: समर ड्राइव का एक्साइटमेंट बढ़ाएं विद टंड्रा एट डॉन वैली नॉर्थ टोयोटा। आपके नेक्स्ट एडवेंचर के लिए बिल्ट और फाइनेंसिंग सिर्फ 3.99% से। बिग सिलेक्शन, बिग समर मोमेंटम, टोयोटा करोला भी इन स्टॉक है आपकी रोजाना ड्राइव के लिए। बुक अ टेस्ट ड्राइव टुडे, वी पे टॉप डॉलर फॉर योर ट्रेन। इट्स टाइम टू टोयोटा एट डॉन वैली नॉर्थ टोयोटा.com। लोकेटेड है 3300 स्टील्स एवेन्यू ईस्ट मार्कम पर। A proud member of Vane's Auto Group.
0: एंड अ क्विक रिमाइंडर, हमारे साथ जुड़ेंगे आज हमारे मिस्टर न्यूमरोलॉजिस्ट इन द सेगमेंट नंबर्स टू वंडर्स एट 6:15, जहां पे आप अपने सवाल पूछ सकते हैं उनसे। बस अपना डेट ऑफ बर्थ हैंडी रखना है आपको और क्वेश्चन। 6:15 के अराउंड वो हमारे साथ जुड़ेंगे इन द स्टूडियो। आप बस अगर सवाल हैं तो जुड़िएगा जरूर, नहीं भी है तो सुनने के लिए जुड़िएगा। एंड नेक्स्ट इज अ रिक्वेस्ट बाय अ लिटिल लिसनर्स। मैं देख के बड़ी खुश होती हूँ या सुन के, या जब मुझे पता चलता है कि देर आर डिफरेंट एज ग्रुप्स लिसनिंग टू मी एंड फिल्मी नुक्कड़। तो ये है अविका और आर्या के लिए खास, देर इज अ रिक्वेस्ट, प्यारा सा गाना उनके लिए। एंड एक बात मैं कहना चाहूंगी टू ऑल माई लिसनर्स एंड स्पेशली अविका एंड आर्या, राइट नाउ थैंक यू फॉर लिसनिंग। आप रोज ट्यून इन हुआ करें हमारे साथ, मैं रोज आपकी पसंद डेफिनेटली प्ले किया करूंगी। अभी इसको एंजॉय करें।

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
2: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, द लार्जेस्ट इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट चेन इन कनाडा। फाइंड आउट मोर एट rajdhanisweets.ca।
3: जेनेसिस मार्कम पर लग्जरी मिलती है एक एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा। लीज कीजिए ब्यूटिफुली डिजाइंड 2026 G70 सिर्फ 1.9% से अप टू 39 मंथ्स, या लीज कीजिए 2026 GV70 सिर्फ 2.9% से। बुक योर टेस्ट ड्राइव टुडे। विजिट genesismarkham.ca, लोकेटेड एट वुडबाइन एवेन्यू एंड जॉन स्ट्रीट, मार्कम। जेनेसिस मार्कम, डूइंग लग्जरी योर वे। अ प्राउड मेंबर ऑफ वेन्स ऑटो ग्रुप।
4: Another Don Clean with the Don Ducks.
5: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
6: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
5: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
6: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
5: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
6: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
5: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
4: Dawn Platinum, the better grease getter.
7: Follow us on Facebook. Filmi Nukkad, it's the free time.

0: हुंडई का नेक्स्ट स्टार्ट्स नाउ सेल्स इवेंट चल रहा है डॉन वैली नॉर्थ हुंडई पर। अब सिक्योर करें साल के लोएस्ट रेट्स। हर कस्टमर क्वालिफाई करता है अप टू 1% रेट रिडक्शन के लिए या कैश परचेस पर $500 का बेनिफिट। ऑफर सिर्फ जुलाई 31st तक है। एट डॉन वैली नॉर्थ हुंडई वी स्पीक योर लैंग्वेज। विजिट DonValleyNorthHyundai.com या Woodbine Avenue and Denison Street, Markham Burr.
1: Don Valley North Hyundai, doing
2: a proud member of Wayne's Auto Group.
3: Say whoa! पहला घर खरीदना है या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, इस सेमिनार में होंगे मॉर्गेज स्पेशलिस्ट, लीगल एक्सपर्ट्स एंड पीके सबरवाल। एंजॉय एक्सक्लूसिव इंसेंटिव्स, कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट एंड लंच 26 जुलाई 2026 को होने जा रहा है।
4: बहुत सारे इंसेंटिव्स जिनके बारे में आपने सुना भी नहीं है।
3: लिमिटेड सीट्स हैं, आज ही रजिस्टर कीजिए विद न्यू जेन रियल्टी एक्सपर्ट 6472994757 6472994757 teamsabarwal.com।
5: Real estate का कोई सवाल, Team Sabarwal।
6: Get smart with Saurabh Sabarwal on Filmi Nukkad।
7: वेल, बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं अच्छी कंपनी में रहोगे तो आप भी अच्छे बनोगे, बचपन से सुनते आ रहे हैं। उसी तरह संगत का असर तो पड़ता ही है भाई, इसलिए तो हम कहते हैं गेट स्मार्ट विद सौरभ सबरवाल, क्योंकि सौरभ जी के साथ अगर आप इस सेगमेंट में रहते हैं तो आप भी स्मार्ट डिसीजंस ले पाते हैं, स्मार्ट हो पाते हैं, क्योंकि सारी जो न्यूज़ है इधर उधर की विच कैन इम्पैक्ट योर लाइफ इन कैनेडा एंड वेन इट कम्स टू रियल स्टेट, वो भी अच्छे तरीके से पता चलती हैं, हमारे कितने फ़ायदे किए कितने नुकसान किए उसका एनालिसिस भी हो जाता है, और बहुत सारे सवालों के जवाब सिर्फ जब हम ये एक डिस्कशन सुनते हैं तो हमें अपने आप मिल जाते हैं। सौरभ जी से बात करने का नंबर आफ्टर दिस सेगमेंट रहता है 6478648844। यू कैन ऑल्सो विजिट teamsabarwal.com। पर फिलहाल हमारे साथ ट्यून इन रहे, क्योंकि आज भी हम करेंगे बहुत सारी ऐसी बातें जो या तो आपको पता है तो उसमें कुछ तो ऐसी गुंजाइश होगी कि अरे ये एंगल हमें नहीं पता था, और या फिर आपको पता ही नहीं होंगे और अच्छे तरीके से सिंपल तरीके से आज पता चल जाएंगी। तो स्टे ट्यून्ड विद अस इन द सेगमेंट गेट स्मार्ट विद सौरभ सबरवाल। सौरभ जी वेलकम।
8: जी थैंक यू वेरी मच स्वाति जी, और आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, देयर इज सो मच गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड एंड पर्पस ऑफ दिस सेगमेंट इज टू सिंपलीफाई एवरीथिंग, मेक श्योर लाइक यू नो दी दो जो कस्प होती है ऑफ समथिंग बिग,
7: यस,
8: इट गेट्स टू द कंज्यूमर टू द लिसनर इन अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल वे, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ फ्लफ आउट देयर, बहुत मसाला लग जाता है कई बार न्यूज आते आते, इट्स ऑलवेज बेस्ट टू कीप थिंग्स स्पेशली दैट मैटर, keep it straightforward, keep it simple and to the point.
7: हाँ, to the point कि ये है, अब इसमें आप अपनी अटकलें लगाते हैं वो बात की बात है, सब अपने मसाले जोड़ सकते हैं, पर फिलहाल सिंपल सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये है क्या और इससे आपको क्या असर पड़ सकता है। तो सौरभ जी, मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहूंगी दो चीजों की। एक तो मॉर्गेज रेट जो कल फिर से यू नो आएंगे ही एक तरीके से, वेंसडे को 15 जुलाई को अनाउंसमेंट सेट है और उसके बारे में, और दूसरा ये जो HST डिबेट की बात आती है तो इसका क्या इंपैक्ट आप देख पा रहे हैं है और होगा आगे, दो चीजें आप प्लीज मुझे एक एक करके।
8: जी बिल्कुल, तो पहले थोड़ा सा हम इंपैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं
7: जी,
8: क्योंकि यू सी थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स मैं आपको दूंगा,
7: प्लीज,
8: इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इनमें इट टेल्स यू थिंग्स आर वर्किंग, मे बी नॉट एज प्लान्ड बट दे आर मेकिंग everything better. तो ग्रेटर टोरंटो एरिया में सेल्स जो थी ईयर ओवर ईयर लास्ट मंथ इन जून दे क्लाइम्ड अप बाय 8.4%, विच इज अ गुड स्टेटिस्टिक, विच इज अ गुड साइन। तो यू नो बेसिकली 6700 रफली ये सेल्स हुई थी एंड ओवरऑल it is a good news and in you know the first 6 months of the year they were higher than the same period in 2025,
7: right?
8: So things seem to be working, not as fast, not as aggressively, magar it is a very good change, a very good step in the right direction agar aap us taraf se dekho, and you know there's basically now why basically क्या है कि buyers are loving this time advantage of pre-construction. ये थोड़ा सा देखना जरूरी है क्योंकि see what happens is कि buying new construction जो है it is essentially giving buyers a financial runway एक किस्म से.
7: अच्छा.
8: Instead of you know needing all their cash up front, you know they can lock in today's software market.
7: Mm-hmm.
8: And software market prices actually right now.
7: Mm-hmm.
8: क्या होता है कि inventory sales काफी हद तक बहुत सारे builders के पास हैं जो you know closing 30, 60, 90, हद से हद 120, maybe even sometimes 6 months down the road, and they flexibility दे रहे हैं कंज्यूमर्स को. तो करंट इन्वेंटोरी जो पड़ी हुई है विच इज पार्ट ऑफ बेसिकली समथिंग दैट वी हैव लॉन्च्ड अ ईयर टू ईयर थ्री ईयर अगो दैट इज वेयर बेसिकली अ लॉट ऑफ पीपल अ लॉट ऑफ फर्स्ट टाइम बायर्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स इनफैक्ट आर सेविंग अ बिग चंक ऑफ कैश.
7: ओके वेरी नाइस.
8: तो ये बेसिकली यू नो टाइम एडवांटेज जो है जो लोग ले रहे हैं उनको बहुत प्रॉफिटेबल होगा डाउन द रोड बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन यू बाय इन अ सॉफ्टवेयर मार्केट एट एंड गिवन एक और चीज है व्हाटएवर इज बीइंग एडवर्टाइज्ड दैट इज जस्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट दैट एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी इज ओपन फॉर नेगोशिएशंस व्हेन इट कम्स टू डेवलपर्स एज वेल.
7: ओके मतलब जब अगर कहीं भी हमें पता चलता है देयर इज अ सेल और तो आप ये मान के चलें जो प्राइस अनाउंस है उससे बेटर ही आपको इंसेंटिव्स के साथ मिलेगा.
8: जी तो देयर इज एडेड यू नो बोनस एंड अगेन द वर्ल्ड इज अ रॉयस्टर. आप ऑफर डालिए एंड देन यू नो यू जस्ट गेट द इंसेंटिव्स दे आर मोर देन विलिंग टू मेक अ सेल एंड दैट इज व्हाट अ सॉफ्ट मार्केट डज टू यू. इट गिव्स यू टाइम एडवांटेज.
7: राइट.
8: सेकेंडली ये जो शिफ्ट है you know this relief jo tax relief agar aap bolenge new tax relief isn't just for first time buyers anymore. Ye government opened up the eligibility basically repeat buyers ke liye bhi families ke liye who are looking to upsize even downsize but in this market it makes a lot more sense to upsize. To empty nesters basically they're looking to downsize. And, you know, they're saving a ton of money when it comes to the HST rebate.
7: Mm-hmm.
8: So it has definitely sparked up interest and a broader mix of buyers dekhne ko mil rahe humko from every walk of life, in every situation of their, you know, time frame that are looking into taking advantage of this through the HST rebate. So which is good. Statistics don't lie. So 8.4% is a big jump given the way the market has been. Or, you know, initially, reality kya hai ki ye rebate jo hai, it is also a kisam se reality check hai on local prices.
7: Right.
8: So, abhi Fraser Institute ne bhi thodi si, you know, statistics release kiye the. So, over 34% of all new homes sold in Toronto GTA. Are priced over 1 million.
7: Achha.
8: So under the old rules, more than a third of the market was completely shut out of any tax relief.
7: Okay.
8: So policy wali jo hai, it actually matches the real estate, real world cost of GTA real estate. So step in the right direction, as I said. And, you know, it's a perfect storm. Especially when you have better rates comparatively.
7: Mm-hmm.
8: Or next topic hamara jo hoga wo rates ka bhi hoga.
7: Right.
8: So you know it is I wouldn't say 100% ye tax HST rebate ki wajah se hai jo jump aaya hai. Ek steadiness bhi hai ki you know the rates have come down to a little to some degree but also they're very stable.
7: Right.
8: So when things are stable, एक peace of mind बनता है, then you can plan easily, markets perform एक किस्म से. So it's not just the tax rebate that is driving the shift, जैसे मैंने कहा. We're looking at, you know, a perfect storm of positive factors एक किस्म से.
7: अच्छा.
8: Borrowing costs, interest rate have started to ease up slightly, as I mentioned. Resale prices have continued to soften. Resale market is obviously it's not at its best right now. और buyers who have been stuck on the sidelines, जिसकी हमने बहुत बात करी है आपके रेडियो पे, you know, there are a lot of buyers who are ready to go, sidelines में बैठे हुए, they have started to act up on especially the HST rebate, especially with the current inventory that's lying around with the developers, चाहे वो low rise हो, high rise हो. तो in a way, to summarize everything, things are working out in the right direction.
7: Okay.
8: It's now how much more the government wants to expand the HST rebate. ये हमने पहले भी जिक्र किया हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन की थी हमने. एंड जितना ब्रॉडन ये किया जाएगा, आई थिंक द मार्केट विल कम बैक. वेल यू सी, नॉर्मल इज not the right word, क्योंकि what is normal?
7: Yes, you know? मैं बोलते बोलते ही सोच रही थी. पर यहाँ के जो desirable maybe the right word?
8: Yes, to make it more desirable, 100%. तो इसलिए जितना broaden करेगी government इस HST rebate को, I think it will perform equally more. Mm-hmm. And we'll see a betterment of the market for sure.
7: चले, तो मुझे इस वक्त एक चीज तो समझ में आई है सौरभ जी से बात करते करते इन सारी बातों में. अगर वन वर्ड आंसर देखें कि क्या ये इफेक्टिव है रिबेट, तो ओवरऑल लुक्स लाइक इट इज इफेक्टिव. ठीक है, इट इज नॉट द ओनली फैक्टर, बट इट इज इफेक्टिव. तो आप, एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ चलती हूँ सौरभ जी, विल बी बैक विद यू. और यहाँ पे मुझे आपसे और भी सवाल करने हैं, पर मैं अपने लिसनर से कहूँगी हमारे साथ जुड़े रहें. अभी ये बात करिए, अभी मैं मॉर्गेज रेट्स की बात भी करेंगे, बैंक ऑफ कनाडा क्या करने वाला है कल. और उसके अलावा और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सौरभ जी के पास है हमारे लिए इंटरेस्टिंग सी. स्टे ट्यून्ड विद अस.

0: डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस पर कॉन्फिडेंस के साथ इलेक्ट्रिक ड्राइव करें। चूज करें लेक्सस आरजी या ईएस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और एंजॉय करें प्रीमियम ईवी एक्सपीरियंस मेड सिंपल। बाय ए फ्री लेवल 2 होम चार्जर, इंस्टॉलेशन कोऑर्डिनेशन और फर्स्ट ईयर ऑफ होम चार्जिंग रीइंबर्स्ड अप टू $1,000। प्लस रिसीव करें वन ऑन वन ईवी डिलीवरी सेशन एट योर होम और $500 क्रेडिट फॉर एनी प्रोटेक्शन पैकेज वैल्यूड एट $2,500। आज ही विजिट करें डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस .com। A proud member of Wings Auto Group.
1: Get smart with Saurabh Sabharwal on Filmi Nukkad. All right, get smart with Saurabh Sabharwal. इस सेगमेंट में ट्यूसडे को हमारे साथ जुड़ते हैं सौरभ जी फ्रॉम टीम सबरवाल. उनका नंबर आफ्टर दिस सेगमेंट रहता है 647-864-8844 और यू में विजिट teamsabharwal.com. हम अभी बात कर रहे थे सौरभ जी से HST रिबेट की इफेक्टिवनेस के बारे में कि उनका एक्सपीरियंस अब तक का क्या कह रहा है कि वेदर इट्स रियली इफेक्टिव और नॉट. निष्कर्ष निकल के आया येस इट इज और बहुत सारी चीज़ें उसके आसपास और भी बताई हमें. अभी आगे बात बढ़ाते हैं और पूछते हैं नेक्स्ट सवाल. सौरभ जी वेलकम बैक.
2: जी थैंक यू वेरी मच.
1: तो मॉर्गेज रेट्स की बात हो रही है आपकी, कहते ना आपका तोता क्या कहता है.
2: आपके साथ मेरी हिंदी काफी रिफ्रेश हो रही है. तो देखिए मेरा हमारा तोता ये कहता है कि बैंक ऑफ कनाडा बेसिकली एंड दिस इज नॉट यू नो आई टोल्ड यू सो सॉर्ट ऑफ अ थिंग क्योंकि दिस इज वाइडली एक्सपेक्टेड ऑनेस्टली कि जो इंटरेस्ट रेट रहेगा आई थिंक इट विल स्टिल बी पॉज्ड एट 2.25 जो कल अनाउंसमेंट रहेगी. दैट्स व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज, दैट्स व्हाट माय एक्सपेक्टेशन इज एंड आई ऑनेस्टली डोंट थिंक कि थिंग्स विल गो एनी अदर वे एंड दे शुडंट. ड्रॉप हो जाए तो और ये अच्छी बात है बट आई डोंट थिंक दैट्स गोइंग टू बी द केस. और दिस विल बी बेसिकली इफ दैट इज द केस वेयर इट स्टेज पॉज्ड एट 2.25 बेसिकली सिक्स स्ट्रेट टाइम होगा जो जब बैंक ने बेसिकली रेट्स को स्टडी रखा है. और आई थिंक लास्ट फॉल में लास्ट
1: अक्टूबर में हुआ था.
2: जी एंड दैट वाज यू नो हाफ अ परसेंटेज पॉइंट कट हुआ था लास्ट फॉल बट उसके बाद से दिस विल बी द सिक्स स्ट्रेट टाइम वेयर द रेट्स आर पॉज्ड. तो एंड यू नो द एक्सपेक्टेशंस, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो काफी स्टेबल हैं. तो सेंट्रल बैंक बेसिकली आई एम प्रीटी श्योर दे विल कीप द इंटरेस्ट रेट्स एग्जैक्टली वेयर दे आर राइट नाउ. तो दैट्स रियली व्हाट आई यू नो दैट इज व्हाट माय तोता सेज.
1: हाँ नहीं पर मैं, आपने जब भी जो भी प्रेडिक्ट किया है हमेशा यही बात हुई है और मेरे ख्याल से हमेशा सही निकला है. तो आई एम ऑलवेज कीन टू नो कि इस बार आप क्या कहने वाले हैं. तो लेट्स सी कल क्या होता है. वैसे बाकी आपने जैसे कहा कि प्रेडिक्शन तो यही बताई जा रही है
2: एंड रियलिस्टिकली दैट इज व्हाट मेक्स
1: सेंस टू. हाँ कम हो जाए तो अच्छा है पर जितना कहते हैं ना जितना मिले उसमें खुश हो जाओ.
2: एक्सपेक्टेशन भी स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिर वो डिसअपॉइंटमेंट नहीं होती और And that's just the way things are at this time.
1: Yes. And before going forward, मैं ये भी पूछना चाहूंगी आपसे, ये जो हम एड सुन रहे थे आपकी काफी टाइम से सुन भी रहे हैं और आपने पिछली बार भी बात करी थी उस सेमिनार के बारे में जिसमें आप भी होंगे, पीके सबरवाल सर भी होंगे और
2: हमारी एंटायर टीम होगी.
1: जी चले
2: इन हाउस लॉयर्स होंगे. वी'ल हैव अ मॉर्गेज एजेंट्स ऑन एट द इवेंट बेसिकली एट द सेमिनार. इट इज गोइंग टू बी एन एक्सट्रीमली इन्फॉर्मेटिव सेमिनार. वी हैव हैड अ वेरी गुड response from our listeners jo you know they're registering themselves for the event and again see right now the way the market is everybody wants to know where things are headed.
1: Yes.
2: What is you know what is the next
1: yes what
2: year,
1: is come
2: year, yeah year, aag, 4 year looks like
1: aage kya hone wala hai
2: jaise HST rebate ki baat ho rahi hai what are the technicalities what are you know expectations what is the preferred action plan for a lot of just enough first time buyers hain jo existing sellers and buyers hain jo are still in the sidelines. So yeah this is for something for everybody especially first time buyers jo thoda sa navigate karne ki koshish kar rahe hain. क्योंकि क्या होता है ना कि जब मार्केट थोड़ी सी अनस्टेबल होती है विच इज ऑन अ लिटिल यू नो व्हेन द मार्केट हैज अ लिटिल बिट ऑफ अ स्लू तो वो नेगेटिव एनर्जी या लो एनर्जी बेसिकली कंज्यूमर्स के पास भी चली जाती है. तो देर नॉट वेरी एक्टिवली लुकिंग, देर नॉट वेरी श्योर कि इज दिस द राइट टाइम टू बाय एंड दोज काइंड ऑफ थिंग्स. सो दैट इज वॉट द पर्पज ऑफ द सेमिनार इज कि टू एजुकेट यू, टू गाइड यू टू द राइट वे, एंड देन ऑब्वियसली यू मेक डिसीजंस एज टू वेयर यू वांट टू गो फ्रॉम देयर. और टेक्निकलिटी वाइज वी हैव आवर इन हाउस लॉयर्स जिनसे आप बात कर सकते हैं, वी हैव आवर मॉर्गेज एजेंट्स who are going to be there, or it will be extremely, extremely informative. Okay. So if you are interested to attend, I would very heavily suggest ki aap teamsabarwal.com mein jaake register kariye. Aap mereko bhi contact kar sakte hain 647-864-8844 pe call ya text kariye, and then we can get your registration done and we can send you the details as we move closer to the event.
1: चलें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम इतनी बार यहाँ पे सिंपल तरीके से बातें करते हैं, बहुत सारी चीज़ें सवाल फिर भी सबके जहन में रह ही जाते हैं थोड़े मोड़े छोटे मोटे, और जब डिसीजन लेना होता है तो हमें पूरी क्लैरिटी चाहिए होती है, कोई भी कन्फ्यूजन के बादल नहीं चाहिए. तो मेरे ख्याल से ऐसे इवेंट्स जब होते हैं वहाँ पे लॉयर भी मौजूद हैं, मॉर्गेज एजेंट्स भी हैं, आपके रियल्टर्स भी हैं और बहुत सारे और पीयर्स होते हैं, आप जितने सवाल होते हैं वो पूछ सकते हैं. बहुत सारी बातें डिस्कस हो रही होती हैं जो आपके कई बार दिमाग में भी नहीं होती, वो भी डिस्कस हो रही होती है, और इतनी क्लैरिटी मिल जाती है जिससे कि आपके डिसीजन मेकिंग में डेफिनेटली हेल्प मिलती है. तो अगर आपको रजिस्टर करना है, आप सौरभ जी को कॉल करके या टेक्स्ट करके रजिस्टर कर सकते हैं, या teamsabarwal.com वेबसाइट पे भी जाएंगे, वहां पे भी आपके लिए एक तरीका होगा रजिस्टर करने का. पर इस सेमिनार में ज़रूर जाइएगा, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज एंड डिसीजन डेफिनेटली. थैंक यू सौरभ जी, अगले इसी हफ्ते आपसे दोबारा कनेक्ट जरूर करना चाहूंगी मैं, देखेंगे आप टाइम निकाल पाएंगे तो.
2: जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच सौरभ जी.
1: थैंक यू जी.

पंचम दा की धुन है ये, आप सुन रहे हैं फिल्मी नुकर्स सीएमआर 101.3 एफएम पर स्वाति और पायस्विनी के साथ। और एक क्विक रिमाइंडर कि आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं 6:15 बजे, वो आप के साथ भी करेंगे बात हमारे मिस्टर न्यूमरोलॉजिस्ट इन द सेगमेंट नंबर्स डू वंडर्स। आप हमारे साथ उसमें ट्यून इन कर सकते हैं, उस वक्त ट्यून इन रह सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चंस पूछने हैं उनसे डायरेक्टली, वो जो भी बात करते हैं वो ध्यान से सुन सकते हैं। और उसके बिना पर अगर आपके कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, क्वेश्चंस हैं, कुछ काउंटर क्वेश्चंस हैं, तो भी आप उनसे सवाल उस वक्त पूछ सकते हैं। स्टूडियो का नंबर रहेगा 4165930055। ऑल्सो राइट आफ्टर दिस नेक्स्ट सॉन्ग हम करने, बेसिकली एड ब्रेक के बाद हम करेंगे हमारा गेस द सॉन्ग सेगमेंट भी। तो अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं जिसमें आप गेस करेंगे, सही गेस करेंगे तो इनाम भी मिलेगा, तो भी हमारे साथ ट्यून इन रहे। राइट आफ्टर दिस 2-3 मिनट्स हम करेंगे वो। और स्टूडियो के नंबर उसके लिए भी वही रहेगा 4165930055।

0: अगर देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: क्या आपके होम एंड ऑटो इंश्योरेंस के रिन्यूअल का टाइम आ गया है? क्या आप गुड रेट्स में एक सही कवरेज ढूंढ रहे हैं? तो कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑलस्टेट की बीसी सागर साउथ एजेंसी एट 6474535353। दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस पर $2,029 तक की सेविंग्स कर सकते हैं। सिमरन बेंस एंड ऑलस्टेट के साथ आप हैं इन गुड हैंड्स। कॉल सिमरन बेंस एट 6474535353, 6474535353. And yes, even for one car and a home, $400 to $500 की annual savings possible. Call Simran Benz 6474535353.
2: हर एक great journey शुरू होती है एक सही partner के साथ. Vains Auto Group में हमारे dealerships का wide network diverse communities को proudly serve करता है. Expert car buying guidance, premium service और ऐसा support जो आपकी language समझे. हर dealership का promise एक ही है. Trusted care, consistent service, or complete automotive support. From first drive to lifetime care, Vains Auto Group is always there. Vains Auto Group, Vains Auto Group, Canada. Visit vainsautogroup.com.

0: जेनेसिस मार्कम पर लग्जरी मिलती है एक एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा। लीज कीजिए ब्यूटिफुली डिजाइन्ड 2026 G70 सिर्फ 1.9% से अप टू 39 मंथ्स, या लीज कीजिए 2026 GV70 सिर्फ 2.9% से। बुक योर टेस्ट ड्राइव टुडे। Visit genesismarkham.ca, located at Woodbine Avenue and John Street, Markham. Genesis Markham, doing luxury your way. A proud member of Vane's Auto Group.
1: Ding dong! Guess the song. Right answer wins, and no prize for her wrong.

To participate in the contest, studio ka number rakhe handy. That's 416-593-0055. नंबर याद रखें, क्योंकि अभी आप जब अनुज जी से बात करेंगे, हमारे मिस्टर न्यूमरोलॉजिस्ट, आफ्टर दिस सेगमेंट जब उनका सेगमेंट होगा तभी यही नंबर काम आएगा. अच्छा, मैं एक बहुत ही पॉपुलर गाने का छोटा सा पोर्शन सुनाने वाली हूँ बीच में से, और बहुत ही पॉपुलर है. आपको बस सुन के बताना है कि आप इसका मुखड़ा मुझे गा के सुना सकते हैं या नहीं. ये चीज़ ज़रूर बता दूँ, बहुत ही फिल्म ये इतनी हिट नहीं रही थी, मेरे ख्याल से फ्लॉप में थी, पर गाना आज भी सुपर हिट है. लेट्स सी इफ़ यू कैन टेल मी एंड यू आर गोइंग टू विन अ खूबसूरत प्राइज़.

ऑल राइट, ये जो गाना आपने सुनी, गाने की लाइन सुनी, ये आपको मुझे गा के बताना है कौन सी, पूरा इसका मुखड़ा। और ये गाना मैं इतना बता सकती हूँ, आर डी बर्मन का म्यूजिक है, किशोरदा की आवाज़ आपने सुन ही ली। और इस गाने के लिए कहते हैं कि ये एक, मैंने नहीं सुना पर ये मैं पढ़ रही थी कहीं कि 1001 एल्बम यू मस्ट हियर बिफोर यू डाई, उसमें इस गाने का भी नाम आता है। अपने आप में ये भी यू नो उपलब्धि होती है कि 1001 सॉन्ग्स में इसका गाने का नाम आता है। और ये जो फिल्म थी ना, ये हिंदी और इंग्लिश में जैसे बनी थी, टू वर्जन्स थे इसके रिलीज हुए थे। इंग्लिश वाला वर्जन इसलिए बना था कि यूएसए में चलाया जाएगा, और उसका टाइटल शालीमार नहीं था, उसका टाइटल था रेडर्स ऑफ द सेक्रेट स्टोन। वो बात और है ना, वो चला ना वो चली। एनीवे, आप मुझे गाने का मुखड़ा गा के सुनाएं और जीत जाएं ये इनाम। स्टूडियो का नंबर 4165930055, मैं फिर से सुनवाती हूँ सो दैट यू गाइस कैन बी श्योर।

0: हाँ आगे क्या गाते हैं किशोरदा, आपको मुझे वो गा के है सुनाना। लेते हैं पहला कॉल। हेलो जी, हेलो, आपका नाम बताएंगे सर मैम? सॉरी,
1: रोहित मलिक।
0: रोहित मलिक, अच्छा रोहित जी हमें गा के सुनाएंगे, क्या मुखड़ा है गाने का? चिंगा लाला हूँ।
1: पर हमको पार कर ना सके।
0: क्या बात। वैसे ये सिचुएशन कैसी होती है, मतलब मुझे बड़ी कंफ्यूजिंग लगती है कि हम बेवफा तो नहीं थे पर हम वफा कर ना सके, ये क्या होता क्या है ये? मतलब जब वफा नहीं कर सके तो बेवफा तो अपने आप हो गए, है ना? पता नहीं, कहते ना परिस्थिति टू परिस्थिति, रीजंस टू रीजंस। बट एनीवे रोहित जी आप जीत जाते हैं ये, आप होल्ड पे रहें, आपकी डिटेल्स लेते हैं और मैं बताती हूँ आप क्या जीते हैं। और जो और कॉल कर रहे हैं प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहें, मेरे को टाइम मिलता है तो मैं गेस द सॉन्ग सेगमेंट फिर से एक बार करूंगी। बाकी अनुज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फॉर द सेगमेंट नंबर्स डू वंडर्स। आपके क्वेश्चंस के लिए अगेन नंबर इज 4165930055। स्टे ट्यून्ड।

0: Advertise with Filmi Nukkad on CMR at 5 PM, your prime drive time show. Call Swati at 647-830-5042. That's 647-830-5042. It's the free time.
1: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
2: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
1: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
0: अब फायदा उठाएं जून के हॉट ऑट रेट्स का विद अमित खुराना। 3 years fixed 4.19%, 5 years fixed 4.24%, 5 years variable 3.55%। साथ ही मिले $5,100 तक का हॉट ऑट कैशबैक भी, और इतना ही नहीं एक गिफ्ट कार्ड भी अप टू $1,500। है ना आइसिंग ऑन द टॉप। कॉल अमित खुराना एट 6473412785, 6473412785, और विजिट amitkurana.com।
3: हाइब्रिड के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन क्या एक गैस लेक्सस आपके लिए ज्यादा सेंस बनाता है? डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस पर NX350 और RX350 प्रीमियम पैकेजेस इमीडिएट डिलीवरी के लिए अवेलेबल हैं, और वेलकम बैक लॉयल्टी ऑफर के साथ आप सेव कर सकते हैं थाउजेंड्स। लीज स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट $657 पर मंथ फॉर 24 months विद एन अमेजिंग 0.4% लीज रेट यूजिंग योर रिफंडेबल डिपॉजिट्स। आज ही विजिट करें DonValleyNorthLexus.com, a proud member of Wayne's Auto Group.
4: Another Don Clean with the Don Ducks.
5: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
6: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
5: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
6: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
5: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
6: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
5: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
4: Dawn Platinum, the better grease getter.
0: Get on your feet with Peppy Nukkad Beats.

समर ड्राइव का एक्साइटमेंट बढ़ाएं विद टंड्रा एट डॉन वैली नॉर्थ टोयोटा। आपके नेक्स्ट एडवेंचर के लिए बिल्ट और फाइनेंसिंग सिर्फ 3.99% से। बिग सिलेक्शन, बिग समर मोमेंटम, टोयोटा करोला भी इन स्टॉक है आपकी रोजाना ड्राइव के लिए। बुक अ टेस्ट ड्राइव टुडे, वी पे टॉप डॉलर फॉर योर ट्री। इट्स टाइम टू टोयोटा एट डॉन वैली नॉर्थ टोयोटा.com। लोकेटेड है 3300 स्टील्स एवेन्यू ईस्ट मार्कम पर। Proud member of Vane's Auto Group.

0: ऑल राइट, जैसा कि हमने किया था अनाउंस, हमारे साथ जुड़ने वाले थे और जुड़ चुके हैं हमारे मिस्टर न्यूमरोलॉजिस्ट इन द सेगमेंट नंबर्स टू वंडर्स. एवरी ट्यूसडे वो आते हैं, आपके कुछ सवाल भी लेते हैं और अपनी भी कुछ बातें बताते हैं, जस्ट टू मेक श्योर एंड यू नो मेक अस बिलीव, जो कि मुझे तो होने भी लगा है बिलीव कि नंबर्स कैन डू वंडर्स इन आवर लाइव्स. कैसे कर सकते हैं उस पर भी हम सवाल, वो बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते हैं तरह तरह के. आप लोग बहुत सारे सवाल भी पूछते हैं कि जब डाउट्स होते हैं या जब क्लैरिफिकेशंस चाहिए होते हैं. तो पहले तो ये बता दूँ कि बी ओपन विद योर क्वेश्चंस. आप पूछना चाहें तो बेझिझक पूछें, बिकॉज अनुज जी इज ऑलवेज अप फॉर एनी चैलेंजेस. तो जो भी आप पूछना चाहते हैं, ही इज़ विलिंग टू आंसर दोज क्वेश्चंस. ऐसा नहीं होता कि अरे ये क्या पूछ लिया, बिकॉज अपनी नॉलेज पे है भरोसा. नंबर्स डू वंडर्स, इस बात पर है उन्हें भरोसा. दूसरी बात, अगर आपके कोई है सवाल तो बस अपना फोन नंबर चाहे तो ना भी बताएं, अपना नाम चाहे तो ना भी बताएं, हमारा फोन नंबर नोट कर लें और अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं और अपना सवाल पूछ डालें. हमारा नंबर रहता है 416-593-0055 ड्यूरिंग द सेगमेंट, एंड आफ्टर द सेगमेंट नंबर रहता है अनुज जी का 647-330-8555. That's the number you can use after the segment is done. 647-330-8555. अच्छा, अनुज जी से आपकी बात कर रहा हूँ, उससे पहले एक चीज और बता दूं कि फिल्मी नुक्कड़ है तो हम इनसे फिल्मी सवाल भी पूछते रहेंगे, कि न्यूमरोलॉजी में फिल्मी और न्यूमरोलॉजी का कनेक्शन बहुत होता होगा मेरे ख्याल से. यस अनुज जी.
1: नमस्कार स्वाति जी और सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार. मैम आपने बिल्कुल सही कहा, न्यूमरोलॉजी फिल्मों में बहुत ख्याल से शोले बाद में आई थी और न्यूमरोलॉजी पहले आई थी.
0: अच्छा.
1: आप मानेंगे एक डेट ऑफ बर्थ है 27 सितंबर 1932.
0: अच्छा, 1932 बाप रे.
1: 1932.
0: ओके.
1: इस डेट के ऊपर एक महान हस्ती ने जन्म लिया था जिन्होंने मेरे ख्याल से न्यूमरोलॉजी को फिल्मों में इंट्रोड्यूस किया.
0: ओके.
1: आपने इनका नाम तो सुना होगा, डेट नहीं मालूम.
0: हाँ.
1: इनका नाम है यश चोपड़ा जी.
0: अरे यस, सबने सुना है, मतलब कौन नहीं जानता.
1: आपने अब कभी भूल गया मैं तो कभी कभी कभी देखिए आपने.
0: हाँ,
1: उसका
0: बार
1: नाम नोटिस किया.
0: हाँ.
1: कभी कभी जो दूसरा कभी है,
0: आई ई,
1: दूसरे कभी में एक ई एक्स्ट्रा है.
0: हाँ, हाँ,
1: न्यूमरोलॉजिकली करेक्टेड है.
0: ओ, ओ.
1: ऐसे आपको 500 एग्जांपल्स मिलेंगे जो आप कभी नोटिस भी नहीं करते होंगे. कहो ना प्यार है, प्यार में डबल ए है, नाम में डबल है क्रिश.
0: हाँ,
1: क्रिश में डबल आर है.
0: हाँ,
1: राइट.
0: मैं राकेश रोशन साहब को तो मैं देखती हूँ, उनकी फिल्मों में एक के का कंसेप्ट होता है बहुत ज्यादा, और उन मतलब वो बहुत ज्यादा
1: वो न्यूमरोलॉजी को फॉलो करते हैं.
0: यस,
1: के वो अपना लकी नंबर मानते हैं एंड खुद भी बॉर्न 6 है.
0: अच्छा.
1: तो बहुत अच्छी डेट ऑफ बर्थ है, सूट करती है, और उन्होंने न्यूमरोलॉजी की राह पकड़ी तो सक्सेस कहां से कहां पहुंच गया.
0: खून भरी मांग, कारोबार,
1: सारी मूवी खुददार से उन्होंने के का फॉर्मूला अपनाया था,
0: वहीं से अप्लाई था.
1: तो कोई बहुत ही पुरानी बात है. आपसे मैं एक और नाम पूछता हूँ.
0: हाँ,
1: हाँ. साजिद अली खान पता है आपको कौन है? नॉट द डायरेक्टर और द सिंगर.
0: अच्छा. ओके.
1: सैफ अली खान का नाम साजिद अली खान.
0: अच्छा. ओके.
1: तो ऐसे हमको पता नहीं है, हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं. पद्मावती से नाम पद्मावत हुआ.
0: हाँ.
1: चलिए लास्ट का आए तो निकला, मगर डबल ए है उस नाम में.
0: हाँ.
1: राइट, कभी नोटिस नहीं करते हैं हम.
0: हाँ.
1: सिंग इज किंग, डबल एन है किंग में.
0: ओके.
1: राइट, और सबसे बड़ी बात दबंग लास्ट में डबल जी आता है.
0: हाँ.
1: दबंग की वैल्यू 19 से 1 हो जाती है. सलमान खान इज अ बॉर्न 9 27 दिसंबर, तो उनको बहुत सूट करता है.
0: ओके.
1: राइट, तो ये सब कुछ एक कुछ आपको स्पेलिंग
0: मिस्टेक मतलब फिल्में जो हिट होती हैं उनके पीछे आप ये कह रहे हैं कि ठीक है स्क्रीन प्ले भी अच्छा है, ठीक है स्टोरी भी अच्छी है, ठीक है सबने मेहनत करी है, लेकिन कुछ क्रेडिट भाई न्यूमरोलॉजी को भी दे दो क्योंकि उन्होंने दिमाग लगाया है इसमें.
1: देखिए कितने ही कैरेक्टर्स हैं, अजय देवगन, काजोल, आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव, करिश्मा कपूर जी ने अभी अभी अपने नाम से एच निकाला है. राइट. अभिषेक ए बच्चन किया उन्होंने जब उनकी वेब सीरीज आई थी वो हर्षद मेहता वाली, उससे पहले उन्होंने नाम में एक ए लगाया. ऋतिक रोशन खुद देखिए, अक्षय खन्ना अभी दबंग से पहले सॉरी धुरंधर से पहले उन्होंने अपने नाम में ई एक्स्ट्रा लगाया है.
0: हाँ, अक्षय.
1: राइट.
0: हाँ.
1: और राजीव हरिओम भाटिया को तो आप शायद जानते ही होंगे.
0: अक्षय कुमार
1: है. तो ऐसे ऐसे बहुत इतने एग्जाम्पल्स हैं जहां पर इतनी नॉन पर्सनैलिटीज. और क्रिकेट की बात करूं तो यहां पर भी देखिए जर्सी नंबर्स तक न्यूमरोलॉजिकली डिजाइन होते हैं. तो ये बहुत नंबर्स हमारी लाइफ में डे इन डे आउट चलते रहते हैं जिनको हम इग्नोर करते हैं.
0: ओके, तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि फिल्में जो हम देखते हैं या सीरीज या जो स्टार्स हैं जिनको हम इतना फॉलो करते हैं, चाहे वो क्रिकेट के हों, चाहे बॉलीवुड के हों या कहीं और के, न्यूमरोलॉजी समथिंग पीपल ऑलवेज बिलीव्ड एंड फॉलोड दैट दे डू वंडर्स. नंबर्स ऑलवेज डू ऑलवेज डिड वंडर्स और अभी भी करते हैं, बस हमें पता नहीं था इसलिए हमने उसको कभी अपने लिए यूज नहीं किया.
1: यूज नहीं करते, ये सेलिब्रिटीज यूज करते हैं तो देखिए इनका सक्सेस कहाँ से कहाँ चले जाता है. आप मानेंगे एकता कपूर
0: जी,
1: राइट, जो टेलीविजन क्वीन है, वो बिना किसी की डेट ऑफ बर्थ किए देखे उसको मैच किए, बिना किसी को हायर नहीं करती है, किसी को कोई काम की बात नहीं करती.
0: तो ये भी रिक्वायरमेंट है रिज्यूमे में कि न्यूमरोलॉजी वाइज वहां अवेयर है.
1: एम्प्लॉयमेंट छोड़िए, वो काम भी नहीं करेंगी अगर उनकी डेट के साथ जेल नहीं करता है. तो इतने फर्म बिलीवर्स हैं जिनको हम ऐसे ही नजरअंदाज कर देते हैं.
0: राइट, एंड आप देखिए
1: क्रिकेट टीम की बात देखें तो सबकी जर्सी नंबर्स मैक्सिमम 9 पे आते हैं. रोहित शर्मा 45 पहनते हैं, विराट कोहली 18 पहनते हैं. इसके पीछे भी कनेक्शंस हैं.
0: हाँ, मेरा तो कभी ध्यान ही नहीं गया था.
1: इसीलिए मैं ये दो फेमस बातों की बात लेके आया कि बॉलीवुड एंड क्रिकेट तो हम इंडियंस के खून में होता है. राइट, और न्यूमरोलॉजी की आज एक और बात बताता हूँ आपको. अक्सर आपने सुना होगा राम से बड़ा राम का नाम.
0: हाँ.
1: तो न्यूमरोलॉजी में भी नाम को ब्रह्मास्त्र माना गया है. सबसे बड़ा सक्सेस जो आता है वो आपके नाम से ही आता है. इसीलिए आपने देखा इतने मैंने एग्जांपल्स दिए, इरफान खान, किरण खेर, सबने अपने नाम चेंज किए हैं, थोड़े थोड़े ट्वीक किए हैं. राइट, वो ट्वीक करके ही जो अलाइनमेंट आती है उसी से सक्सेस आती है.
0: तो ये अलाइनमेंट जब हम देख रहे हैं ये क्या देख के देते हैं? जैसे मेरा नाम स्वाति है, अगर मुझे इसमें चेंज करना है तो क्यों चेंज करना है, मुझे कैसे पता चलेगा मुझे चेंज करना है, और क्या लेटर अल्फाबेट बढ़ाऊं घटाऊं, वो कैसे पता चलता है?
1: ये काम एक एक्सपर्ट का है, इसको एक्सपर्ट पे ही रहने दीजिए. मैं खुद को नहीं मानता, आप किसी को भी और जानते हो, बिकॉज यू नो इसमें थोड़ी सी साइंस लगती है. करीब 14-15 इसमें पैरामीटर्स हैं जो हमको फॉलो करने पड़ते हैं. राइट, वरना आप सिर्फ शेल्डियन न्यूमरोलॉजी देखें, आपको बर्थ चार्ट, आपको हर नंबर की वैल्यू मिल जाएगी.
0: अच्छा.
1: राइट, तो उसको देख के आप अपने अलाइन कर सकते हैं, बट वो बहुत बेसिक लेवल पे हो जाएगा. आपको सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक करनी है, आपका बर्थ नंबर क्या है, डेस्टिनी नंबर क्या है. जैसे आज की बात करूं तो आज क्या तारीख है? 14 जुलाई
0: जी,
1: 2026
0: जी.
1: राइट, आज की ही डेट की बात करते हैं तो 14 से आज का बर्थ नंबर जो भी पैदा हुए हैं वो 5 पे आ जाएगा.
0: जी, जी.
1: 5 एक बहुत अच्छा लकी नंबर है, स्ट्रांग नंबर है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी देता है, साथ साथ में आलस देता है. तो और दूसरा नंबर होता है हमारा डेस्टिनी नंबर. ठीक है, अगर आज की डेट की बात करें, बर्थ नंबर जैसा मैंने बताया 5 आ जाएगा. डेस्टिनी नंबर में हमको कुछ नहीं करना है, सारे के सारे जितनी भी आपकी डेट में न्यूमेरिकल वैल्यूज आ रही हैं इनको ऐड कर लीजिए. सो 5 + 7 + 1 तो 8 और 5 13, ये 4 पे आ जाएगा. डोनाल्ड ट्रंप का भी यही कॉम्बिनेशन है, 5 और 4.
0: वाओ
1: जी. तो ऐसे ही हर अक्षर को, जैसे ए को 1 की वैल्यू दी गई है, ई को 5 दी है, एच को 5 दी है, तो ये आपको थोड़े से टाइम में मालूम पड़ जाएगा. फिर हमको देखना होता है कि हमारा नेम नंबर जो है वो हमारे बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर से मैच करता है कि नहीं.
0: अच्छा, किसी एक से मैच करे,
1: दोनों से करना
0: चाहिए.
1: दोनों से करना चाहिए. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा कॉलिंग नेम भी. राइट, जैसे आपका नाम स्वाति गुप्ता है मगर कॉलिंग नेम स्वाति है
0: जी.
1: आपको कोई स्वाति गुप्ता जी कह के नहीं बुलाता है, स्वाति जी बुलाते हैं. राइट, तो स्वाति की वैल्यू कितनी आती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है. तो नेम नंबर को मैं बोलता हूँ, नंबर तो ठीक है मगर नेम की वाइब्रेशंस क्या आ रही है, उसकी साउंड क्या आ रही है, उस सब पे भी काम करना होता है.
0: और जैसे जिनके निकनेम्स होते हैं तो अधिकतर लोग घर में या परिवार वाले वो नाम से बुलाते हैं, लेकिन काम पे और कॉलेज में वो नाम से बुलाते हैं.
1: अक्सर
0: तो
1: ऐसा होता है, चिंटू, बिट्टू, मिंटू. हाँ. हमारे बहुत नाम होते हैं.
0: राइट,
1: बट मैम उसका इफेक्ट आता है बगर 10

0: इतने लोगों ने अपने नाम की स्पेलिंग बदली या नाम ही बदला,
1: नाम तो बदला,
0: देयर इज एन ऑप्शन,
1: देयर इज यू नो हर चीज. नंबर्स तो ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, साथ साथ में अपने करियर. अभी एक्टिंग के लिए नंबर 2 नंबर 7 बहुत अच्छा होता है. अमिताभ बच्चन जी का नाम जो है वो नंबर 7 पे आता है. तो आपका करियर भी आपके नेम के ऊपर डिपेंड करता है, किस नेम की वाइब्रेशंस आपको सूट करती हैं, किसकी किस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको सूट करती है या आपके काम के साथ में मैच करती है, हमको वो भी देखना होता है.
0: ओके, वेरी इंटरेस्टिंग टू नो. मुझे बहुत मजा आ रहा है कॉन्वर्सेशन में. आपके कुछ सवाल हो सकते हैं इससे रिलेटेड भी, काउंटर क्वेश्चंस हो सकते हैं इससे रिलेटेड, और या फिर कुछ अपने ही क्वेश्चंस पूछने हो सकते हैं अपनी बर्थ डेट से रिलेटेड. आप इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद हमसे जरूर जुड़िएगा और आप डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं अनुज जी से राइट आफ्टर दिस स्मॉल ब्रेक. स्टूडियो का नंबर 4165930055. जुड़े रहे हमारे साथ, वी आर रेडी टू टेक योर कॉल्स.

0: It's time to Toyota at Markville Toyota. Corolla L lease kijiye from $84 weekly for 60 months with zero down. Ya Corolla Cross L front wheel drive lease kijiye from $98 weekly for 60 months with zero down. Or up Tundra 4x4 Crew Max Limited Nightshade lease kijiye from $208 weekly for 60 months. Great offers. Sirf Markville Toyota par. More details ke liye visit kare markville.com. Markville Toyota, a proud member of Vane's Auto Group.
1: ऑल राइट, आप हैं इस खास सेगमेंट में. हर ट्यूसडे को हमारे साथ जुड़ते हैं अनुज उब्रॉय जी, हमारे मिस्टर न्यूमरोलॉजिस्ट. सेगमेंट रहता है नंबर्स डू वंडर्स. हमने अभी बात करी कैसे कैसे नंबर्स वंडर कर सकते हैं. आपके सवाल लेने के लिए अब हमें तैयार. स्टूडियो का नंबर 416-593-0055. मैं फिर से रिपीट करती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं आप बहुत जल्दी जल्दी बोलती हैं. 416-593-0055 ये स्टूडियो का नंबर है. आप इस पे कॉल करते हैं तो आप सवाल डायरेक्ट पूछ सकते हैं. काउंटर क्वेश्चंस भी कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं. बट मैं साथ बैठी हूँ तो प्रिविलेज ले लेती हूँ. मेरा सवाल, अभी हम गाना सुन रहे थे वड्डी

0: रावण, ठीक है। अब जो जिन लोगों को कई बार इस तरह की आदतें होती हैं, बड्डी शराबन वाली या यू नो कैसी भी, जो कि हेल्दी नहीं रहती एक टाइम के बाद, वो भी न्यूमरोलॉजी से कुछ डील कर सकते हैं?
1: बिल्कुल कर सकते हैं मैम। देखिए, सबसे पहली बात होती है कि
0: एडिक्शन,
1: क्या एडिक्शन को आप छोड़ना चाहते हैं?
0: हाँ,
1: जब तक आपके अंदर से वो फीलिंग नहीं आएगी, वो आवाज नहीं आएगी, तब तक कोई रेमेडी काम नहीं करती।
0: अच्छा, वरना न्यूमरोलॉजी काम इसमें
1: काम बिल्कुल हेल्प कर सकती है मैम, बिल्कुल हेल्प कर सकती है।
0: इंटरेस्टिंग। ऑलराइट, हम लेते हैं नेक्स्ट फर्स्ट कॉलर, लेट्स सी इफ दे हैव द राइट आंसर। हेलो जी। हेलो,
2: हाँ
0: हाँ जी, बताएं, अपना नाम बताना चाहें तो नाम भी बताएं, वरना क्विकली क्वेश्चन और अपना डेट ऑफ बर्थ।
2: हाँ, नाम बता दो प्रवीण, कि मेरा सवाल मेरा डेट ऑफ बर्थ लेके लेके नहीं है, एक जनरल सवाल है, आई थिंक बाकी लोग के भी
0: होगा
2: ये सवाल, हो सकते हैं।
0: प्लीज गो अहेड।
2: वो है कि इंडिया में कभी कभी होता है कि डेट ऑफ बर्थ ना, वो जो एक होता है जो लोगों को पता नहीं होता है, और फिर एक ऑफिशियल डेट ऑफ बर्थ आ जाता है जब वो टेंथ का फॉर्म भरते हैं ना, उस समय वो कुछ डेट डाल देते हैं।
0: जी, जी,
2: तो किसी किसी का इस तरह का सिचुएशन हो जाता है कि दो हो जाता है, तो इस केस में कौन सा डेट ऑफ बर्थ का यू नो कैलकुलेशन करना चाहिए, और
0: हाउ डज इट वर्क विद दिस, क्योंकि ओरिजिनल नहीं है, वहां पर हमने बना लिया है।
2: हाँ
1: सर, आप कभी बचपन में जब स्कूल में नंबर कम आते थे तो अपनी रिपोर्ट कार्ड पे आप नंबर चेंज कर देते थे, 6 का 9 बना दिया या 3 का 8 बना दिया?
0: सर, तो किया है तो बताएं।
1: सबने किया होता है। तो सर, क्या आपके ऑफिशियल रिकॉर्ड पे वो चेंज हो जाता है?
2: नहीं,
1: बस यही आपके सवाल का जवाब है।
2: तो जो ऑफिशियल, अच्छा, जो ऊपर से
1: बिल्कुल सर, जो ओरिजिनल है वो ही चलेगी, जो ऑफिशियल है वो नहीं चलेगी।
0: पर जिनको नहीं पता तो नहीं पता,
1: उसका भी तरीका है, डेट ऑफ बर्थ आपके ट्रेड से, जैसे हमने एक बार आपके शो पे ही किया था, किसी ने बोला
0: था, बताया था हमें ये सेम क्वेश्चन भी, वी वर राइट,
1: तो वो जरूर पता लग सकता है आपके ट्रेड से, आपके बिहेवियर से हम डेट पता कर सकते हैं।
2: अच्छा,
1: ज्यादा करके क्या होता है कि 26 है या 27 है या उस दिन वो थी, जन्माष्टमी थी या ईद थी, इस तरह के अक्सर आते हैं।
0: हाँ, तो, कौन सा महीना था ये पता होता है, बैसाख था,
1: करेक्ट, you know? तो वो पता लग जाता है, कोई मतलब आपके ट्रेड से, आपके बिहेवियर से मालूम पड़ जाता है।
2: लोग बोलते हैं होली के 2 दिन के बाद हुआ था,
1: बिल्कुल होली के 3rd दिन हुआ था, तो हम उस साल की होली पता कर सकते हैं आजकल इंटरनेट के जमाने में। राइट, आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन।
0: थैंक यू जी, चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो जी। हेलो, मैं यहाँ पे सबसे बोलूंगी हमारे साथ थोड़ा पेशेंस रहे, मैं सबकी कॉल धीरे धीरे करके लेती हूँ, तो ट्यून इन रहें, इम्पेशेंटली डिस्कनेक्ट ना करें, नंबर सबका आएगा। तो हेलो,
3: हेलो,
0: हाँ जी, नाम बताना चाहें तो नाम भी बताएं, वरना सीधे क्वेश्चन पूछ सकते हैं विद योर डेट ऑफ बर्थ।
3: राइट, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इन माय लाइफ, थ्रू आउट माय लाइफ आई हैव ऑलवेज प्रोग्रेस, बट मेरा सब कुछ डिले होता जाता है, व्हेन आई प्रोग्रेस ऐसे एक्सपेंसेस, ऐसे लॉसेस आ जाते हैं, आई एम नॉट एबल टू सेव, एंड आई डोंट गेट अ फैमिली सपोर्ट, आई गेट माय चिल्ड्रन सपोर्ट, आई डोंट गेट माय वाइफ सपोर्ट। आई शेयर माय डेट ऑफ बर्थ, आज 1969। व्हाट इज द फ्यूचर नाउ, व्हाट डज इट, व्हाट डू यू फील, व्हाट क्या होगा?
1: आई गेस यू हैव बीन ऑन द शो बिफोर आल्सो।
3: Yes.
1: I remember your date of birth, sir. 1-3 का combination है, बहुत अच्छा है, 99 आता है, 999 आता है rather. इस वजह से थोड़ा सा anger issues हो सकते हैं, and definitely last time शायद मैंने आपको बोला था, contact me offline sir, हम लोग आपकी wife की भी date निकाल के we can make a comparison chart.
3: Okay, fine, sure, okay. Then I'll contact you.
1: All right, thank you.
0: चलें next caller, hello जी.
4: हेलो,
0: हाँ जी, आप सवाल पूछ सकते हैं विद योर डेट ऑफ बर्थ, इफ देयर इज अ कनेक्शन ऑफ द क्वेश्चन विद द डेट ऑफ बर्थ।
4: हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ है 10th May 1982।
0: जी,
4: करियर फाइनेंशियल्स के बारे में जानना चाहता हूँ।
0: करियर एंड फाइनेंशियल्स,
1: सर थोड़ी गाड़ी अटकी हुई है यहाँ पे। सर सूर्य शनि मिलते हैं ना जब 1 और 8, तो थोड़ा सा डिले करते हैं सर, सक्सेस डिलेड बट नॉट डिनाइड, ये पंचलाइन आप याद रखें, ये आपके लिए बनी है।
0: और फिर जब ऊपर वाला देगा तो छप्पर फाड़ के देगा।
1: जब मिलेगा तो सर वो इतना मिलेगा, 8 नंबर देता ही ऐसे ही है कि संभाले नहीं संभलता, बट देता थोड़ा अपनी मर्जी से है।
4: बिजनेस इज करेक्ट आर द जॉब?
1: हाँ जी,
4: बिजनेस सही है या नहीं तो जॉब सही है?
1: सर अभी तो थोड़ा स्ट्रगल ही है, 5 और 1 6 7, जी थोड़ा सा ऊपर नीचे ही है लाइफ, आपको सेकेंड हाफ में बहुत सक्सेस मिलेगी, आप बिजनेस डेफिनेटली कर सकते हैं, बट अभी जब तक 42-45 साल की उम्र तक थोड़ा जॉब की तरफ ही ध्यान दे. ओके
0: चलिए नेक्स्ट कॉलर. हेलो जी.
5: हाय.
0: हाय. यस प्लीज गो अहेड.
5: या माय नेम इज राजन. इट्स रिगार्डिंग माय सन. उसका डेट ऑफ बर्थ है January 20, 1996. आई वांट टू हियर द एक्सपर्ट कमेंट फॉर दिस डेट ऑफ बर्थ.
0: ओके
1: 20th January 1996.
5: यस
1: सर. अमिताभ बच्चन का कॉम्बिनेशन है 2-1.
0: अरे क्या बात.
1: अच्छी स्ट्रांग डेट ऑफ बर्थ है सर. ये अच्छा कर सकते हैं. थोड़ा सा ना मूड स्विंग्स है, गुस्सा जल्दी आ जाना, आंसू भी जल्दी निकल जाना, थोड़ा टेम्परामेंट का इशू है, ऊपर नीचे होता है, इमोशनल आउटबर्स्ट बेसिकली. उसके अलावा यू नो ही विल डू वेरी वेरी वेल इन द सेकंड हाफ ऑफ हिज लाइफ. इट्स अ गुड स्ट्रांग कॉम्बिनेशन.
5: मैरिज प्रॉस्पेक्ट्स है
1: तो क्यों नहीं है सर. बहुत नंबर टू तो होता ही रिलेशनशिप का नंबर है.
5: अच्छा.
1: ओके. थोड़ा सा मूड स्विंग्स ज्यादा हो जाते हैं कभी कभी, गुस्सा एकदम जल्दी आ जाना.
5: सही है. आप सही है. शॉर्ट टेम्पर है एकदम.
1: शॉर्ट टेम्पर भी नहीं बोलूंगा सर. शॉर्ट टेम्पर वो होता है जो गुस्सा रिटेन करे. ये गुस्सा रिटेन भी नहीं करते. ये हिंदी में एक वर्ड है शरण भंगूर. एक मिनट में गुस्सा आ जाता है, एक मिनट में आंसू भी निकल जाते हैं.
0: कितने दिनों बाद मैंने वर्ड सुना शरण भंगूर. सुंदर.
5: एकदम सही है. एकदम सही है
1: सर. शिव अगर आप फॉलो करते हैं, मुझे पता नहीं है आप क्या रिलीजन फॉलो करते हैं, अगर करते हैं तो शिव जी के ऊपर जल चढ़ाइए, वो इनके लिए अच्छा है. और पानी की बिल्कुल वेस्टेज नहीं करें.
5: वेरी गुड. थैंक यू. डेफिनेटली फॉलो.
1: यू वेलकम.
5: थैंक यू सो मच.
1: यू वेलकम.
0: चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ. हेलो जी. नाम बता सकते हैं तो बताएं, वरना सीधे क्वेश्चन पूछ सकते हैं.
6: या हेलो. थैंक्स फॉर टेकिंग माय कॉल. ओके. मेरा क्वेश्चन है आपसे, मनोज जी से, कि मेरा 4 और 6 कॉम्बिनेशन है.
1: ओके.
6: तो ये मेरा जॉब चेंज इस साल है
1: सर. डेट बतानी पड़ेगी क्योंकि
6: 22nd September 1973.
0: अनु जी कहते हैं कि मैंने ठीक है सिखा दिया है आपको मूल्यांक और भाग्यांक, पर मुझे खुद भी निकल.
1: नहीं, ये इस साल के बारे में पूछ रहे हैं तो वो पर्सनल ईयर पर्सनल मंथ तक चला जाएगा.
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा. ओके
1: सर. इस साल में चेंज है आपके उसमें?
6: नहीं, अच्छे के लिए, मतलब बेटरमेंट है.
1: सर चेंज तो है, बेटरमेंट आप खुद देखिए. ठीक है. क्योंकि नंबर 5 आपका ना पर्सनल ईयर, अभी आप बुध की दशा में है न्यूरोलॉजिकली, तो ये थोड़ा चेंज की तरफ लेके जाता है. बट बहुत सडन चेंज मत करिए. थोड़ा सा यू नो आई एम नॉट टेलिंग यू टू पुल अप द हैंड ब्रेक, बट एटलीस्ट ड्राइव केयरफुली. ओके. क्योंकि बहुत ये बहुत यू नो बहुत ज्यादा एक्टिविटी लेके आता है ये टाइम लाइफ में. सो कभी कभी ऐसा भी होता है कि गलत डिसीजन हो जाते हैं, बट अदरवाइज फैंटास्टिक सर. 4-5-6 का 4-6 का कॉम्बिनेशन है. साल 5 का आ गया तो ये अच्छा टाइम है.
6: और नेक्स्ट ईयर भी ठीक है?
1: नेक्स्ट ईयर तो और अच्छा है.
6: और
1: आप होम रन पे आ जाएंगे ना?
6: हाँ जी.
1: अभी 5 है तो नेक्स्ट ईयर 6 हो जाएगा ना, तो 6 मतलब होम रन पे आ जाएंगे.
6: राइट.
1: ओके
6: ठीक है. थैंक यू.
0: थैंक यू जी. चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ. हेलो जी.
7: Hi, good afternoon.
0: Good afternoon. Good evening.
7: Good evening. Yeah.
0: जी चले. देखिए ऐसी होता है, समय का पता ही नहीं चलता फिल्मी नुक्कड़ के साथ. चले मुझे बताएं.
7: I'm calling first time. Very interesting show and my birth date is September 1st, 1976.
0: September 1st, 1976.
7: Yes.
0: हम भी सितंबर बॉर्न है. वर्गो वर्गो. अरे अच्छा चले. Thank you for calling though.
7: Many is Am I going to get some advice?
0: Sorry?
7: Am I going to get some advice?
0: जी बिल्कुल. आप उसका सवाल क्या है ये बताएं?
7: Well, why is life so like कभी एकदम ऊपर होती है, कभी एकदम नीचे होती है.
0: अच्छा.
7: What the hell is that?
1: Sir, it is a very very strong combination. It's a 1 and 6 combination. People like them, you know, Steve Jobs was 1-6. So there is no stopping for you. Only thing is either. As I was telling before the calls I started taking, it is all about the name number and the choice of career. Okay? अदरवाइज दिस इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ. डबल सिक्स है तो होम एंड फैमिली की तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है. फर्स्ट बॉर्न है तो थोड़ा गुस्सा, थोड़ी ईगो है, बट इन्हीं चीज़ों पर काम करना है. वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड यू नो आई पीपल लाइक यू आई से स्काई इज ऑल्सो नॉट द लिमिट.
7: जो भी होता है जिंदगी में करना है वो हो जाता है.
1: बिल्कुल होएगा सर.
0: नंबर वन है आप.
1: नंबर वन सिक्स का कॉम्बिनेशन, सिक्स भी आपका 33 से आता है विच इज अनदर पॉजिटिव. ओके, काम नहीं रुकेगा सर. बट ये देखिए, इफ यू आर डेस्टिन्ड टू बी ड्राइविंग अ रोल्स रॉयस एंड यू आर हैप्पी विद अ टोयोटा कैमरी, इट्स योर फॉल्ट, राइट?
7: ओके, नहीं नहीं, आई एम वेरी सैटिस्फाइड पर्सन.
1: That is what I'm saying, sir. If you're satisfied with the Camry, but your destiny says you should be driving a Rolls Royce.
7: Yeah, Rolex पहने की चाह तो है, लेकिन
1: sir Rolex की चाह तो number six की by default होती है. ठीक है. It is just about your name number, sir, and your choice of career. That's it.
0: चलिए और डिटेल में आपको समझना है नेम नंबर. जैसे हम आज सेगमेंट की शुरू में बात भी कर रहे थे नेम न्यूमरोलॉजी की. या प्लीज. ओके चले लेते हैं नेक्स्ट कॉल. हेलो जी.
8: हेलो,
0: आपका नाम बताना चाहे तो प्लीज नाम बताएं, देन यू कैन गो अहेड विद योर क्वेश्चन एंड डेट ऑफ बर्थ.
8: श्योर, माय नेम इज शो.
0: ओके,
8: माय डेट ऑफ बर्थ इज 13th December 1978. क्वेश्चन इज रिगार्डिंग करियर एंड फाइनेंस एंड विल देयर बी एनी गुड जॉब चेंज फॉर दिस ईयर एंड मूविंग फॉरवर्ड टू 2027.
1: So this year I would not advise you to go in for any job change, but yes, career in finance is definitely very, very suitable for you.
8: Okay.
1: Okay. Very, very good, sir. Very good. I wouldn't say anything you do with your brain, you know, where no hard work, no limbs are required, just that brain is required, that is your career.
8: Me, actually, I'm in sales. There's a lot of pressure in my current job. So just thinking of changing to a better option, maybe
1: not this year, sir. And
8: not this year?
1: You know, you're in a phase of Shani right now. This year is number 8 for you, so
8: okay,
1: it will give you strength to bear the hard work. That is not a problem. You can do hard work day in day out. There is no problem. Okay, but don't change anything for next 2 years. This is not the, I would not call it the best time for you.
8: Okay,
1: not even in 27. Okay.
8: Okay. Thank you.
0: All right, next caller. Hello, G.
9: Hello.
0: Hello. सवाल पूछना चाहेंगे तो पूछे.
9: Yes, मैं the date of birth is 1991,
0: 13th of August. 13th of August. अरे मेरी बहुत प्यारी दोस्त बचपन की 13th of August मॉर्न है. Not 1991 तो.
9: वैसे तो श्रीदेवी भी हुई थी उस दिन.
0: अरे क्या बात है. ये देखो श्रीदेवी के फैन है, उनकी बर्थडे रट्टी हुई है.
1: श्रीदेवी जी का भी नेम न्यूमरोलॉजिकली करेक्टेड था, बट वो थोड़ा सा कहीं गलती होगी, नेम नंबर 4 पे आ गया. अगर ठीक कर लेते तो शायद हमारे बीच में ही होती.
0: अरे अच्छा है, तो हम ये अपनी ये चीज भी ठीक कर सकते हैं.
1: बिल्कुल कर सकते हैं.
9: 13th August 1991, please.
1: So you're same like the previous caller, sir. 4 and 5 combination. Your question?
9: Question is just career wise and health wise.
1: Again, my advice, sir, wherever you don't need to use your limbs, just use your brains to earn money. You have ample and you can do very, very well.
9: Okay. And but my health is good?
1: Like health, sir, not bad at all. It's not bad, but thoda sa, you know, jab anti-years aate hai na, tab thoda sa depression ya mental stress ki issue ho sakti hai. Otherwise, nothing major. It's a good and strong combination.
9: Thank you very much. Thank
1: You're welcome.
9: You
1: so much.
0: All right, next, थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम पूछेंगे तो अच्छा रहेगा, तो हम मैक्सिमम कॉल्स ले पाएंगे.
1: आज की कोशिश है जितनी कॉल्स है सारी लेंगे. हाँ, पर जल्दी करते हैं.
0: तो हेलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बता दें.
10: हेलो
0: हेलो, व्हाट्स योर क्वेश्चन सर?
10: माय डेट ऑफ बर्थ इज जुलाई 27, 1971.
0: जी, एंड सवाल?
10: आई वांट टू आस्क अबाउट माय करियर.
0: करियर, ओके.
10: Thank you.
1: सर, 4 बारी 7 आ रहा है आपकी डेट ऑफ बर्थ में. बी केयरफुल. ओके, 9 and 7 का कॉम्बिनेशन है. अभी व्हाट डू यू
10: डू? आई एम एम्प्लॉयड.
1: ओके,
10: बट इट्स नॉट गोइंग वेल. करियर वाइज इट्स नॉट गोइंग वेल.
1: So this year is not very, very good for you. This is, I would call it, you know, a very slow year. Even next year is not good. 2028, you will skyrocket. Just be careful, okay? With 4-7s can cause you massive health issues. Okay?
11: Okay, thank you.
1: Welcome, sir. And before I take the next call, I'm just asking everybody, no need for greetings, no need for anything. I want to finish all these calls today. Just start with your date of birth straight.
0: All right. Hello. Next caller. Hello, G.
12: Hello.
0: Yeah. Go ahead, please.
12: Hello. Oh, beti ka puchna tha.
0: Haan, puchhe.
12: Beti ka date of birth hai December 6, 1997.
0: Ji, aur sawal?
12: Uska kya possibility ya opportunity hai shaadi ke liye?
0: Shaadi ke liye. Okay.
1: ये साल बहुत अच्छा है सर उसके लिए शादी के लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये साल अच्छा है लास्ट दो साल थोड़े ढीले थे बट दिस साल दिस ईयर इज वेरी वेरी गुड
12: अप टू दिसंबर यू मीन
1: यस और रादर अप टू हर बर्थडे 12 दिसंबर 6 दिसंबर
12: अच्छा और उसका करियर कौन सी फील्ड में अच्छा है अर्लियर
1: हार्ड वर्कर है जिस या तो लग्जरी सेक्टर में जाए या बिल्कुल हार्ड वर्किंग अकाउंट्स फाइनेंस और
12: अभी न्यूट्रिशन का कोर्स कर रही है वो और डिजिटल मार्केटिंग उसने गिव अप कर दिया
1: तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए वो बनी नहीं है न्यूट्रिशन यस डेफिनेटली इट्स वर्थ इट एनीथिंग टू डू विद ब्यूटी ग्लैमर मीडिया टूर्स ट्रैवल या मटेरियलिस्टिक चीजें होती है या अकाउंट्स फाइनेंस बैंकिंग
12: ओके थैंक यू सर
0: चलिए क्विकली नेक्स्ट कॉलर हेलो जी जल्दी से अपना हेलो जल्दी से अपना सवाल बताएं और डेट ऑफ बर्थ
13: मैं बताऊं अपना सवाल
0: हाँ जी
13: हेलो
0: हाँ जी अपना डेट ऑफ बर्थ और सवाल
13: डेट ऑफ बर्थ है 1957
0: जी
13: 11 जुलाई 1957
0: जी
13: मुझे हेल्थ के मुताबिक और टूर के मुताबिक मैं फॉरेन टूर पे मतलब अपने कंट्री बैक होम कंट्री ट्रेवलिंग कर सकती हूँ दिस ईयर
1: मैम क्या एक मिनट दोबारा से बताइए आपकी डेट ऑफ
0: 11 जुलाई
1: मैंने उल्टा लिख दिया
13: 11 जुलाई 1957 तो ट्रैवलिंग का पूछना है मुझे और मुझे हेल्थ के मुताबिक पूछना है
1: बिल्कुल कर सकती है मैम लास्ट ईयर कुछ दिख रहा है मेजर इश्यू लास्ट के दो साल में थोड़ी तबीयत नरम रही होगी इस साल से तबीयत अच्छी है और आगे भी अच्छी ही रहेगी और बिल्कुल आप ट्रैवल कर सकती हैं ये टाइम बहुत अच्छा है आपके लिए
0: चलिए भारत जाए तो हमारे लिए कुछ अच्छा संबोधक वोधक लाए फिलहाल लास्ट एक और क्वेश्चन लेने की कोशिश करती हूँ हेलो जी हेलो
14: हेलो
0: हाँ जी क्विकली अपना क्वेश्चन बताएं विद योर डेट ऑफ बर्थ
14: हाँ जी डेट ऑफ बर्थ फरवरी द फर्स्ट 1976
0: जी
14: और ये घर लेने का टाइम है अभी के ना लूं
1: सर 1 to 1976
14: अभी द फर्स्ट जी हाउस अभी खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए मेरे को
1: बिल्कुल नहीं सर नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छा टाइम आएगा
14: अच्छा
1: ओके ऐसे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं
0: चलिए नेक्स्ट कॉलर हेलो जी
15: हेलो कैन आई गो जून 26 2001 प्लीज Can you please tell me if she, when her wedding will be, if agar uski life achhi hogi, 8 or 8 hai ji wo.
1: 26 June 1976, right?
15: No, 2001.
1: Oh. Haan. Kahan chala gaya?
15: Sorry.
1: 26 June
15: 2001.
1: Haan. Oh. Ma'am, ye saal to, ye saal bhi aur agla saal bhi kaafi anti hai. And...
15: Achha.
1: Most probably इनकी इंटरकास्ट मैरिज होगी
15: अच्छा
1: ओके
15: ओके
1: थोड़ा ध्यान रखिए थोड़ा टफ टाइम है अभी
15: टफ टाइम कितने साल रुकना है उसको शादी के लिए
1: मैम देखिए जब थोड़े से नंबर्स अलाइन नहीं होते ना तो एक ये साल भी नेक्स्ट ईयर भी अच्छा नहीं है
15: अच्छा ओके
1: थोड़ा ध्यान रखिए बस
15: ओके जी ओके थैंक यू
1: मैम
0: थैंक यू जी नेक्स्ट कॉलर हेलो जी
16: हेलो December 8, 2008
0: जी
16: And we're looking for health and education for my son.
0: Okay.
1: Education बहुत अच्छी है मैम इसकी कोई इशू नहीं है
16: अच्छा
1: थोड़ी stubbornness है थोड़ा loneliness भी हो सकती है but education में कोई problem नहीं है
16: ठीक है और health में
1: Health is okay, ma'am. Why? He's a small kid. Let him live his life.
15: Okay.
0: You're the parents. Some pareshan hote hain. All right. Next caller. Thank you for calling. Hello, ji.
11: Hello.
0: Yeah. Please.
11: I have a question for my wife.
0: Mm-hmm.
11: So I'll give you her date of birth. It is 29th March 1991.
0: Mm-hmm.
11: I just want to thank you first. मैंने पहले एक बार कॉल करा था, आपने बताया था कि उनका जॉब लग जाएगा, तो जॉब तो लग गया, so thank you for that. But I just have another question कि उसका हेल्थ का क्या चल रहा है, because she remains sick some of the times, बहुत पेन है बॉडी में, तो हेल्थ का क्या है, अच्छा होगा वो, क्या कर सकते हैं
1: सर? थोड़ा सा, फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मेरे को थैंक यू नहीं करिए, थैंक यू ऊपर वाले को करिए सर. मैंने तो जो दिख रहा था वो बोल दिया होगा, मुझे याद भी नहीं है, बट आई एम हैप्पी कि उनका काम हो गया. हेल्थ सर थोड़ा सा ना, ये टाइम इज स्लाइटली टफ, नथिंग मेजर, बट थोड़ा सा इशू है.
11: क्या कर सकते हैं, मतलब इसके लिए कुछ आप बताना चाहेंगे
1: सर? कुछ ब्लड रिलेटेड इशू तो नहीं आ रहे हैं?
11: जी, ब्लड रिलेटेड इशू ही है
1: बस, वही सर. ऑफलाइन बात कर लीजिए.
11: ओके जी,
0: मैं अभी थैंक यू. मैं नंबर बता देती हूँ सर का, आप अनु जी का. जो लोग अभी कॉल कर रहे हैं और वो बात नहीं कर पाए आज, उनको दो चीज़ें बताना चाहूँगी कि अगले ट्यूसडे 6:15 बजे सर हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे. प्लीज़ आप ज़रूर जुड़िएगा, उस समय पूछ सकते हैं अपने सवाल, या फिर आप उनको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं. उनका नंबर डायरेक्ट लाइन रहती है 6473308555. थैंक यू अनुज जी,
1: यू वेरी वेलकम. आई एम सॉरी नहीं ले पाया मैं.
0: आई नो वी ट्राइड, पर चले, मुझे इस समय साइन ऑफ करना ही होगा, बट थैंक यू एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग. अगर देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवर्टाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़. इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल. 6478305042, 6478305042. विजिट filminukkad.com.
17: Hyundai का नेक्स्ट स्टार्ट्स नाउ सेल्स इवेंट चल रहा है डॉन वैली नॉर्थ हुंडई पर. अब सिक्योर करें साल के लोएस्ट रेट्स. हर कस्टमर क्वालिफाई करता है अप टू 1% रेट रिडक्शन के लिए या कैश परचेस पर $500 का बेनिफिट. ऑफर सिर्फ जुलाई 31st तक है. एट डॉन वैली नॉर्थ हुंडई, वी स्पीक योर लैंग्वेज. विजिट donvalleynorthhyundai.com या वुडबाइन एवेन्यू एंड डेनिसन स्ट्रीट, मार्कम पर.
18: डॉन वैली नॉर्थ हुंडई,
17: a proud member of Wayne's Auto Group.

0: शुक्रिया आपका होस्ट दोस्तर शद्भट्टी, कैसी हैं आप, आपके मूड कैसे हैं, आपके मिजाज कैसे हैं। खुदा रब करीम आपको खुश रखे, सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह रब करीम आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दुरूद सलाम के, खुदा अल्लाह रब करीम और फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीद मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीद मजीद या रब्बल आलमीन। आज के वॉन्ट के गर्द नवाह में मगरब के अजान के वक्त 8:59, कल सुबह फजर की नमाज का वक्त शुरू होगा 4:06, तलवे आफ्ताब 5:49। आज का रोल, जिंदगी का एक मकसद बना लीजिए, फिर अपनी सारी ताकत उसके हसूल पर लगा दीजिए, आप यकीनन कामयाब होंगे। आज 14 जुलाई है, 29 मुहर्रम हराम, मंगल, ट्यूसडे का गर्म दिन, गर्म तरीन दिन, साल का गर्म तरीन दिन, +40 में रहा दर्ज हरारत, हीट वार्निंग भी है। कल अब रलूद मौसम, मैक्सिमम टेम्परेचर 31 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। ऐसे मिनट पाकिस्तान पर रोंटो के साथ अरशद भट्टी के साथ, और सबसे बढ़कर आपके साथ साथ हमारा और आपका साथ रहेगा अब से 8 बजे तक। स्टूडियो इंजीनियर हमारे साथ मरियम हैं। आप सबकी सेहत, सलामती, तंदुरुस्ती और खुशहाली की दुआओं के साथ यही दुआ के जिंदगी के सफर में हमारा और आपका आवाज़ का ये रिश्ता ही कायम रहे। जहाँ जहाँ मेरे अच्छे और प्यारे सामीन हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, ख्वाहिश रोजाना की तरह आज भी कि आप सबकी आवाज़ हमारी आवाज़ में शामिल रहे। तरीका बहुत आसान है, प्रोग्राम के दौरान हमसे रब्ते मिला कीजिए, रबते के नंबर है 416-593-0003। अगर आप बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं और आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस की तफसील ज़्यादा मौसर तौर पर सामीन तक पहुँचे, तो रेडियो पाकिस्तान टोरंटो में एडवर्टाइज करके आप यकीन दुरुस्त फैसला करेंगे। 416-300-5600 इस नंबर को अपने पास महफूज कीजिए, जब फुर्सत मिले हमसे रब्ता कीजिएगा, हम आपकी तरक्की में इंशाल्लाह मावन साबित होंगे। 416-300-5600 न्यूज हेडलाइंस, उसके बाद कनेडियन इंग्लिश हेडलाइंस और खबरें आपके हम पेश करेंगे 7:30 बजे।
1: न्यूज के लिए मदामतिया है टीम भट्टी रियल स्टेट। न्यूज के लिए मदामतिया है टीम भट्टी रियल स्टेट। फॉर ऑल योर रियल स्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 6472957861 6472957861। पेशकश है आज की खास खास खबरें और मौजूद। इस्तेहकाम पार्टी ने मौलाना फजल रहमान के खिलाफ पंजाब असेंबली में करारदाद पेश कर दी है। सऊदी अरब की ईरान के हमलों की शदीद मजम्मत, अमेरिका के ईरान पर हमले जारी हैं। चीन ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ जंग करके मशरक व्यवस्था को तशद्दुद की जानिब धकेल रहा है। रावलाकोट में फायरिंग के वाकयात में रेंजर्स और पुलिस एहलकार शहीद। उधर ऑपरेशन शबान भी जारी है, जहां हलाक दहशतगर्दों की तादाद 83 हो गई है। स्पेन फ्रांस को हराकर वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल पहुंच गया है। टोरंटो, गर्मी की शिद्दत, आज साल का गर्म तरीन दिन। ईरान अमेरिका जंग, तेल की कीमतों में इजाफा, आज रात गैस प्राइसेस में 7 सेंट फी लीटर इजाफे का इम्कान है। तफसीली खबरें सुनिए शाम 7:30 बजे।
2: गुड इवनिंग, यू आर लिसनिंग टू रेडियो पाकिस्तान टोरंटो, दिस इज मीवानी विद लोकल अपडेट्स। टोरंटो पुलिस इज सर्चिंग फॉर अ 15-year-old गर्ल मिसिंग सिंस सैटरडे। Crown defend proposes maximum youth sentence for a 15-year-old who killed beloved Pickering senior. Stan Chow, tourism minister and Toronto MPP to repay $16,000 in city hotel expenses. A 37-year-old Toronto man has been charged with manslaughter in opiate overdose. A city news reporter helps rescue man from Calgary River. Stay tuned on Radio Pakistan Toronto for more such updates. Good night.
0: कनेडियन इंग्लिश हेडलाइंस वानी आपके लिए पेश कर रही थी। आप सुन रहे हैं रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम। हमारे स्टूडियोज में आपके नंबर 416-593-0003। गैलेक्सी इंटरनेट एक्सचेंज का आज का रेट है 196.50 रुपये। डेबिट और ईमेल ट्रांसफर के थ्रू आप ट्रांसफर कर सकते हैं। पाकिस्तान के किसी भी बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट कर सकते हैं, वहाँ अकाउंट नहीं है, कैश बैंक डॉट भी हासिल कर सकते हैं। घर बैठे 24 घंटे ऑनलाइन मनी ट्रांसफर कीजिए, gondarbrothers.com पे आप लॉग इन हो जाए। आज का रेट है 196.50 रुपये। कॉल कर लीजिए 905-306-0000 905-306-0000। ग्लोबल ट्रेवल से कमर रशीद साहब आज हमारे साथ होंगे। नागपाल साहब ग्रांट्स के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। शैल जाफरी साहब से भी आपकी मुलाकात कराएंगे। तफसीली खबरें आप सुनेंगे 7:30 बजे। और भी कुछ मौजूद हमारी और आपकी बातें, लेकिन ये सबको सुनने के लिए हमारे साथ रहना है अब से 8 बजे तक। मैं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ। मेरे छोटे प्यारे सामिन, इबादत के सवाब को मुसलमानों के लिए वक्फ कर देना भी इबादत है। दिल मोमिन ना हो तो फिर इबादत किस काम की। दिल से अल्लाह को मानना ही इबादत है। मुश्किलात पर सब्र करना इबादत, नेमत
3: نعمتوں پر شکر کرنا عبادت، اپنی منشا کو منشائے الہی کے تابع کرنا ہی یعنی عبادت ہے، محروم اور مظلوم کو حق دلانا عبادت ہے، اپنی زندگی کو بے ضرر بنانا عبادت کی ابتدا اور زندگی کو منفیت بخش بنانا اس کی انتہا ہے۔ انسان جتنا اللہ کے قریب ہوگا اتنا ہی مخلوق پر مہربان ہوگا، یہی اصل ہے جو کہ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے انتہائی قریب ہیں، وہی کائنات میں سب کے لیے رحمت ہیں۔ اللہ کی عبادت ہمیں مخلوق پر شفیق بناتی ہے۔ 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورنٹو سی ایم آر 101.3 FM، میں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی ہوں۔

0: Bride of Mississauga Barbecue Tonight Restaurant, 35 Dundas Street West, Highway 10 और Dundas के intersection Mississauga में. Barbecue का असली मजा Barbecue Tonight पर. चरगा, लाहौरी fish, चपली कबाब, कड़ाही गोश, chicken tikka masala, chicken biryani, सीख कबाब, रेशमी कबाब, chicken boti, chicken tikka, बिहारी कबाब, lamb chops, अफगानी tikka, नेहारी और बहुत कुछ. खूबसूरत कुशादा patio, Barbecue Tonight Restaurant, 905-268-0088. It's 905-268-0088. Highway 10 और Dundas के intersection Mississauga.
1: अपने मकान की next month closing है. कुछ सोचा है TV और appliances कहाँ से लेने हैं?
2: हाँ, Brampton TV and appliances जहाँ special sale चल रही है. TV, fridge, washer, dryer, kitchen range hood, microwave सारा कुछ मिल जाएगा बहुत ही reasonable price पे.
1: Sale तो अब चल रही है, पर हमें चाहिए next month.
2: आज के rate हम lock भी करवा सकते हैं.
1: That's wonderful.
2: वहाँ से cell phone और India भेजने के लिए 220 volt का सारा सामान भी मिल जाएगा.
1: Brampton में ये कहाँ पे है?
2: On Bowie Head, just west of McLaughlin. Telephone 905-450-2828 or visit BramptonAppliances.ca.
3: Radio Pakistan Toronto.
4: स्टूडियो में रब्ते के नंबर 416-593-0003. ग्लोबल एडवाइजरी से नागपाल साहब हमारे साथ हुआ करते हैं. वेरी सेंसिटिव टाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट के ग्रांट हासिल करना चाहते हैं, साथ एजुकेशन भी लेना चाहते हैं, स्किल भी हासिल करना चाहते हैं, और वो भी ग्रांट जो आपको वापस भी नहीं करनी है, तो आपके लिए बहुत कम मौका. जुलाई इज़ द लास्ट मंथ. 4372643175 पे आप रابطہ कर सकते हैं. अभी हम उनसे बात करेंगे. इस दौरान में आप ये नंबर महफूज रखिए और फौरी बात आप कॉल कर लीजिए. नागपाल हमारे साथ मौजूद हैं, खुश आमदीद कहेंगे. नागपाल जी, वेलकम यू इन वेरी पाकिस्तान टोरंटो.
5: थैंक यू वेरी मच जी, सभी को सलाम.
4: बहुत शुक्रिया. रोज हम बताते हैं कि टाइम बहुत कम है. अब ये बताइएगा कि अब जुलाई, आपने कहा था जुलाई एंड तकरीबन जो है लास्ट वीक में ये कंप्लीट हो जाएगा, तो क्या कोई बैच रह गया है? कितने बैच बाकी हैं जिसमें इनरोल हो सकते हैं?
5: जी अब तीन नहीं, दो नहीं, सिर्फ एक बैच रह गया है और नेक्स्ट वीक स्टार्ट है, तो इसी वीक एनरोलमेंट्स उसके होने हैं. दैट्स इट. 30 से लेके 100,000 की फंडिंग मेरे नहीं, अपने अकाउंट में हासिल करें, तालीम हासिल करें. हुकूमत आपको फंडिंग दे रही है अपना खर्चा चलाने के लिए, सीधे आपके खाते में फंडिंग आती है, जिसका मेजर पोर्शन, फंडिंग का मेजर पोर्शन ग्रांट्स है, जो पैसा आपने वापस ही नहीं करना. जैसे चाइल्ड केयर है, जैसे ईआई है, वैसे ये बेनिफिट है, इसको मिस ना करें.
4: ठीक. 437-264-3175. अब इतना पैसा गवर्नमेंट दे रही है तो उसके लिए जाहिर है कोई एलिजिबिलिटी तो होगी. कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? क्या उम्र की कोई हद है या कोई स्पेशल डॉक्यूमेंट भी देना पड़ता है?
5: इसमें हुकूमत अपने सिर्फ आवाम के लिए ये स्कीम लेके आती है. अगर आप वर्क परमिट पे तो एलिजिबल नहीं है, स्टूडेंट तो एलिजिबल नहीं है. पीआर, सिटीजन, प्रोटेक्टेड पर्सन है, रिफ्यूजी का केस आपका अप्रूव हो चुका है. सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, आपकी इनकम कम है नोटिस ऑफ असेसमेंट पे.
4: अच्छा.
5: 2024 के एनुअल पे लेस देन $70,000 है फैमिली इनकम, तो ही आप हमें कॉल करें, तो ही आपको फायदा है. यहाँ पे कोई बैंक को पागल तो बना नहीं रहे डॉक्यूमेंट एडिट करके, है ना. गवर्नमेंट के पास डॉक्यूमेंट आपके पहले से ही है, तो इसलिए आपकी इनकम कम है तो ही कॉल करें. उबर ड्राइवर, सेल्फ एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है, हाउस वाइफ है, कोई उम्र की वो नहीं है. तालीम के लिए कोई उम्र की सीमा नहीं है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, एज पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है इस देश में. इतने लोग रिटायर्ड पेंशन पे हैं जो इसका फायदा ले चुके हैं, 8 साल से बिजनेस में हजारों को हेल्प कर चुके हैं.
4: वेरी राइट. 437-264-3175, नो एज लिमिट है और जो कि डॉक्यूमेंटेशन खास नहीं चाहिए. और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी इनकम जितनी कम है उतना आपको ज्यादा फायदा है, तो कॉल कर लीजिए 437-264-3175. नागपाल जी, अक्सर अवकात इस किस्म की जब बात हो रही होती है जी पैसे मिलेंगे वापस नहीं कम करें, तो लोग कहते हैं कोई ऐसी, कोई इसमें कोई कैश तो नहीं है, कोई ऐसी बात तो नहीं है? पूरी गवर्नमेंट की, टोटल कंप्लीटली गवर्नमेंट की ये स्कीम है, प्रोजेक्ट है.
5: बिल्कुल जी, पूरी गवर्नमेंट की स्कीम है. डॉक्यूमेंट्स भी आपके क्या लगते हैं, एनओए, नोटिस ऑफ असेसमेंट, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट. जितना आपका फैमिली साइज ज्यादा है, बच्चे ज्यादा है, उतनी फंडिंग ज्यादा आपके खाते में आती है. कॉल आप हमें अभी भी कर सकते हैं, असेसमेंट कराए, प्रॉपर ऑफिस है, टिम होटल पे नहीं मिलते इतने सालों से, लाइक 7 बंदों का स्टाफ है सर, कोई कैच नहीं है. जैसे जब आपकी गवर्नमेंट $1.9 बिलियन मतलब $1900 मिलियन हेती जैसे देश को देती है,
4: सही है,
5: तब तो आपको हैरानी होती नहीं जब गवर्नमेंट आप पे पैसा लगा रही तालीम के लिए. गवर्नमेंट आपको तालीम के लिए पैसा दे रही, घर लेकिन थोड़ी दे रही है. तो तालीम हासिल करें, फंडिंग हासिल करें और स्किल डेवलप करें.
4: अभी आपने बताया कि ऑफिस आपका है, तो उसका एड्रेस भी बता दें ताकि लोगों को पता चल जाए.
5: हाँ जी, 218 एक्सपोर्ट बुलेवर्ड एड्रेस है. कम से कम आपके शो से 500-550 बंदों को ऑलरेडी असिस्ट कर चुके हैं और लाइक कोई इसमें हिडन चीज नहीं है.
4: 437-264-3175 पर रब्ता कर लीजिए. आखिर में बता दें कि जैसे आपने बताया कि इतने पैसे मिल जाएंगे, दो लोगों की फैमिली है, पांच लोगों की फैमिली है, तो एस्टिमेटेड कितने पैसे उनको मिल जाएंगे?
5: फैमिली ऑफ टू को जैसे रिटायर्ड कपल है या यंग कपल है, अप टू 45,000 की फंडिंग है, 25,000 उसमें से नॉन रिफंडेबल टैक्स फ्री ग्रांट्स है. अगर फैमिली ऑफ फाइव है, बच्चे ज्यादा है, बच्चे हैं आपके, तो 100,000 की फंडिंग है, 50,000 ग्रांट है, 50,000 0% पे बिना क्रेडिट चेक के लोन है, जो कि 1.5 साल बाद आसान किस्तों में देना है. 1.5 साल बाद 2.5% है, साल का 15 साल में लौटा सकते हैं. बाकी फंडिंग आपके खाते में आती है, कोई कैच नहीं है. हमारी फीस कितनी है, 199 या 499 शुरू में देनी है, नहीं काम होने के बाद. लास्ट हफ्ते 29 लोगों के खाते में पैसे गिरे हैं. हमारी छोटी सी फीस, आपका फायदा हाथ ही कितना है.
4: वेरी गुड जनाब, आपके लिए मौका है, इस मौके को हाथ से ना जाने दें. कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले लें. टाइम सेंसिटिव है, कम है, सिर्फ एक हफ्ता है आपके लिए. कॉल कीजिए 4372643175. थैंक यू वेरी मच नागपाल जी, बहुत शुक्रिया. कल आपसे फिर बात करते हैं. थैंक यू, बहुत शुक्रिया. नंबर नोट कीजिए 4372643175 पे भी कॉल कर लें. रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 FM. अक्वामी मुत्तहदा में मुतैन चीनी मंदूब ने कहा कि अमरीका यमन और बहर अहमर में होने वाले सूरतहाल का भी जिम्मेदार है. चीन के मुस्तकिल मंदूब ने अक्वामी मुत्तहदा में कहा कि अमरीका के रवैये की वजह से गजा का बहरान जारी है, अमरीका कशीदगी कम करने की कोशिशों में रिकावट डाल रहा है. अक्वामी मुत्तहदा को शामिल के बगैर ईरान से मुज़ाकरात के दरमियान अमरीका ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई शुरू की, जिससे खित्ते की सूरतहाल पुरखतर हो गई. अक्वामी मुत्तहदा में मुतैन चीनी मंदूब ने यह भी कहा कि अमरीका यमन और बहर अहमर में होने वाली सूरतहाल का जिम्मेदार है. अमरीका पे भी तनकीद है, ईरान पे भी तनकीद है, लेकिन सबका मुद्दा यही है कि जंग खत्म हो जाए, अमन हो जाए. 416-593-0003 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 FM आपके लिए पेश कर रहे हैं आज की शायरी.
6: अगर सांसें महक जाएं, अगर आंखें छलक जाएं, अगर ख्वाबों की ख्वाहिश हो, अगर फूलों की बारिश हो, अगर हंसते हुए रोने को जी चाहे अकेले में, अगर कोई देख कर तुमको कहीं खो जाए मेले में, अगर तुम पूछने जाओ कि आखिर क्या हकीकत है, और उसका ये जवाब आए मुझे तो तुमसे नफरत है, समझ लेना

0: 7323.
1: जी जनाब, 26 साल हो गए हैं। ये हर साल शानदार प्रोग्राम फ्रीडम सेलिब्रेशन होती है, जश्न आज़ादी मुबारक आपको। और ये पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे स्पेशल प्रोग्राम 13th की रात होती है, और फिर 12 बजे जब बजते हैं तो फिर उस वक्त केक कटिंग होती है, कौमी तराना। और ये रिवायत है अहमद जाफ़री और शैला जाफ़री साहबा की, फॉर द लॉन्ग लॉन्ग टाइम इसको जो है वो आपके लिए पेश करते हैं। 6472732393 पे आप इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं, स्टॉल बुक भी कर सकते हैं। शैला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, खुश आमदीद कहेंगे। शैला साहब, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम अरशद, तमाम सुनने वालों को रेडियो पाकिस्तान टोरंटो के हमारा सलाम और बहुत सारा प्यार। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी ऑन एयर। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो ने हमेशा हमारा साथ दिया है लोगों तक मैसेज पहुंचाने में, और अब इंशाल्लाह ये इवेंट जो 26th annual इवेंट काउंटडाउन पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन एट द राइट टाइम, और इसमें दोपहर 4 बजे से सारी सेरेमनी स्टार्ट हो जाएगी हमारी, और रात के 1 बजे तक सब जारी रहेगा, और टोटल पाकिस्तानी परफॉर्मेंसेस होंगी, टोटल पाकिस्तानी इंटरटेनमेंट होगी। और लेकिन इसमें इनवाइटेड एवरीवन है, एवरी बिजनेस कम्युनिटी से बिजनेसेस जो है वो, ताकि एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करें। एवरी कम्युनिटी इज वेलकम एंड इनवाइटेड,
1: क्योंकि इसमें ज़ाहिर कोई टिकट नहीं होती, बेशुमार पार्किंग है, और हर साल की तरह इस साल भी यकीनन बहुत शानदार प्रोग्राम होगा। साला साल से हम देखते आ रहे हैं, और साथ साथ स्टॉल्स भी होते हैं, खरीदारी भी होती है, खाना पीना भी होता है, और साथ साथ जो है जश्न आज़ादी पाकिस्तान की सेलिब्रेशन भी होती है।
2: बिल्कुल अरशद, मैं ये बताऊँ आपको कि इसमें जो ओपनिंग सेरेमनी है हमारे, वो बच्चों की परेड से शुरू होती है, और उसको हमेशा हम कोई ना कोई बच्चा ही उसको लीड करता है उस परेड को, और जिसमें पेरेंट्स बहुत खुशी से बच्चों को लेकर आते हैं, और वो उनको पाकिस्तानी लिबास में रखते हैं, जिस तरह चाहें आप आए खुशियां मनाएं। और उसके बाद मैं आपको उसमें ये बताऊं कि हमें वॉलंटियर्स की जरूरत है ऑफकोर्स, क्योंकि ये बच्चों के साथ फैमिली के साथ प्रोग्राम है, टू कीप ऑर्गेनाइज। बच्चे, हर बच्चे को गिफ्ट मिलता है 10 साल तक के जो उसमें आते हैं केक कटिंग के बाद। अच्छा, अब हम ये चाह रहे हैं कि इसमें बिजनेसेस हिस्सा लें, तो लिमिटेड स्पॉट्स अवेलेबल हैं, क्योंकि इसमें हमारे लोग बहुत आते हैं।
1: जी जी।
2: तो इसमें आप स्टॉल बुकिंग कर सकते हैं, अपने बिजनेस की प्रमोशन, एग्जीबिशन एंड सेल्स कर सकते हैं, हर तरह से हिस्सा ले सकते हैं। और पाकिस्तान डे की खुशी में तमाम स्पॉन्सरशिप के पैकेजेस जो हैं वो 50% ऑफ कर दिए हैं हमने। इसके अलावा जो फूड स्ट्रीट होगी वहां पर, और कपड़ा, ज्वेलरी और इस तरह की एक्सेसरी की जो चीजें, उनके स्टॉल भी हमने 50% ऑफ कर दिए हैं पाकिस्तान डे की खुशी में। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जिसने आज कॉल कर लिया 6472732393 पर, उनकी स्टॉल बुकिंग और स्पॉन्सरशिप 50% ऑफ होगी। और फिर से यही कहूंगी कि जो लोग सुन रहे हैं वो अपने तमाम जानने वालों को, अपने तमाम फ्रेंड्स को, तमाम ग्रुप पे इस चीज को जरूर शेयर करें कि ये इवेंट काउंटडाउन पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे August 13th मेपल बैंकवेट हॉल मिसरागा में हो रहा है, और ये न्यू ईयर के तर्ज पे हम बनाते हैं।
1: बिल्कुल ठीक।
2: तो इंशाल्लाह ताला रेडियो पाकिस्तान टोरंटो के साथ हमारा ये प्रोग्राम जो है साथ होगा, तो हमारा प्रोग्राम फिर से कामयाब होगा। थैंक यू सो मच।
1: 6472732393 पे भी कॉल कर लीजिए। मेपल बैंकवेट हॉल में 13th को होगा, 4 बजे से लेकर रात 12 बजे तक। बहुत शुक्रिया आपका, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे बात करते हैं। थैंक यू।
2: थैंक यू, टेक केयर।
1: नंबर नोट कीजिए 6472732393, रेडियो पाकिस्तान टोरंटो।

0: अब खुशबू आ रही है खाने में। ऐसा लग रहा है जैसे घर के पिसे हुए मसालों से बना हो।
1: अरे खुशबू कैसी नहीं होगी, ये हांडी के मसालों का कमाल है जो चुन चुन के इकट्ठे किए गए हैं खास हमारे लिए, ताकि ये लज्जत और स्वाद हमें मिल सके।
2: हांडी मसाले, बिल्कुल घर जैसा स्वाद।
3: फॉर होलसेल इंक्वायरी कॉल 416-746-5550-746-5550।
4: याद रखें, अगर आप किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस में चार्ज हो गए हैं या आपको कोई भी फैमिली लॉ का मसला है, जैसे कि प्रॉपर्टी डिवीजन, स्पाउसल सपोर्ट, चाइल्ड कस्टडी एंड एक्सेस, या आपका कोई सिविल लिटिगेशन का मामला है, कम्युनिटी के जाने पहचाने और तजुर्बेकार लॉयर ताहिर मजीद से राब्ता कीजिए 6478384773। कानूनी मामलात के लिए उनसे राब्ता कीजिए जो कानून को मुकम्मल तौर पर जानते हैं। फॉर ऑल योर लीगल मैटर्स कॉल ताहिर मजीद 6478384773।
5: अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाएं। आइकॉन इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कॉर्पोरेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए 3 खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ 6887 डिक्सी रोड, मिसिसागा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 4374252500 और ब्रॉम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर 2 ऑक्शन लेन ब्रॉम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600।
6: Since 1993, MWC Food Banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. Over 10,000 families across Canada rely on MWC Food Banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
7: Sirf mortgages. That's Rajiv Talwar, the mortgage superstar. Mortgage residential, low, or commercial. For customized mortgage solutions, choose Rajiv Talwar. Mushkil se mushkil mortgage ho, last minute deal ho, ya phir credit issues ho. Rajiv Talwar ka wasi ilm aur tajurba aapka kaam aasan kar dega. To yaad rakhiye, mortgage unse mat lijiye jo mortgage bhi karte hain, balki mortgage sirf unse lijiye jo mortgage hi karte hain. Call Rajiv Talwar of leading edge mortgage experts 905-819-1001 905-819-1001 license number 12374.
8: बटकड़ाही की पिकरिंग लोकेशन में आपके लिए हलवा पूरी का स्पेशल नाश्ता, ऐसा जायका जो आपने पहले कभी चखा ही ना हो। सुबह 11 बजे से आपके लिए ओपन। इसके अलावा बटकड़ाही की रिवायती कड़ाही, बीफ पाए, निहारी, खोए वाले चने, स्मोकी कीमा, बटर और सेसमी नान, लस्सी और बेशुमार आइटम्स। केटरिंग के लिए स्मॉल और लार्ज ट्रेज अवेलेबल है। रेस्टोरेंट के साथ 150 लोगों तक की पार्टी के लिए बैंक्वेट हॉल, जिसमें मेहंदी, बर्थडे, वेडिंग, फैमिली या कॉर्पोरेट इवेंट्स अरेंज किए जा सकते हैं। बुकिंग के लिए अभी कॉल कर लें बटकड़ाही 820 किंगस्टन रोड पिकरिंग 9058390002।
9: अपना हम सफर ग्लोबल ट्रैवल एंड टूर्स।
10: ग्लोबल ट्रैवल एंड टूर्स।

0: स्पेशल पैकेज डील के लिए कॉल करें 905-275-3555 905-275-3555
1: 918 Dundas Street East Unit 1C Mississauga
2: जी हाँ 905-275-3555 ग्लोबल ट्रेवल टूर के रबते का नंबर है। तमाम बड़ी एयरलाइंस के कंसोलिडेटर हैं, हाथ जुमरा के स्पेशल पैकेजेस होते हैं। जब कहीं सीट सेल हो, कहीं से सीट ना मिले तो आप कॉल कर लीजिए। कारण रशीद साहब CEO हैं, रूह रवा हैं। ये तमाम ऑपरेशन के अंडर वन रूफ आपको ना सिर्फ ट्रैवलिंग के हवाले से बल्कि इमिग्रेशन, कौंसलेट सर्विसेज, मनी ट्रांसफर की सर्विस भी मुहैया की जाती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कारण रशीद साहब, खुश आमदीद कहेंगे। कारण भाई सलाम अलैकुम।
3: जी वालेकुम अस्सलाम अशरफ भट्टी साहब, आपको भी बहुत बहुत सलाम और आपकी वसातों से तमाम सुनने वालों को भी मेरा बहुत सलाम।
2: बहुत शुक्रिया। बहुत कम होता है कि जो हाई सीजन है उसमें सेल आती है। PI की सीट सेल हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था, वो अभी तक है, उसके लिए डेट है अभी भी?
3: जी अशरफ भट्टी साहब, आज बड़े खास दिन एंट्री हुआ है क्योंकि कल जनाब आखिरी दिन है सीट सेल का। जी हाँ, PIA मेगा समर सेल इज गोइंग टू बी एंड एंड टुमारो इज 15th of July। और इसकी जो ट्रैवलिंग पीरियड जैसा कि आपने बताया बहुत कम ऐसा मौका मिलता है। 25 जून से लेकर 30th नवंबर तक की ये ऑफर थी। और इसमें डायरेक्ट फ्लाइट की जो ऑप्शन 15% डिस्काउंट फेयर, वी विल होप के हम मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करें कि इसी तरह सेल कंटिन्यू की जाए, पीरियड को एक्सटेंड किया जाए। लेकिन जब तक कंफर्मेशन हाथ में ना आ जाए इस ऑफर से जरूर फायदा उठाएं। कल आखिरी दिन है, जो लोग अभी सोच रहे हैं, जिनका इरादा है अपनी फैमिलीज के साथ अपनों को मिलने का, ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, वो इससे मौका उठाएं, फायदा उठाएं इस मौके से। और जस्ट कॉल मी एट 905-275-3555 और इस सेल से फायदा उठाएं।
2: 905-275-3555 और यही नंबर व्हाट्सएप पे भी है, globaltravel786@gmail.com इनकी ईमेल है। आप ईमेल एड्रेस जो है ये भी नोट कर ले, इस पे भी रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, ये खत्म हो गई, फर्ज कर लीजिए अगर कंफर्मेशन नहीं आती तो कोई दूसरी एयरलाइन है जिनकी सीट सेल भी आ रही है या इस वक्त है?
3: जी बिल्कुल, जबरदस्त बात आपने पूछ ली। मैं ये बात कहने ही वाला था कि सामने इनको बताते चलें कि अगर आप लोगों का इरादा इसके अलावा PIA के अलावा अगर कुछ सेकंड कैरियर लेने का हो तो जी हाँ, टर्किश एयरलाइन का स्पेशल समर सेल कल से जारी है। और इसकी डेडलाइन टिकट बाय करने की यानी सेल्स पीरियड जो है वो 27th of July तक है। लेकिन इसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बयान करते चलें कि इसका टिकट तकरीबन इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस के साथ 1675 है और ये बहुत अच्छा फेयर है। और इसमें अगर आप इस्तांबुल में भी रुकने का इरादा रखते हो, इस्तांबुल सिटी को एक्सप्लोर करने का इरादा रखते हो, तो वहां पे भी हमारे पैकेजेस अलग से तरतीब दिए जा सकते हैं और हमारा एक्सपर्ट स्टाफ वहाँ मौजूद है ग्राउंड पैकेजेस के लिए। और इसके साथ साथ बताता चलूं कि जो इसकी टिकट डेडलाइन तो मैंने बता दी, ट्रैवल पीरियड भी इसका एक मखसूस है, वो 7 सितंबर से शुरू होकर 28 फरवरी तक चलेगा।
2: अच्छा, 28 फरवरी
3: से 28। जी हाँ, देखिए अशरफ भट्टी साहब, जाहिर है इसमें विंटर की वोकेशन की पीरियड भी आ रहा है, तो विंटर्स के लिए इन्होंने थोड़ी सी कंडीशन जरूर रखी है। इसमें कहलाती है हमारे एयरलाइंस के टर्म्स यूज होती है ब्लैक आउट डेट। ब्लैक आउट डेट मीन्स के वो डेट्स उनमें ट्रैवल आउटबाउंड जिसमें नहीं कर सकते वो है 8 दिसंबर से 1 जनवरी 2027। जी हाँ, दिसंबर का पूरा मंथ ब्लैकआउट ऑलमोस्ट पीरियड है। फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर यू गाइस कैन ट्रैवल। बेस्ट वे लेने के लिए अभी से कॉल कीजिए। और इसके इनबाउंड की भी ब्लैक डेट्स हैं, ब्लैक आउट डेट्स हैं और वो कहलाती हैं 28 दिसंबर से 16 जनवरी तक। 28 दिसंबर से 16 जनवरी में किसी ने आना हो तो वो नहीं आ सकता। 17 जनवरी से ऑनवर्ड पे 28 फरवरी तक, ये ऐसी डेट्स हैं। इसके लिए अगर अभी इस प्रोग्राम में सुनने वालों को याद ना रहे तो कोई बात नहीं, आप बार बार हमारा नंबर रिपीट करते हैं, मैं भी बात करते हुए ये नंबर दोहराता रहूं कि इस नंबर पे हमारा व्हाट्सएप भी मौजूद है, आप हमें जस्ट टेक्स्ट कर लीजिए लुकिंग फॉर टर्किश डील, हमारा स्टाफ आपसे रब्ता कर लेगा। नंबर इज 905-275-3555। और इसके साथ साथ हमारा ईमेल एड्रेस है globaltravel786@gmail.com। समर सेल टर्किश एयरलाइन 1675। लेकिन एक बात जो मैंने अभी अपने पास रखी है अशरफ भट्टी साहब, वो भी अनाउंस कर दीजिए, मेरा ख्याल है। जी हाँ, वो है 2 पीसेस के बजाय 3 पीसेस, 23 kg के 3 बैग। जी हाँ, हमारे लोगों को लगेज की हमेशा परेशानी होती है, लेकिन इस सीट सेल का खूबसूरत इजाफा भी यही एक अनाउंसमेंट वो ये कि 3 बैग आप जाते हुए भी लेके जा सकते हैं और आते हुए
2: टर्किश एयरलाइन। और अच्छा चलें ये भी बताते हैं जाते जाते कि इसमें ब्रेक सऊदी अरब में करके भी जा सकते हैं, ऐसा भी है सिलसिला?
3: ये चूंकि टर्किश एयरलाइन है, यहाँ इस्तांबुल में आप ब्रेक ले सकते हैं।
2: अच्छा, ठीक, एक ब्रेक है
3: इस्तांबुल में, कैपिटल उनका हब वो है, वो ब्रेक ले सकते हैं।
2: वहाँ से सऊदी आ जाएंगे तो फिर एक नया रूट हो जाएगा, उसके अलग से पे करना,
3: फिर एक नया रूट हो जाएगा। बिल्कुल, वो हम एक साइड ट्रिप दे सकते हैं, बिल्कुल ऐसा है। और वहाँ टिकट सस्ती भी मिल जाती है, टर्किश एयरलाइन की अपना रूट भी होता है और सऊदी एयरलाइन की डायरेक्ट साइड ट्रिप भी हम ले सकते हैं।
2: बिल्कुल ठीक है। 905-275-3555। चलते चलते बस मुख्तसर सा बता दीजिए कि हज की रजिस्ट्रेशन के लिए अभी भी लोग रब्ता कर सकते हैं हज रजिस्ट्रेशन नेक्स्ट ईयर के लिए?
3: जी अशरफ साहब, हज की रजिस्ट्रेशन भी जारी है और मैंने जैसे अर्ज किया था हमारा जो लिमिटेड कोटा है उसके अंदर भरपूर लोगों का रिस्पॉन्स है। मिनिमम पैकेज मैंने अनाउंस कर दिया था, कुछ लोगों ने पूछा कि इसमें हम अगर टिकट ऐड करना चाहें तो पहले मैं तो पैकेज की मिनिमम पैकेज इकोनॉमी पैकेज का जब मैं जिक्र करूंगा जो प्राइस अभी बताने लगा हूं, लेकिन ये बात जरूर जहनशीन कर लीजिए कि मेरा मीना के अंदर VIP मकतब ही होगा, मकतब ए जोन 1, और इसकी इनिशियल कॉस्ट जो जा रही है $8,500, इसमें टिकट शामिल नहीं है। टिकट को भी अगर आप ऐड करना चाहें उसकी अप्रोक्स वैल्यू $2,500, तो आप यूं समझिए कि तकरीबन 11,000 में कंप्लीट हज का पैकेज मिलता है। लेकिन मेरे पास इसके अलावा 2 या 3 ऐसे पैकेजेस हैं जो एक आप समझते हैं कि जो लोग चाहते हैं कि हम कुछ 11 या 12 दिन के बजाय 17 दिन में रहना चाहते हैं और प्राइस भी ज्यादा हाई ना हो, वो जो है इंशाल्लाह कॉल पर आने पर मैं बताऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में भी। जब तक के लिए जरूरी है कि आप अपनी रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं, और रजिस्ट्रेशन के लिए एक बहुत बड़ा सवाल लोगों ने आपकी वसातत से, आपके इस प्रोग्राम की वसातत से कॉल करके पूछा कि हमारे पासपोर्ट एक्सपायर है या हमारे पासपोर्ट 3-3, 4-4 साल से नहीं बने हुए, तो अगर उनके पास नाइको कार्ड है तो उसके ऊपर भी उनकी रजिस्ट्रेशन हो सकती है। आप हमें कॉल कर लें, हमारा स्टाफ आपको इस रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में जरूर हेल्प करेगा।
2: 905-275-3555, 905-275-3555, यही नंबर व्हाट्सएप पे भी। थैंक यू वेरी मच करुण भाई, बहुत शुक्रिया, नेक्स्ट वीक आपसे बात करते हैं। थैंक यू। नंबर नोट कीजिए मेरे सामने, 905-275-3555, रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM। फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर कमल खेरा, जो वाहिद ब्रैम्पटन में शायद थी जो नहीं जीत सकी थी, वो जो है वो हार गई थी, तो उनको अब गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा ने लॉस एंजलिस में कौंसल जनरल जो है वो मुकर्रर कर दिया। तो देखें ये होता है कि जो आपके साथ कमिटेड हैं और जो लोग ऐसे हैं तो कहीं ना कहीं जो है वो एडजस्ट हो ही जाते हैं, तो अब वो कौंसल जनरल ऑफ कनाडा होंगी इन लॉस एंजलिस। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM, स्टूडियोज में आप देखें नंबर 416-593-0003।

0: राजधानी राजधानी
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: राजधानी राजधानी राजधानी
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
3: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?
4: Jab koi baat bigad jaye.
5: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
6: SSR Auto Repair, 3438 Shepherd Avenue East, Scarborough, Warden or Shepherd intersection, 24/7 ऑटो रिपेयर, वेरी क्लोज टू हाईवे 401। तमाम मेजर रिपेयर वर्क करते हैं, बॉडी शॉप, एक्सीडेंटल रिपेयर, डेंटिंग पेंटिंग, इंजन रिपेयर, ऑयल चेंज, टायर चेंज, ब्रेक पैड्स एंड राउटर, व्हील अलाइनमेंट, बैटरी एंड एसी सर्विस, 24/7 टोइंग सर्विस भी अवेलेबल है। SSR ऑटो रिपेयर, कॉल नजीर चौधरी, अवैस चौधरी और मुनीर हुसैन, 6473217444। इट्स 6473217444।
7: बारबेक्यू टुनाइट की दूसरी लोकेशन 5165 डिक्सी रोड, डिक्सी और एमको का इंटरसेक्शन, मिसिसागा में। 200 से ज्यादा लोगों की गुंजाइश, बड़ी पार्टीज भी आप अरेंज कर सकते हैं। बारबेक्यू आइटम्स, बिहारी कबाब, सीख कबाब, कड़ाही, बिरयानी, ताजा नान और बेशुमार डिशेस, जायका वही और खूबसूरत सेकंड लोकेशन। पार्टीज की बुकिंग या मालूमात के लिए कॉल कीजिए 9052829868। बारबेक्यू टुनाइट की सेकंड लोकेशन 5165 डिक्सी रोड, डिक्सी और एमको का इंटरसेक्शन, मिसिसागा में। 9052829868।
8: Be proud.

0: Station.
1: Sirf mortgages. That's Rajiv Talwar, the mortgage superstar. Mortgage residential, low, or commercial. For customized mortgage solutions, choose Rajiv Talwar. Mushkil se mushkil mortgage ho, last minute deal ho, ya phir credit issues ho. Rajiv Talwar ka wasi ilm aur tajurba aapka kaam aasan kar dega. To yaad rakhiye, mortgage unse mat lijiye jo mortgage bhi karte hain, balki mortgage sirf unse lijiye jo mortgage hi karte hain. Call Rajiv Talwar of leading edge mortgage experts 905-819-1001
2: अच्छा वो बहुत से लोग उस पर यकीन नहीं करते. एस्ट्रोलॉजर हैं वो, और नाम मैं इसलिए बताऊंगा फिर लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. लेकिन हाँ, वैसे कोई अगर वाकई जंग अगस्त में ख़त्म हो जाती तो फिर हम मान जाएंगे उन एस्ट्रोलॉजर को. और फिर ज़ाहिर है फिर मैं नाम भी आप मुझसे फ़ोन करेंगे मैं बता दूंगा अगर किसी को कॉन्ट्रैक्ट करना हो. स्पेन रैंकिंग में नंबर वन है वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट के हवाले से. आज वो जीत गया और फ्रांस हार गया. बड़ा अफसोस हुआ बहुत से लोगों को. मैं भी फ्रांस को सपोर्ट कर रहा था. अब दो नंबर पर फ्रांस था, तीसरे नंबर पर अर्जेंटीना है, चौथे पर इंग्लैंड है. तो पहली चार जो टॉप सीडेड टीमें थी वही गई हैं. अब ये देखना है कि अर्जेंटाइन को जो फायदा रेफरी से दूसरे तरीकों से मिल रहा है अगले सेमीफाइनल में मिलेगा या नहीं, जाहिर है उसके ऊपर फिर बात करेंगे. कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद प्रोग्राम को खत्म करके ले चलेंगे. स्टे ट्यून.
3: Since 1993, MWC Food Banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. Over 10,000 families across Canada rely on MWC Food Banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
4: अपने मकान की नेक्स्ट मंथ क्लोजिंग है, कुछ सोचा है टीवी और अप्लायंसेस कहाँ से लेने हैं?
5: हाँ, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, जहाँ स्पेशल सेल चल रही है. टीवी, फ्रिज, वॉशर ड्रायर, किचन रेंज हुड, माइक्रोवेव, सारा कुछ मिल जाएगा बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे.
4: सेल तो अब चल रही है पर हमें चाहिए नेक्स्ट मंथ.
5: आज के रेट हम लॉक भी करवा सकते हैं.
4: दैट्स वंडरफुल.
5: वहाँ से सेल फोन और इंडिया भेजने के लिए 220 वोल्ट का सारा सामान भी मिल जाएगा.
4: ब्रैम्पटन में ये कहाँ पे है?
5: ऑन बोवे हेड, जस्ट वेस्ट ऑफ मैकलॉगलिन. टेलीफोन 905-450-2828 or visit BramptonAppliances.ca.
6: SSR Auto Service, 921 Pape Avenue, Southeast Corner of Pape and Mortimore. Har kisam ki gaadiyon ki journal aur electrical repair ke liye tashreef laiye. Oil change, tire change, light repair, brakes, suspension, muffler service, engine services. Iske alawa safety inspection, 3D laser alignment ke saath saath new aur used tires bhi available hain. Drive through maintenance aur namaz ki sahulat bhi. Mia Ashraf Saab ya Nabil Ashraf Saab se rabta kijiye. 416-466-8782 टोरंटो में 23 साल से 24/7 खुलने वाली वाहिद शॉप SSR ऑटो सर्विस 921 पे पे.
7: अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाएं. आइकॉन इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपोरेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए तीन खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं. तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं. इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ. 6887 डिक्सी रोड, मिसिसागा. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 437-425-2500 और ब्रम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर 2 ऑक्शन लेन ब्रम्पटन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600.
2: तो चलिए हम आपसे चाहेंगे इजाज़त. CMR 101.3 FM पे हमारी नशियात 8 बजे ख़त्म हो जाएंगी. हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे खबरें जो हैं जो 7:30 पेश की जाती हैं वो 8 बजे रिपीट करते हैं और उसके बाद आपकी लाइव कॉल्स लेते हैं. हमारा यूट्यूब चैनल है टोरंटो 360 TV, उस पर हमारा फेसबुक पेज है मेरे नाम से अशरद भट्टी और टिकटॉक मेरे नाम से उस पर, और हमारा टेलीविजन चैनल टोरंटो 360 TV पे लाइव टॉक शो आपके लिए 8 बजे के बाद जो है वो पेश किया जाएगा. दो में रखिएगा याद, हौसला नहीं हारना बल्कि हौसला भी हारने की चीज़ है. ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, क्योंकि सब अच्छे की आवाज़ बशर ज़िंदगी. इंशाल्लाह कल शाम 7 बजे हमारी आपकी मुलाकात होगी. स्टूडियो इंजीनियर मरियम और अपने मेज़बान अशरद भट्टी को दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़ और सपुर्दे अमानत.